मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की पांचवी तिथि। तदनुसार 27 अगस्त सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। आरंभ होती है अब हमारे केंद्र से प्रातःकालीन प्रसारण सभा। इस सभा में आज आपके साथ हैं आपके रेडियो मित्र अरुणा वर्मा। सभी श्रोता साथियों को मेरा नमस्कार, सुप्रभात।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। नेपाल में कल आए भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और एक दर्जन जल विद्युत परियोजनाओं को ठप कर दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण हिमखंड फट जाने से ये आपदा आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं के 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस चुनौती के सामने नेपाल और उसके लोगों के साथ खड़ा है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है 9779851316807 और 9779701705000। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने लापता लोगों की खोज और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पीपल्स आर्म्ड पुलिस की शिगाजे टुकड़ी के कुल 145 अधिकारियों और सैनिकों को आपातकालीन प्रतिक्रिया अभियानों में सहायता के लिए प्रभावित सीमा बंदरगाह पर भेजा गया है। नेपाल की यात्रा पर गए कोलकाता के 32 लोग अचानक आई बाढ़ में लापता हो गए हैं। वे मानसरोवर यात्रा के लिए एक ट्रैवल एजेंसी द्वारा आयोजित समूह में गए थे। इस समूह को कल नेपाल तिब्बत सीमा पार करनी थी, लेकिन अचानक आई बाढ़ से उनसे संपर्क टूट गया और अभी तक किसी का कोई पता नहीं चला है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नेपाल में आई बाढ़ के बारे में बात की। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जिन सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का असर हो सकता है वहां

0: स्थानीय प्रशासन और राहत तथा बचाव टीमों के साथ ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
1: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
2: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, DGP इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: इधर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कल दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा की संभावना है। कल दिल्ली में भी वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। सरकार ने आगामी महीनों में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है, क्योंकि 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। वीर चोटरानी और विलविन सेंथिल कुमार PSA बुडापेस्ट क्वाश ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। ये दोनों भारतीय खिलाड़ी आज सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। इस समय प्रातः के 6:05 और 15 सेकेंड्स हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं समूह स्वर में प्रस्तुत देशगान से।

आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। लीजिए अब सुनिए अनूप जलोटा और साथियों के स्वरों में ये भक्ति गीत।

कार्यक्रम वंदना में अभी आपने सुना अनूप जलुटा और साथियों के स्वरों में ये भक्ति गीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं सुरेश वाडकर की स्वर में ये भक्ति रचना।

कार्यक्रम वंदना का समापन कर रहे हैं। उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन की गाई इस भक्ति गीत से।

0: इस भक्ति गीत के साथ ही आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव साथ ही श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR से भी। लीजिए अब सुनिए चिंतन में डॉक्टर केशव कान्हेरे के विचार।
1: पुत्र को महाविद्यालय में प्रवेश मिल गया। वह तैयार होकर अपने माता पिता के पास आया। उसने माता पिता के चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। माता पिता ने आशीर्वाद देकर उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। जैसे उसने अपने कदम बढ़ाए, पिता ने कहा, थोड़ी देर ठहर जाओ, जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, वही बातें तुम्हारे जीवन में सार्थक सिद्ध होगी। कॉलेज में तुम्हें अनेक प्रकार के सहपाठी मिलेंगे, कक्षा में नए नए मित्र या दोस्त बनेंगे, परंतु दोस्ती सोच विचार कर करना। आज का युग बड़ा विचित्र युग है। पश्चिमी अंधानुकरण के फलस्वरूप आज की युवा पीढ़ी फैशन, मौज मस्ती, अनाप शनाप खान पान, भोग लिप्सा आदि में जीवन व्यतीत करने में मस्त हैं। अपनी इच्छा पूर्ति हेतु स्वार्थ सिद्ध करने की दृष्टि से अनेक यार दोस्त एकत्रित हो जाते हैं और यही उम्र और समय अपने आप को बुरी संगत से दूर रखकर सुसंगति की ओर ले जाने में सक्षम होती है। अतः मित्रता दोस्ती सोच समझकर परखकर करना हितकारक होगा। एक कहावत प्रसिद्ध है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। मित्र या दोस्त भगवान सूर्य नारायण जैसा होना चाहिए। सूर्य नारायण अपने स्वयं प्रकाश से सभी का अंधकार दूर कर उन्हें जीवन देकर प्रकाश मार्ग दिखाता है। ठीक उसी की भांति जो अपने मित्र को स्वयं के आचरण से उसे सदैव सन्मार्ग की ओर निस्वार्थ भाव से अग्रसित करे वही सच्चा मित्र कहलाता है। संत तुलसीदास ने कहा है, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल पर किए चारी। विपत्ति काल में धैर्य धर्म मित्र और पत्नी की पहचान परख होती है। तुलसी ने मित्र का उल्लेख समझ पूर्वक किया है। श्री कृष्ण और अर्जुन परम मित्र थे। श्री कृष्ण ने सदैव अर्जुन का साथ दिया था। विपत्ति काल में भी अर्जुन मित्र को भुला नहीं पाया और न ही श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ छोड़ा। उसी प्रकार श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता थी। अपने मित्र सुदामा की दयनीय दशा देखकर श्री कृष्ण ने उसे लज्जित नहीं किया, वरन उसके जीवन का सारा दुख दर्द ही मिटा दिया। इसीलिए कहते हैं कि दोस्ती प्यार फूलों से करो, कांटों से नहीं। जिस प्रकार फूल निस्वार्थ भाव से माली से लेकर फूल तोड़ने वालों तक अपनी सुगंध से आनंद प्रदान करता है, परंतु कांटा चुभने पर वह दुखदायी होता है, हम तुरंत उसे निकाल कर फेंक देते हैं। ठीक इसी तरह अच्छे और बुरे मित्र की यही पहचान होती है।
0: चिंतन में अभी श्रोता सुन रहे थे डॉक्टर केशव कान्हेरे के विचार। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव साथ ही श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR से भी। लीजिए अब सुनिए श्री राम चरित मानस गान।

राजा जनक के धनुष यज्ञ में श्री राम के हाथों शिवजी का कठोर धनुष भंग हो चुका है। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि गूंज रही है। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग श्री राम की कीर्ति का गान कर रहे हैं। झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई आदि मंगलवाद्यों का संगीत ढोल और नगाड़ों की ताल पर चारों ओर व्याप्त है। राजा जनक की चिंता दूर हो चुकी है। सखियों समेत रानी अत्यंत हर्षित हैं। दृश्य कुछ ऐसा मानो सूखते धान के खेत को पानी मिल गया है। किंतु धनुष टूट जाने के फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा में भाग लेने आए राजे महाराजे इस प्रकार श्रीहीन हो गए हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही दीपक की शोभा समाप्त हो जाती है। उधर जनक नंदिनी सीता रूपी चातकी को मानो स्वाति नक्षत्र का वर्षा जल मिल गया है। कुल पुरोहित शतानंद जी की आज्ञा पाकर हाथों में जयमाल लिए सखियों के मंगलाचार गायन के साथ सीता बालहंसनी की चाल से श्री राम का वरण करने चलीं।

तन में संकोच है, किंतु मन में है परम उत्साह। उन्होंने दोनों हाथों से जयमाल उठाई, किंतु प्रेम विवश होने से वो पहनाई नहीं जाती। हाथों की शोभा ऐसी मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को संकोच रूपी भय के साथ जयमाल पहनाने को उत्सुक हों।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कृषि चर्चा में सामयिक चर्चा। विषय है कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती से अधिक लाभ कैसे। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राजेश लेखी।
1: किसान भाइयों, कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए जो है किसान भाइयों को ये विशेष ध्यान रखना होगा कि मृदा का जो पीएच मान है वो 6 से लेकर जो है 7.5 जो है पीएच के करीब जो है होना चाहिए जो है। और किसान भाई जो है अपनी मृदा को देखते हुए, और अगर किसान भाई मृदा की जांच पूर्व में करा चुके हैं तो वो बहुत ही अच्छा होगा जी। कद्दू वर्गीय सब्जियों में जो है खीरा, लौकी, करेला, टिंडा, कद्दू, सभी कद्दू वर्गीय सब्जियां जो किसान भाई इस समय पे जो है आसानी से अपना रोपण कर सकते हैं। खीरा बोना चाहते हैं तो प्रति हेक्टेयर जो है वो 4 से 5 किलोग्राम जो है बीज जो है वो उपयुक्त होगा जो है, क्योंकि बाजार में जो है इस समय जो है बहुत सी हाइब्रिड और उन्नत किस्में आ चुकी हैं, और हाइब्रिड किस्मों का बीज जो है सामान्य किस्मों से जो है लगभग आधे से भी कम लगता है जी। इसलिए अगर किसान भाई जो है चुनाव करते समय भी ध्यान दें कि भाई हमको जो है परपरागत किस्में जो हैं जो कि जिनमें बीज अधिक लगता है 4 से 5 किलो जो है, उसकी अपेक्षा जो है वो हाइब्रिड जो है या विकसित किस्मों का जो है अगर बीज लेंगे तो वो लगभग 1.25 किलो से लेकर जो है 1.5 किलो के करीब लगता है। तो किस्में जो हैं वो जापानी लौंग, ग्रीन जो है पूसा संयोग, पूना खीरा जो है, पॉइंसेट, साक्षी, शीतल, मोहिनी और हिमांगी जो है, ये किस्में जो है आसानी से जो किसान भाई लगा सकते हैं। ये लगभग जो है 130 से लेकर जो है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है लगभग 1.25 से 1.5 मीटर के जो है करीब जो है वो उनको आपस में दूरी रखनी होगी। लौकी बोना चाहें तो बीज की मात्रा जो है वो 3 से 4 किलोग्राम रहेगी, और वही जो है हाइब्रिड में जो है वो 1 किलो 200 ग्राम से लेकर जो है 1 किलो 300 ग्राम, और बाजार में जो है इस समय जो है बहुत अच्छी जो है किस्में जो है जैसे कि पूसा संदेश जो है लौकी में, पूसा मेघदूत, पूसा समर प्रॉफिट लॉन्ग और पूसा राउंड, मंजरी, पूसा मेघदूत आदि किस्में आसानी से उपलब्ध हैं। पूसा नवीन बीज है बहुत अच्छी जो है, और देवी किस्म बीज है वो बाजार में उपलब्ध है जी। और बीज है संकर किस्में जो है बाजार में अच्छी जो है किस्में उपलब्ध हैं जी। करेला जो है किसान भाई जो है 5 से 6 किलोग्राम बीज है वो सामान्य किस्मों के लिए, और 1 किलो 200 ग्राम से लेकर 1 किलो 300 ग्राम जो है हाइब्रिड किस्मों का बीज जो है वो लगा सकते हैं जी। रोपाई जो है वो 150 से 160 सेंटीमीटर जो है और गुणित 60 सेंटीमीटर जो है दूरी पर। किस्में जो है पूसा विशेष, पूसा दो मौसमी, अर्का हरित और नरेंद्र किस्में जो है। खाद की संतुलित मात्रा जो है खीरा, लौकी और करेला में तीनों में जो है 130 से लेकर 150 किलोग्राम जो है प्रति हेक्टेयर जो है यूरिया जो है लगभग किसान भाई ये मान के चलें कि 3 बैग

0: हेक्टेयर जे, और सिंगल सुपर फास्फेट जो है 250 किलोग्राम जो है प्रति हेक्टेयर जे, ये लगभग 5 बैग जो है वो प्रति हेक्टेयर जे किसान को लगाने पड़ेंगे। ऐसे ही म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है वो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है 2 बैग जो है तो की आवश्यकता होगी। इनमें जो है यूरिया में जो है 40% जो है, सिंगल सुपर फास्फेट में 16% जो है, और म्यूरेट ऑफ पोटाश में जो है 60% जो है। किसान भाई जो है खेत की अंतिम तैयारी के समय, या अगर किसान भाई जो है गड्ढों में बो रहा है तो गड्ढे की जो है तैयारी के समय जो है गोबर की खाद के साथ में प्रथम जो है 1/3 मात्रा जो है वो तीनों की जो है वो प्रथम अवस्था में जो है वो डाल सकता है जो, और जैसे ही बीज अंकुरित हो जाए उसके बाद में जो है 1 से 1.5 माह के अंतराल पे जो है वो इनको 2 बार जो है वो खाद की विशेष मात्रा जो है यूरिया को, सुपर फास्फेट और पोटाश की पूरी मात्रा प्रथम बार में ही डालनी है, और यूरिया को वो जो है वो 2 बार में जो है या 3 बार में बांट के डाल सकता है। और किसान भाई जो है अच्छा ये होगा कि वो अपनी भूमि की जो जांच करा ले तो इनकी मात्राओं में जो है कम या ज्यादा किया जा सकता है जो उसके अनुसार। तुरई भी जो है वो 5 से 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी जो, और इसमें जो है पूसा सुप्रिया, पूसा चिकनी, पूसा नसदार, अर्का सुमित और अर्का सुजात जो है किस्में आसानी से मिल सकती हैं जो। दूरी जो है वही 150 से 160 सेंटीमीटर जो है गुणित जो है 60 सेंटीमीटर। खाद जो है वो 130 से 150 किलोग्राम जो 3 सभी के लिए कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए यही मात्रा जो है आवश्यकता पड़ती है।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा में सामूहिक चर्चा, कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती से अधिक लाभ कैसे, जानकारी दे रहे थे डॉक्टर राजेश लेखी। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव साथ ही आप हमसे जुड़े हुए हैं मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी। लीजिए अब सुनिए सूचना परक कार्यक्रम दर्पण में कुछ संदेश।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: धरती माँ की यही पुकार, वृक्ष लगाओ बारंबार, मिलजुल कर पेड़ लगाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ, धरती पर हरियाली लाओ, जल थल वायु अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों से ही बनता है हमारा पर्यावरण। आइए इस पर्यावरण को हरा भरा बनाएं, वृक्ष लगाएं।

बधाई हो दत्ता, बहुत बहुत बधाई हो, बिटिया जन्मी है, घर में लक्ष्मी आई है, बहुत बहुत बधाई हो।

0: बेटियां माता पिता का ही नहीं देश का नाम भी रोशन करती हैं। उन्हें पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए।
1: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही देश की मांग है आज।
2: सड़क पर गाड़ी चलाते समय पैदल चलने वालों का ध्यान रखें। ट्रैफिक सिग्नल पर निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। गाड़ी जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रोकें। यदि सिग्नल पर टाइमर 90 सेकंड रुकने का निर्देश दे तो इंजन बंद कर दें। बेवजह ईंधन की खपत ना करें। प्रदूषण भी ना बढ़ाएं। हरी बत्ती मिलने पर हॉर्न बजाते हुए आगे जाने की जल्दबाजी ना करें। ये दुर्घटना को बढ़ावा तो देगा ही, ध्वनि प्रदूषण से चालकों का तनाव भी बढ़ाएगा। सड़क पर चलने का हक सबको है, इसलिए सबका ध्यान रखें।

0: प्लास्टिक पॉलीथीन का छोड़ो साथ, प्रकृति से मिलाओ हाथ। प्लास्टिक पॉलीथीन थैलों का उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति के लिए है रोग। खरीदारी करते समय कपड़े से बना थैला हमेशा साथ रखें। यदि पर्यावरण बचाना है, पॉलीथीन दूर हटाना है।
1: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं। रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
2: अभी आप सुन रहे थे सूचना पर कार्यक्रम दर्पण में कुछ संदेश। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत और हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
3: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। नेपालदेशे ह्यः सहसा भीषण जलाप्लावस्य अनन्तरं प्रायः 60+ मृत्युः अभवत् तथा 75+ जनाः लुप्ताः सन्ति। विलुप्तेषु 33+ भारतीय नागरिकाः अपि सम्मिलिताः सन्ति। मध्यनेपालप्रदेशे जातः अयं जलाप्लावः अनेकान् नगरान् ग्रामान् च विनाशितवान्। अनेके महत्वपूर्णाः सेतवः प्रवाहेन नष्टाः तथा प्रायः 12 अपि प्रभाविताः सन्ति। नेपालस्य विदेशमन्त्री शिशिर खनालः संसदं सूचितवान् यत् स्थायि समयानुसारं प्रातः प्रायः 9:15 तिब्बत प्रदेशे भूकम्पः आगतः, अथ ततः 3 अनन्तरं सहसा जलाप्लावस्य सूचना प्राप्ता। अतः तस्मात् भूकम्पकम्पनकारणात् हिमनदः स्फुटितः, येन सहसा जलाप्लावः उत्पन्नः इति सम्भावना व्यक्ता। अधिकारिभिः संसूचितं यत् प्रभावितप्रदेशस्य विभिन्नभागेभ्यः प्रायः 100 रक्षिताः, तेषु 30 काठमाण्डुनगरे स्थिते त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षणचिकित्सालये चिकित्सां प्राप्नुवन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वीय नेपालस्य समकक्षेण बालेन्द्र शाहेन सह दूरभाषेण वार्तां कृत्वा तस्मै सर्वसम्भवमानवीय सहायतायाः आश्वासनं दत्तवान्। श्री शाहः प्रधानमन्त्रिणे मोदिने सहानुभूतिपूर्णवचनानां मानवीय सहायतायाः प्रस्तावस्य च कृते धन्यवादं ज्ञापितवान्। नवदिल्लीतः पूर्वमेव 10-टन मानवीय सहायता प्रेषिता अस्ति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः सामाजिक सञ्चारपटले उक्तवान् यत् भारतम् अस्यां संकटापन्नायां परिस्थितौ नेपालदेशेन तत्रत्यैः जनैश्च सह दृढतया स्थिति। काठमाण्डुनगरे स्थितेन भारतीय दूतावासेन भारतीय नागरिक सम्बद्ध सहायतायै सूचनायै च आपत्कालीन दूरभाष संख्याः प्रकाशिताः। विलुप्तेषु भारतीयेषु न्यूनातिन्यूनं 50 कैलास मानसरोवर यात्रायै गताः तीर्थयात्रिणः सन्ति इति अवधेयास्पदं वर्तते। हिमालयीय देशे सहसा जातेन जलाप्लावेन अथ गण्डकनद्याः च जलस्तरे वृद्धेः सम्भावनां दृष्ट्वा बिहार राज्य

0: येन सज्जताः तीव्रीकृताः। बिहारस्य पश्चिमचम्पारण पूर्वचम्पारण गोपालगंज सारण मुजफ्फरपुर वैशाली इत्येतेषु षट्सु जनपदेषु सतर्कता वर्धिता अस्ति। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उक्तवान् यत् परिस्थितिं निरीक्षणाय उच्चस्तरीय दलस्य निर्माणं कृतमस्ति। उत्तरप्रदेशे नेपाल सीमा समीपस्थयोः महाराजगंज कुशीनगर जनपदयोः निरीक्षणं वर्धितमस्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन खेलो इंडिया इति संवादं संबोधयिष्यति। मेरा युवा भारत इत्येतद् द्वारा ऐषमः राष्ट्रिय क्रीडा दिवस समारोहाणं अन्तर्गतम् आयोजितः अयं कार्यक्रमः सम्पूर्ण देशे आयोजयिष्यते, यस्मिन् प्रत्येकस्य राज्यस्य केन्द्रशासित प्रदेशस्य च प्रत्येकस्मिन् जनपदे स्थितयोः द्वयोः महाविद्यालययोः युवानः भागं ग्रहीष्यन्ति। अयं कार्यक्रमः क्रीडा, युवनेतृत्वं, नागरिकदायित्वं, स्वयं सेवा, शारीरिकस्वास्थ्यं, राष्ट्रनिर्माणं च एकस्मिन् सामूहिकमञ्चे संयोजयिष्यति। भारत चीन देशौ सीमा क्षेत्रेषु शान्तिं स्थैर्यं च स्थापयितुं तथा उभयोः देशयोः द्विपक्षीय सम्बन्धानां स्वस्थं निरन्तरं च विकासाय अनुकूलं वातावरणं निर्मातुं स्वप्रतिबद्धतां पुनः प्रतिपादितवन्तौ। भारत चीनयोः विशेष प्रतिनिधीनां सीमा विवाद सम्बद्ध वार्तायाः 25वां चरणं ह्यः बीजिंग नगरे अभवत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया है। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ली गई और कई जल विद्युत परियोजनाओं को ठप कर दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में कल सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के बाद 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से ये आपदा आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारत इस मुश्किल घड़ी में नेपाल और उसके लोगों के साथ खड़ा है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है 9779851316807 और 9779701075000। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने लापता लोगों की खोज और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पीपल्स आर्म्ड पुलिस की शिकाजे टुकड़ी के कुल 145 अधिकारियों और सैनिकों को आपातकालीन प्रतिक्रिया अभियानों में सहायता के लिए प्रभावित सीमा बंदरगाह पर भेजा गया है। वहीं विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपये देने की पेशकश की है। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
2: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
3: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ। जरूरत पड़ा तो मैं

0: भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
1: उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 शुरू कर दी है। प्रभावित परिवार इस हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत जानकारी साझा कर सकते हैं। महाराजागंज और कुशीनगर सीमावर्ती जिलों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तैयार रहने और गंडक तथा नारायणी नदियों में जलस्तर की लगातार निगरानी करने का निर्देश दिया है। जम्मू कश्मीर में कल पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में एक सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सरकार ने आगामी महीनों में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन पर राज्य में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सौगात दी है। महिला यात्री आज से 29 अगस्त की मध्य रात्रि तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और शहर की बसों में एक सहयात्री के साथ मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। वीर चोटरानी और वेलवेन सेंथल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के सेमीफाइनल में पहुँच गए हैं। ये दोनों भारतीय खिलाड़ी आज सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, मीडियम वेव। साथ ही आप हमसे जुड़े हुए हैं मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR से भी। इस समय प्रातः के 7:05 और 10 सेकेंड्स हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विवरण।

सुबह 7:20 पर श्रोता सुनेंगे काजी तनवीर की कुछ काव्य रचनाएं। फिल्म संगीत सुनिएगा 7:30 पर। प्रातः 8:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग आप सुनेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। सूचना और समाचारों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर प्रस्तुत करेंगे प्रातः 9:00।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे पंडित दालचंद शर्मा। आप सुनेंगे ताल चौताल में पखावज वादन। प्रसारण समय रहेगा प्रातः 9:30। श्रोता साथियों के व्हाट्सएप संदेशों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आप सुनेंगे सुबह 10:05 पर। दिन के 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक आप सुनते हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का अनुप्रसारण। दिन के 11 बजे सुनिएगा कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे। महिला कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अपराह्न 1 बजे आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता लेंगे दोपहर 2 बजे और 2:30 पर फिल्म संगीत और चित्रपट संगीत के जरिए।

शाम 4 बजे श्रोता सुनेंगे विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। युवाणी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति। प्रसारण समय रहेगा शाम 5:02। फिल्म संगीत सुनेगा शाम 5:33 पर। शाम 6 बजे आप सुनेंगे NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग।

शाम 7:20 पर सुनेगा भोपाल से अनुप्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। कार्यक्रम सुर्खियों में सुनेगा रात 8:00, 8:15 पर सुनेगा फिल्म संकेत। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश श्रोता सुनेंगे रात 10:00 और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी सुनिएगा रात 10:30 पर। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी ग्वालियर और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है।

0: हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय खेल दिवस पर आज प्रदेश के 24 स्थानों पर खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम। प्रधानमंत्री खिलाड़ियों और युवाओं से करेंगे संवाद। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत और 750 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर। भारत ने राहत सामग्री और दवाओं की 10 टन खेप भेजी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जबलपुर की व्हीकल फैक्ट्री में T-72 टैंकों के ओवरहाल की 600 करोड़ रुपए की परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भिंड के मालनपुर में गोदरेज की नई विनिर्माण इकाई का किया शुभारंभ। 450 करोड़ रुपए के निवेश से 600 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। और प्रदेश में मानसून सक्रिय, दतिया में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आज खेलो इंडिया संवाद खेल की बात पीएम के साथ कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश के 24 स्थानों पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11:45 पर खिलाड़ियों, युवाओं और खेल प्रतिभाओं से संवाद करेंगे। भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों के शैक्षणिक संस्थानों में होने वाले इन कार्यक्रमों में सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। हरदा, बड़वानी और छतरपुर में केंद्रीय मंत्री भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रमों में विद्यार्थियों और खिलाड़ियों की सहभागिता के साथ खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। कल मध्य नेपाल में आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और एक दर्जन जल विद्युत परियोजनाओं को ठप कर दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया है कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण हिमखंड फट जाने से आपदा आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेपाली समकक्ष बालेन्द्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव मानवीय सहायता

0: आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है, जिसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट और सौर लैंप शामिल हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर हैं 9779851316807 और 9779709107500। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने भी सहायता के लिए टोल फ्री आपातकालीन नंबर 1234, हॉटलाइन 1144 और पर्यटक पुलिस नंबर 9851289445 सहित इसी तरह के नंबर जारी किए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी नेपाल में हुई जनहानि पर संवेदना व्यक्त की है। ओमकारेश्वर में एकात्म धाम स्थित पंचायतन मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सुबह संतों और विशिष्ट अतिथियों के साथ 45 पवित्र शिलाओं का पूजन कर मंदिर निर्माण का शुभारंभ करेंगे। वैदिक अनुष्ठान के बीच हो रहे इस आयोजन में संत मंडल और विभिन्न पीठों के आचार्य शामिल हैं। पंचायतन मंदिर में भगवान शिव मुख्य देवता होंगे, जबकि भगवान विष्णु, सूर्य, गणेश और भगवती शक्ति के उप देवालय होंगे। आयोजन के माध्यम से आदि शंकराचार्य के समन्वय और एकात्मता की परंपरा को आगे बढ़ाने का देंगे। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कल राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विधानसभा से पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब विधि और विधायी विभाग इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजेगा। विधानसभा ने यह विधेयक 21 जुलाई को पारित किया था। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद विधेयक को राजपत्र में अधिसूचित कर इसके प्रावधान प्रदेश में प्रभावी किए जा सकेंगे। प्रस्तावित कानून में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों के लिए समान कानूनी व्यवस्था का प्रावधान है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जबलपुर स्थित व्हीकल फैक्ट्री में T-72 टैंकों के ओवरहाल की करीब 600 करोड़ रुपए की परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के भी कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू हो रही इस परियोजना में T-72 टैंकों के रखरखाव, मरम्मत और तकनीकी उन्नयन के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। इससे सेना के बख्तर बंद बेड़े की परिचालन क्षमता मजबूत होने की उम्मीद है। भिंड जिले के मालनपुर में कल गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की चौथी नवीन एकीकृत विनिर्माण इकाई का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुभारंभ किया। करीब 450 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश से स्थापित इस इकाई से 600 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश क्षमता मूर्त रूप ले रही है।
2: बीते समय जो GIS के माध्यम से भोपाल में 30 लाख करोड़ के निवेश के MOU हुए, एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है। आमतौर पर जितने MOU होते हैं उसके 10% ही नीचे उतरते हैं, यहाँ 30% से ज्यादा निवेश धरातल पे उतरा। 10 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे राज्य के अंदर अलग अलग प्रकार से मूर्त रूप ले रहा है। कई तो अपने उत्पादन प्रारंभ करके अपनी पूरी क्षमता से रोजगार देते हुए देश और दुनिया के सामने अपने उत्पाद को पहुंचा रहे हैं।
0: रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए प्रदेश में खाद्य सुरक्षा प्रशासन की कार्रवाई जारी है। इंदौर में गुजरात से आई करीब 350 किलोग्राम मिठाई जब्त की गई है। खाद्य सुरक्षा टीम ने एक दुकान से मिठाई के 4 नमूने लिए। वही जबलपुर के पाटन में प्रतिबंधित एनालॉग मिल्क केक के करीब 40 किलोग्राम स्टॉक को जब्त किया गया और 5 मिठाई तथा खोआ दुकानों से 7 नमूने लिए गए। सभी नमूने जाँच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है। प्रदेश में अब तक औसतन 25.5 इंच बारिश हो चुकी है। हालांकि बारिश अब भी सामान्य से 11% कम है। मौसम विभाग ने आज दतिया में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजगढ़, ग्वालियर, भिंड, रीवा, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में भी भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं रीवा में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जल भराव

प्रभावित गायत्री नगर का जायजा लिया और 9 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू कराया। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिले में परिवहन विभाग द्वारा विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए आगरमालवा खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कल टीम ने 4 प्रतिष्ठित मिष्ठान दुकानों से नमूने लेकर जांच हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा है। सतना जिले में जलजनित और संक्रामक रोगों के संभावित फैलाव को देखते हुए कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। झाबुआ में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत राणापुर विकासखंड में आज आयोजित होने वाला जन विश्वास शिविर अब 29 अगस्त को होगा। वहीं मुरैना के बामोर में आज प्रस्तावित जन विश्वास कैंप अब 29 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। आमजन को बेहतर आधार सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंदसौर नीमच डाकघर संभाग द्वारा 29 अगस्त को सेवा केंद्रों पर विशेष अभियान आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। इस समय प्रातः के 7:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए काजी तनवीर की कुछ काव्य रचनाएं।
1: मौत जब आएगी हमसे और क्या ले जाएगी, मौत जब आएगी हमसे और क्या ले जाएगी, मुस्कुराकर जख्म सहने की अदा ले जाएगी, मुस्कुराकर जख्म सहने की अदा ले जाएगी। यारो अब भी वक्त है, गर हो सके तो रोक लो। यारो अब भी वक्त है, गर हो सके तो रोक लो, अब के आंधी आई तो सब कुछ उड़ा ले जाएगी। यारो अब भी वक्त है, गर हो सके तो रोक लो, अब के आंधी आई तो सब कुछ उड़ा ले जाएगी। ये दुकानों से सजा रखे हैं लोगों ने बदन, ये दुकानों से सजा रखे हैं लोगों ने बदन, अब नई तहजीब किस जानिब भला ले जाएगी, अब नई तहजीब किस जानिब भला ले जाएगी। हमने ऐ तनवीर पहले ही जताया था उन्हें, हमने ऐ तनवीर पहले ही जताया था उन्हें, ये घरौंदे एक दिन नदियाँ बहा ले जाएगी, ये घरौंदे एक दिन नदियाँ बहा ले जाएगी। और एक मतला समात फरमाएं कि गुज़र गया तो ये मंज़र कहाँ से लाओगे, गुज़र गया तो ये मंज़र कहाँ से लाओगे, उतर गया तो समंदर कहाँ से लाओगे, उतर गया तो समंदर कहाँ से लाओगे, उतर गया तो समंदर कहाँ से लाओगे, बिगड़ गया तो मुकद्दर कहाँ से लाओगे, बिगड़ गया तो मुकद्दर कहाँ से लाओगे, उजड़ गया तो नया घर कहाँ।

0: से लाओगे, उजड़ गया तो नया घर कहाँ से लाओगे, बताओ सोच समझ कर कहाँ से लाओगे, बताओ सोच समझ कर कहाँ से लाओगे, यजीद जैसा सितमगर कहाँ से लाओगे, यजीद जैसा सितमगर कहाँ से लाओगे, लड़ाई मैंने लड़ी है सदा उसूलों की, लड़ाई मैंने लड़ी है सदा उसूलों की, लड़ाई मैंने लड़ी है सदा उसूलों की, मेरा मिजाज बदल कर कहाँ से लाओगे, मेरा मिजाज बदल कर कहाँ से लाओगे, लड़ाई मैंने लड़ी है सदा उसूलों की, मेरा मिजाज बदल कर कहाँ से लाओगे, अमीरे शहर से तनवीर आज कह दीजिए, अमीरे शहर से तनवीर आज कह दीजिए, आज कह दीजिए, वहाँ पे फूलों का बिस्तर कहाँ से लाओगे, वहाँ पे फूलों का बिस्तर कहाँ से लाओगे, और अर्ज़ किया है एक मतला के कोई कदमों का और कोई सर का, कोई कदमों का और कोई सर का, दोस्तों खेल है मुकद्दर का, दोस्तों खेल है मुकद्दर का, तुमने नज़रों से क्या गिराया है, तुमने नज़रों से क्या गिराया है, मैं तो बस हो गया हूँ दर दर का, मैं तो बस हो गया हूँ दर दर का, मैं तो बस हो गया हूँ, तुमने नज़रों से क्या गिराया है, मैं तो बस हो गया हूँ दर दर का, और अर्ज़ किया है कि उम्र भर पत्थरों के बीच रहा, उम्र भर पत्थरों के बीच रहा, उम्र भर पत्थरों के बीच रहा, लुत्फ क्या खाक जानूं बिस्तर का, लुत्फ क्या खाक जानूं बिस्तर का, उम्र भर पत्थरों के बीच रहा, और ये अचानक भला हुआ क्या है, ये अचानक भला हुआ क्या है, ये अचानक भला हुआ क्या है, बदला बदला निज़ाम है घर का, बदला बदला निज़ाम है घर का, ये अचानक भला हुआ क्या है, बदला बदला निज़ाम है घर का, ज़र्रा तनवीर बन के चमका है, ज़र्रा तनवीर बन के चमका है, ये करिश्मा है बंदा परवर का, ये करिश्मा है बंदा परवर का, ये करिश्मा है बंदा परवर का, और एक मतला समात फरमाएं कि अगर आप चेहरे से पर्दा हटाएं, अगर आप चेहरे से पर्दा हटाएं, तो ये चांद तारे अभी डूब जाएं, तो ये चांद तारे अभी डूब जाएं, इधर अपनी जुल्फों को उसने बखेरा, इधर अपनी जुल्फों को उसने बखेरा, उधर छा गई आसमां पर घटाएं, उधर छा गई आसमां पर घटाएं, ज़मीं अब तो रहने के काबिल नहीं है, ज़मीं अब तो रहने के काबिल नहीं है, ज़मीं अब तो रहने के काबिल नहीं है, चलो चांद पर आशियाना बनाएं, चलो चांद पर आशियाना बनाएं, ज़मीं अब तो रहने के काबिल नहीं है, चलो चांद पर आशियाना बनाएं, चलो चांद पर आशियाना बना, हमें जिसने तनवीर ज़ख्मी किया है, हमें जिसने तनवीर ज़ख्मी किया है, हमें जिसने तनवीर ज़ख्मी किया है, उसे सोचिए किस तरह भूल जाएं, उसे सोचिए किस तरह भूल जाएं, हमें जिसने तनवीर ज़ख्मी किया है, उसे सोचिए किस तरह भूल जाएं, उसे सोचिए किस तरह भूल जाएं, जैसा कि बांकपन है नदी के बहाव में, जैसा कि बांकपन है नदी के बहाव में, कुदरत ने मुझको बख्श दिया है स्वभाव में, قدرت نے مجھ کو بخش دیا ہے سبحان میں، قدرت نے مجھ کو بخش دیا ہے سبحان میں، ویسے میری بساط بھلا کیا تھی دوستو، ویسے میری بساط بھلا کیا تھی دوستو، لیکن گزاری عمر بڑے رکھ رکھاؤ میں، لیکن گزاری عمر بڑے رکھ رکھاؤ میں، چنگاریاں تھیں جو بھی سبھی بجھ کے رہ گئیں، چنگاریاں تھیں جو بھی سبھی بجھ کے رہ گئیں، کیا ڈھونڈتے ہیں آپ سمے کے علاؤ میں، کیا ڈھونڈتے ہیں آپ، کیا ڈھونڈتے ہیں آپ سمے کے علاؤ میں، چنگاریاں تھیں جو بھی سبھی بجھ کے رہ گئیں، سوکھے ہوئے لبوں پہ تبسم کی ایک لکیر، سوکھے ہوئے لبوں پہ تبسم کی ایک لکیر، تبسم کی ایک لکیر، جیسے کوئی گلاب کھلا ہو الاؤ میں، جیسے کوئی گلاب کھلا ہو الاؤ میں، دنیا کو چھوڑ کر کہیں تنویر اور چل، دنیا کو چھوڑ کر کہیں تنویر اور چل، کیسے کٹے گی عمر یہاں بھید و بھاؤ میں، کیسے کٹے گی عمر یہاں بھید و بھاؤ میں، جیسا کہ بانک پن ہے ندی کے بہاؤ میں، قدرت نے مجھ کو بخش دیا ہے سبحان۔
1: ابھی شروتا سن رہے تھے قاضی تنویر سے کچھ کاویہ رچنائیں۔ یہ آکاشوانی کا گوالیئر کیندر ہے، میڈیم ویو ساتھی شروتا ہم سے جڑے ہوئے ہیں موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر سے بھی۔ اس سمے صبح کے 7:30 ہوئے ہیں، لیجیے اب سنیے فلم سنگیت کا کارکرم۔

अभी आपने सुना मुकेश और साथियों की आवाज़ों में फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का ये गीत। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोता साथियों, मुकेश एक आवाज़ जिसने समझाई जिंदगी के मायने। फिल्म कभी कभी का शीर्षक गीत ये महज ख्याल नहीं बल्कि प्रेम की एक परिभाषा है जो युवा दिलों के सपनों में बनकर आज भी सांस ले रही है। इस गीत को मुकेश साहब ने अपनी जादुई आवाज से अमर बना दिया। आज हम सभी गायक मुकेश की पुण्यतिथि के रूप में उन्हें याद कर रहे हैं और अपने श्रद्धा सुमन उनके गाए गीतों के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म तीसरी कसम का ये गीत मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं शैलेंद्र, धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने।

श्रोता साथियों, इस गीत को अभिनेता राज कपूर पर फिल्माया गया था। यूं तो पहले दिलीप कुमार पर उनकी आवाज को हमने देखा है उनके ऊपर फिल्माते हुए, लेकिन बाद के कुछ समय राज कपूर के ऊपर उनके गाए गीत फिल्माए गए। मुकेश का जन्म 22 जुलाई को दिल्ली में हुआ और उनका पूरा नाम था मुकेश चंद माथुर। बचपन से ही उनके दिल में अभिनेता बनने की ख्वाहिश पल रही थी, लेकिन आवाज़ की दुनिया में उनका सितारा पहले से ही तैयार हो रहा था, लेकिन इंतज़ार था तो बस उनके चमकने का। उन्होंने अपने बहन की साथ संगीत की शिक्षा ली और उन्हीं को सुनकर मुकेश भी संगीत में पारंगत हो गए। मुकेश ने अपने करियर में 1500 से भी कम गाए गीत, लेकिन ऐसा लगता है मानो हर गाना हिट था। नौशाद के साथ उनकी जुगलबंदी बेहद उम्दा थी। उस दौर में मुकेश की आवाज़ में सबसे ज़्यादा गीत दिलीप कुमार पर फिल्माए गए। 50 के दशक में उन्हें एक नई पहचान मिली जब इन्हें राज कपूर की आवाज़ कहा जाने लगा। एक साक्षात्कार में खुद राज कपूर ने अपने दोस्त मुकेश के बारे में कहा कि मैं तो बस शरीर हूँ, मेरी आत्मा तो मुकेश है। मुकेश को मनोज कुमार की आवाज़ भी माना जाता रहा है। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म सरस्वती चंद्र का ये गीत। आवाज़ मुकेश की ही है।

0: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
1: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
2: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV/AIDS जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
1: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस्ड ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
3: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
4: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
6: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
5: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
7: श्रोता साथियों, आज गायक मुकेश की पुण्यतिथि है, उन्हीं को याद करते हुए आज हम आपको सुनवा रहे हैं उनके गाए कुछ चुनिंदा गीत। मुकेश के मासूम और प्यार में डूबे इन गीतों के शब्द जितने मासूम हैं, उतनी ही मखमली आवाज़ में मुकेश ने प्यार के इजहार को हर दिल अजीज बना दिया। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म आह का ये गीत, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में। बोल है हसरत जयपुरी के, धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

सन 1976 में अमेरिका में मुकेश ने एक कॉन्सर्ट में हिस्सा लिया। आज ही के दिन यानी 27 अगस्त का वो दिन था जब उन्हें हमसे दूर कर दिया। ये जादुई आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई और एक संदेश दे गई। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में अब आपको सुनवाते हैं फिल्म शोर का ये गीत, मुकेश के साथ लता मंगेशकर और साथियों को

अभी श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली से अनुप्रसारित समाचार प्रभात और उसके बाद मॉर्निंग न्यूज़।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मुख्य समाचार। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। अमेरिका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए $18 अरब तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों सहित 750 से अधिक लोग लापता है। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ली गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट।
3: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से यह आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हेन्दी नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। चीन के सरकारी चैनल ने बताया कि चीन की सीमा पर 3 लोगों की मौत हो गई है और 265 लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इनमें से 30 लोगों का काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में इलाज चल रहा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है, जिसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट और सौर लैंप शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस आपदा में नेपाल और उसके लोगों के साथ है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779709107500। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने लापता लोगों की तलाश और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पेचिंग में भारतीय दूतावास ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 0086185142905। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के 50 भारतीय तीर्थयात्री भी लापता लोगों में शामिल हैं। अब तक विनाशकारी बाढ़ के बाद कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों से 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं। विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपात वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। बिहार सरकार ने नेपाल में भयावह बाढ़ और गंडक नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित गंडक नदी के किनारे बसे जिलों के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज में नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। आज सुबह बैराज से करीब 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो कल रात दर्ज किए गए 150,000 क्यूसेक डिस्चार्ज का लगभग आधा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे 5,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। अन्य संवेदनशील जिलों में भी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। बिहार सरकार ने लोगों से सतर्क रहने, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार पटना।
2: राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि हाई अलर्ट को देखते हुए एक उच्च स्तरीय टीम भी गठित की गई है।
5: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
2: उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 शुरू कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित परिवार इस हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत जानकारी साझा कर सकते हैं।
6: उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार अगर राज्य का कोई भी नागरिक नेपाल में फंसा है या उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो उनके परिवार वाले तुरंत 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार ने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और उन्हें तुरंत मदद पहुंचाने के लिए दूतावास स्तर पर संपर्क शुरू कर दिया है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
7: यह संवाद युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ने का सीधा माध्यम प्रदान करेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। इसकी प्रमुख विशेषता युवाओं और अग्रणी भारतीय एथलीटों और पदक विजेताओं के बीच सीधा संवाद है। कार्यक्रम का एक केंद्रीय पहलू युवा संवाद होगा। इसमें युवा प्रतिभागियों को अपने विचार, दृष्टिकोण और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यह संवाद 5 विषयों पर आधारित होगा, जिनमें खेल, ओलंपिक आकांक्षाएं, युवा नेतृत्व, विकसित भारत और नशा मुक्त युवा शामिल हैं। खेलो इंडिया संवाद का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ, अनुशासित और खेल प्रिय राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप किया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया है कि प्याज को 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। एक रिपोर्ट।
8: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है, क्योंकि 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। मंत्रालय ने बताया कि उत्पादन की अनुकूल संभावना को देखते हुए सरकार ने 2026-27 के दौरान मूल्य स्थिरीकरण कोष बफर के लिए रबी प्याज की 2 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। खरीद प्रक्रिया 15 मई से शुरू हुई और बफर के लिए लगभग 1,21,000 मीट्रिक टन प्याज की खरीद की जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस नासिक से रवाना हो चुकी है। आनंद और सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
2: अमरीकी प्रशासन ने दुनिया भर के सभी अप्रवासी वीजा आवेदनों पर रोक लगा दी है। ये कदम अमरीकी विदेश विभाग द्वारा उन आवेदकों पर प्रतिबंध कड़ा करने और उनकी पहुँच सीमित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। आरक्षित सार्वजनिक लाभों पर निर्भर हो सकते हैं। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने 18 अरब अमरीकी डॉलर का भुगतान करने और अपने फेसबुक तथा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा के लिए और भी कड़े उपाय करने पर सहमति जताई है। एक रिपोर्ट।
9: अदालत की मंजूरी मिलने पर यह समझौता मेटा के खिलाफ राज्यों की ओर से दायर मुकदमों को रोक देगा। मेटा ने कहा है कि किशोरों को अपने प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और उपयोगी अनुभव प्रदान करना कंपनी के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेटा ने प्रतिद्वंदी टिकटॉक और यूट्यूब से भी इसी तरह के सुरक्षा उपाय अपनाने का आग्रह किया। यह समझौता कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी से जुड़े एक अदालती मामले का निपटारा करेगा, जो 2023 में मेटा पर मुकदमा दर्ज करने वाले 29 राज्यों में शामिल थे। मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि मेटा ने बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म की लत आने वाले फीचर्स जानबूझकर डिजाइन किए और इसके बारे में लोगों से जानकारी छिपाई, जिससे युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य के विकार पैदा हुए। मामले में यह भी आरोप लगाया गया कि मेटा ने माता पिता की सहमति के बिना 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का डेटा नियमित रूप से एकत्रित करके संघीय कानूनों का उल्लंघन किया। समाचार कक्ष से विकास नापा।
2: क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को पहली पारी में कम स्कोर पर ऑल आउट करके और फॉलो ऑन देकर दूसरे और अंतिम टेस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। कल चौथे दिन खेल समाप्त होने तक श्रीलंका ने 6 विकेट पर 229 रन बनाए थे। श्रीलंका के पासेंदु सूर्या बंदारा ने 92 रन बनाए। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद प्रियंका। नेपाल में जल प्रलय से मची तबाही को आज जनसत्ता और हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, नेपाल में केदारनाथ जैसी त्रासदी, ग्लेशियर से 2000 फीट का टुकड़ा गिरने से झील बनी टूटते ही सैलाब। अमर उजाला की सुर्खी है, दो नए सैन्य संपर्क बनाएंगे भारत और चीन। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की भारत यात्रा से पहले विशेष प्रतिनिधियों के बीच दो हॉटलाइन पर बनी सहमति, 8 बिंदुओं से सुलझाएंगे सीमा विवाद। दहेज मामलों में अब तारीख पर तारीख नहीं। नवभारत टाइम्स ने बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज के मामले प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। सरकार की सख्ती के बाद गिरने लगे चीनी के भाव। दैनिक जागरण ने लिखा है, सप्ताह भर में चीनी के मूल्य में 12 से 15 रुपए की कमी, कुछ दिनों में और गिरावट का अनुमान। दैनिक भास्कर की ये खबर ध्यान खींचती है, फोर्ब्स एशिया 100 टू वॉच सूची में सबसे ज्यादा 19 स्टार्टअप के साथ भारत शीर्ष पर। स्वदेशी पावर चिप से लेकर सीधे कैंसर सेल्स तक दवा पहुंचाने के इनोवेशन कर रही ये कंपनियां। राजस्थान पत्रिका ने ध्वनि प्रदूषण शीर्षक से लिखा है, ट्रैफिक की कर्कश आवाज तले दबी पक्षियों की मीठी चहचहट, इंसानों को अब पूरा नहीं मिल पा रहा तनाव मिटाने वाला नेचुरल टॉनिक।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। अमेरिका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए 18 अरब डॉलर तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद, द हेडलाइंस। Massive flash flood claims nearly 160 lives in Nepal, over 750 people including 133 Indians missing. High alert issued in Bihar and Uttar Pradesh following Nepal flood. India sends first tranche of relief materials to Nepal. Prime Minister Narendra Modi to address Khelo India dialogue today through video conferencing. Centre begins targeted release of onions from buffer stocks to ensure adequate availability and check seasonal price rise. US halts all visa appointments globally amid President Donald Trump's immigration crackdown. Meta to pay up to $18 billion to settle claims that its platforms harm children. And in men's cricket, Team India on verge of Test Series win against Sri Lanka in Colombo. Nearly 160 people have been killed and over 750, including 133 Indian nationals, remain missing after a massive flash flood swept through central Nepal yesterday. Originating in Tibet, the flood devastated several towns and villages, washing away critical bridges and crippling a dozen hydropower projects. Nepal Foreign Minister Shishir Khanal told the parliament that an earthquake hit the Tibet region at 8:37 a.m. local time yesterday and the flash floods were reported 3 minutes later, suggesting a glacial outburst due to tremors which triggered the floods. More from our correspondent.
11: Nepal's National Disaster Risk Reduction and Management Authority said the massive flood entered the Trishuli River through the Bhote Koshi in Timur, a border town in Rasuwa district. Due to the rock slide and swelling of the Lende River, situated along the Nepal-Tibet border, it then spread along the river course to other districts like Nuwakot, Chitwan, Gorkha, Tanahu and Nawalparasi East, covering areas ranging to nearly 200 kilometers from the capital Kathmandu. Nepal police said 157 people died in the flash flood. The Nepal government said around 500 people are missing. According to China's state-run news channel, 3 people were killed and 265 are missing on the Chinese side of the border. Videos from the affected areas showed a powerful surge of muddy water, rocks and debris sweeping through the border region. Officials said that around 100 people have been rescued from different parts of the affected areas. Prime Minister Narendra Modi spoke to his Nepalese counterpart Balendra Shah and assured him of all possible humanitarian assistance. Mr. Shah thanked Prime Minister Modi for his warm words of solidarity and for offering humanitarian assistance. New Delhi has already sent the first tranche of relief supplies to the neighboring nation. Indian Embassy in Kathmandu issued emergency numbers for assistance and information related to Indian nationals. The Embassy of India in Beijing also issued a helpline number, which can also be contacted through WhatsApp. At least 50 of the Indians missing were pilgrims for the Kailash Mansarovar Yatra. Besides Indians, missing tourists are from more than 24 countries, including US, Malaysia, UK, South Africa, Australia and Netherlands. Komadi Parikh, Akashvani News, Delhi.
10: Bihar and Uttar Pradesh are on high alert after several districts in neighbouring Nepal were devastated by flash floods in the Gandak River system. NDRF has been placed on high alert along with the local administrations and relief rescue teams in the border areas where its impact may be felt. Union Home Minister Amit Shah spoke to Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath on the situation and the possible rise in river water levels. Bihar government has asked districts along the Gandak River, including West Champaran, East Champaran, Gopalganj, Saran, Muzaffarpur and Vaishali, to remain on alert. However, water level in Gandak River has started receding. A report.
4: At the Valmiki Nagar Gandak Barrage in West Champaran, the water level of the river is falling. Around 80,000 cusecs of water was released from the barrage this morning, about half the discharge recorded last night. At present, the situation is under control. However, as a precautionary measure, the district administration has already shifted more than 5,000 people living in low-lying areas to safer locations. The situation remains similar in other vulnerable districts as well. All necessary arrangements have been put in place to deal with any emergency. The Bihar government has appealed to people to remain alert, not to panic and to avoid rumours. Savita Parikh, Akashvani News, Patna.
10: Our Lucknow correspondent has filed this report on the situation in Uttar Pradesh.
6: In Uttar Pradesh, the state government has issued helpline number 1070 to assist citizens of the state stranded in Nepal. According to Uttar Pradesh Relief Commissioner's Office, if any citizen of a state is stranded in Nepal or requires any kind of assistance, their family members can immediately contact 1070. The state government has also initiated contact at the embassy level to ensure the safe return of citizens and provide them with immediate assistance. In view of the severe flooding in Nepal, vigilance has also been increased in Uttar Pradesh bordering district of Maharajganj and Kushinagar. Instructions have been issued to continuously monitor the water levels of the Gandak and Narayani rivers. Om Awasthi, Akashwani News, Lucknow.
10: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle @AIRNewsAlerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Prime Minister Narendra Modi will address Khelo India Dialogue through video conferencing today. The program is organized as part of the National Sports Day 2026 celebrations by Mera Yuva Bharat MY Bharat. More from our correspondent.
7: The Khelo India Dialogue will be conducted across the country with participation of youth at two colleges in every district across states and union territories. It will bring together sports, youth leadership, civic responsibility, volunteering, fitness, and nation building on a common platform. The dialogue will provide a direct channel for young people to engage with the country's sporting ambitions while ensuring that their ideas and perspectives become part of the continuing conversation on India's youth and sports ecosystem. A major feature of the initiative will be direct interaction between youth having interest in sports and leading Indian athletes and medal winners. A central feature of the program will be Yuva Samvad, where young participants will be invited to articulate their own ideas, perspectives, and aspirations. The dialogue will be structured around five themes, including sports, Olympic aspirations, youth leadership, Viksit Bharat, and Nasha Mukt Yuva. With Priya Saklan Akhtar, Akashwani News, Delhi.
10: Government has commenced calibrated and targeted release of onions from the buffer stock to ensure adequate availability and moderate seasonal price pressures in the coming months. Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that onion availability is comfortable to meet domestic demand in the coming months, as estimated production of onion for 2025-26 is over 307 lakh metric tons. It added that in view of the comfortable production outlook, government has fixed a procurement target of 2 lakh metric tons of Rabi onion for the Price Stabilization Fund, PSF, buffer during 2026-27. The procurement operation commenced on the 15th of May, and around 1.21 lakh metric tons of onions have been procured for the buffer. The ministry said that onion will be sold at 35 rupees per kilogram through mobile vans and retail outlets of National Cooperative Consumers Federation, NCCF, and National Agricultural Cooperative Marketing Federation, NAFED, as well as through Safal and Kendriya Bhandar outlets. Union Home Minister Amit Shah will visit Gujarat today. He will attend the 72nd convocation of Gujarat Vidyapeeth and chair a review meeting regarding preparations for the upcoming Olympic and Commonwealth Games in Ahmedabad. More from our correspondent.
12: Union Home Minister Amit Shah will begin his day by inaugurating the newly constructed Hetni Haveli Lake at Dudhala in Amreli District, developed by Hari Krishna Foundation. Later, Mr. Shah will chair a high-level review meeting at a circuit house annexe in Ahmedabad to assess the preparations for the upcoming Olympic and Commonwealth Games. In the afternoon, the Home Minister will grace the 72nd convocation ceremony of Gujarat Vidyapeeth as a chief guest and address the students. The minister is also scheduled to attend R.V. Patel Pharma Innova Awards 2026. Organized by Troika Pharmaceuticals in Thaltej, followed by a Lok Darbar at Bhopal in the Ghatlodia constituency to interact with the local residents. Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
10: In Uttar Pradesh, state government has announced free bus travel for women in state during Raksha Bandhan. Female passengers will be able to travel free of cost with one companion in Uttar Pradesh State Road Transport Corporation and city buses from today until midnight on August 29th. Haryana government will also provide free travel facilities for women on Haryana State Transport's ordinary buses on the occasion of Raksha Bandhan. This facility will commence this noon and remain in effect until midnight tomorrow. Children up to the age of 15 can accompany women without paying fare. This facility will be valid for travel to any location, including Delhi and Chandigarh. The Trump administration has paused all immigrant visa applications across the world. The move comes as the U.S. State Department aims to tighten restrictions and limit access to applicants who may become dependent on U.S. public benefits reserved for qualified Americans. Quoting State Department officials, the media report said the U.S. is training consular officers to evaluate such requests comprehensively and consistently. The pause comes as the U.S. has launched a crackdown against illegal immigration and also tightened rules governing the issuance of green cards. Meta has agreed to pay $18 billion and add stronger child safety measures to its Facebook and Instagram platforms. The move comes as part of a landmark legal settlement that ended a trial over teen social media addiction and settled claims filed by 47 states. If approved by the court, the deal will stop an avalanche of litigation by states against Meta, although the company still faces lawsuits from individuals and school districts across the US. The Meta said that ensuring teens have a safe and productive experience on our platforms is an absolute imperative for the company. It also urged rivals TikTok and YouTube to adopt similar safety measures. Grandmaster Trilok Subba from Sikkim has been selected to represent India at the World Taekwondo Pumsai Championship. More from our correspondent.
13: Internationally acclaimed Taekwondo player Grandmaster Trilok Subba has been selected to represent India at the World Taekwondo Pumsai Championship in Chuncheon, South Korea. The championship is scheduled to take place from 16th to 20th September. Subba will compete in the under 60 male individual Pumsai and team events in the senior category. Prior to his selection, Subba clinched gold medal for the national team at the National Taekwondo Pumsai Championship held in Maharashtra in July 2026. Mr. Subba will soon leave Sikkim to join national camp in Maharashtra, and then he will travel to South Korea for the championship. Moinak Chatterjee, Akashvani News, Gangtok.
10: Team India is in firm league control and close to securing a 2-0 test series victory against Sri Lanka on the final day of the second test at Colombo today. India declared their first innings at 503 for 9 and bowled out Sri Lanka for 290, then enforced the follow-on. At the end of day 4, Sri Lanka reached 229 for 6 in their second innings, holding a slender lead of just 16 runs with 4 wickets remaining. India leads the two-match series 1-0 following their 165-run victory in the first test at Goa. Indian bowlers highlighted by spinners Manav Sutar and Saransh Jain alongside pacer Prasidh Krishna have dominated the attack on a helpful Colombo pitch. And now for a look at today's newspapers, it's over to Saira Mushtaba.
14: Thank you, Pramod. All newspapers have headlined the devastating floods in Nepal after a wall of ice, mud and rock collapsed into a Himalayan river at the Nepal-China border near Tibet. The Statesman headlines, devastating flash floods in Nepal, death toll at least 95, over 100 Indians missing. Tribune headlines, 100 dead in Nepal deluge, 133 Indians missing. Times of India reports, 160 killed in deadly Nepal deluge, at least 133 Indians among 844 missing. Another major story covered on the front page of most dailies is the Trump administration pausing all visa appointments worldwide. Hindustan Times says, US pauses immigration visa interviews amid crackdown, while the Asian Age headlines, US pauses visa appointments worldwide. Another story covered in newspapers is Maharashtra Public Service Commission cancelling the recruitment process for Drug Inspector Group B post following an inquiry into alleged malpractices in the screening exam conducted earlier this year. And finally, a story in Times of India says that from Tokyo to London, heatwaves send men to work in shorts. Japan's capital led the way, followed by London, as extreme temperatures swept across Europe. And with that, it's back to you, Pramod.
10: Thank you, Saira. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Massive flash flood claims nearly 160 lives in Nepal, over 750 people, including 133 Indians missing. High alert issued in Bihar and Uttar Pradesh following Nepal flood. India sends first tranche of relief materials to Nepal. Prime Minister Narendra Modi to address Khelo India dialogue today through video conferencing. Centre begins targeted release of onions from buffer stocks to ensure adequate availability and check seasonal price rise. US halts all visa appointments globally amid President Donald Trump's immigration crackdown. Meta to pay up to $18 billion to settle claims that its platforms harm children. And in men's cricket, Team India on verge of Test Series win against Sri Lanka in Colombo. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
15: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज के साथ डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।
16: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि आचार्य शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 9 अगस्त। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण चौहान और दिल्ली से नरेंद्र देव पांडे। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
17: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
18: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
17: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
18: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
17: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

भारतीय स्वाधीनता संघर्ष की कहानी केवल बड़े बड़े आंदोलनों की कहानी नहीं है, ये उन अनगिनत कदमों की भी कहानी है जो गांव की पगडंडियों से उठे, जिन्होंने अत्याचार के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया, अंग्रेजी सत्ता की आंखों में आंखें डाल वो चलते रहे, आगे बढ़ते रहे और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, क्योंकि उनका एकमात्र स्वप्न था स्वाधीन भारत। एक ऐसे ही महान देशभक्त थे गुलाब सिंह लोधी। वो जानते थे कि अंग्रेजी सत्ता के सामने खड़ा होना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी जाना था कि डर कर जीने से बेहतर है देश के लिए निर्भय होकर मर जाना। उनका जीवन असाधारण साहस का प्रतीक है जो बताता है कि स्वाधीनता की मशाल यूं ही नहीं जली, ये मशाल एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंची। किसी ने लोगों को जगाया, किसी ने अपने कदमों से रास्ता बनाया और किसी ने अपने रक्त से उसकी लौ को जलाए रखा। वीर गुलाब सिंह लोधी का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के फतेहपुर चौरासी क्षेत्र के चंडिका खेड़ा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता ठाकुर राम रतन सिंह लोधी एक किसान थे। वो धर्मनिष्ठ तथा अत्यंत स्वाभिमानी थे तथा कड़ी मेहनत से अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। उन्होंने अपने पुत्र के भीतर निडरता, सत्यनिष्ठा और राष्ट्र प्रेम के संस्कार डाले। जिस उन्नाव की धरती में उनकी परवरिश हुई वो भूमि बैसवाड़ा की गौरवशाली इतिहास और 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के अमर नायक राजा राव रामबख्श सिंह की शौर्य गाथा से स्पंदित रहती थी। ऐसे वातावरण में पलने के कारण बालक गुलाब सिंह लोधी के मन में देश प्रेम के भाव प्रस्फुटित हो चुके थे।

औपनिवेशिक भारत के अभावग्रस्त ग्रामीण परिवेश में गुलाब सिंह लोधी का बचपन बीत रहा था। उस दौर के ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक सुविधाओं का घोर अभाव था। ब्रिटिश राज की नीतियां ग्रामीण शिक्षा के प्रति पूरी तरह उदासीन थीं। गुलाब सिंह लोधी ने अपने गांव के निकट स्थित प्राथमिक विद्यालय में अपनी आरंभिक शिक्षा ग्रहण की। हिंदी भाषा और स्थानीय बोलियों का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था उन्होंने, लेकिन वो औपचारिक उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। हालांकि औपचारिक डिग्री न होने के बावजूद उनके भीतर गजब की बौद्धिक तीक्ष्णता और सामाजिक राजनैतिक समझ थी। अंग्रेजों के अत्याचार और किसानों पर मंडराते आर्थिक संकट को वो बहुत गहराई से देख और समझ रहे थे। इसके साथ ही तत्कालीन समाचार पत्र पत्रिकाओं और लोक साहित्य के माध्यम से देश की राजनैतिक स्थिति और ब्रिटिश नीतियों के दुष्प्रभावों पर भी उनकी दृष्टि थी। समय आगे बढ़ा और गुलाब सिंह लोधी पिता के साथ खेत में काम करने लगे। खेती किसानी के दौरान उन्होंने बहुत करीब से देखा कि किस तरह ब्रिटिश हुकूमत के मातहत जमींदार और लगान वसूल करने वाले कारिंदे निर्धन किसानों का निर्दयतापूर्वक शोषण किया करते थे। इस प्रत्यक्ष अनुभव ने उनके भीतर ब्रिटिश राज के प्रति तीव्र असंतोष और विद्रोह की भावना को जन्म दिया। 1920 का दशक भारत के स्वाधीनता इतिहास में अत्यंत उथल पुथल भरा दौर था। एक तरफ महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन देशव्यापी लहर पैदा कर रहा था, तो दूसरी तरफ क्रांतिकारी धारा के युवा अपने रक्त से आज़ादी की इबारत लिख रहे थे। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट हुए ऐतिहासिक काकोरी कांड ने देश भर के साथ साथ पूरे अवध क्षेत्र के युवाओं में देशभक्ति की भावना जगा दी थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद और ठाकुर रोशन सिंह जैसे क्रांतिकारियों की चर्चा देश भर में थी। वीर गुलाब सिंह लोधी के मन मस्तिष्क पर भी इस घटना ने अमिट छाप छोड़ी। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव गांव गांव तक पहुंच रहा था। लोग विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर रहे थे। चरखा और खादी स्वावलंबन का प्रतीक बन चुका था। वीर गुलाब सिंह लोधी समझ चुके थे कि इसी मार्ग पर चलते हुए गरीबों और किसानों का उत्थान संभव है, अंग्रेजी राज से मुक्ति संभव है।

इसी बीच साल आया सन 1935। भारत का स्वाधीनता संघर्ष लगातार जारी था और ब्रिटिश हुकूमत ने जन आंदोलनों को दबाने के लिए कठोर नियम लागू कर रखे थे। उस समय तक गुलाम भारत के मन में अपने राष्ट्रध्वज की आकांक्षा आकार ले चुकी थी। ब्रिटिश राज के विरोध स्वरूप झंडा सत्याग्रह शुरू हो चुका था और अलग अलग अवसरों पर लोग राष्ट्रध्वज फहराकर ब्रिटिश प्रशासन का विरोध कर रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत ने सार्वजनिक स्थानों पर भारतीय झंडे को फहराने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी थी। झंडा फहराना राजद्रोह माना जाता था और ऐसा करने वालों को असहनीय

यातनाएं और सजा दी जाती थी। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में भी स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने लखनऊ के मध्य स्थित अमीनाबाद पार्क में झंडा फहराकर झंडा सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। 23 अगस्त 1935 का दिन तय हुआ। अंग्रेज सरकार को पहले ही सूचना मिल चुकी थी कि क्रांतिकारी अमीनाबाद पार्क में झंडा फहराने का प्रयास करेंगे, इसलिए सैकड़ों सशस्त्र पुलिस के सिपाही, पुलिस अधिकारी और घुड़सवार दस्तों ने पूरे पार्क को चारों ओर से घेर लिया। पार्क के सभी प्रवेश द्वार सील कर दिए गए। किसी भी नागरिक को पार्क के भीतर तो क्या, आसपास भी भटकने की इजाजत नहीं थी। पार्क के बाहर भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा था, लेकिन पुलिस के सख्त पहरे के कारण कोई भी भीतर नहीं जा पा रहा था। जब पार्क के बाहर जमा सत्याग्रही पुलिस के कड़े पहरे को देखकर असहाय महसूस कर रहे थे, तब वीर गुलाब सिंह लोधी ने हार नहीं मानी। वो पुलिस की नजरों से बचते हुए चुपचाप झाड़ियों और पेड़ों का सहारा लेते हुए आगे बढ़ने लगे। इस तरह पुलिस को चकमा देते हुए वो पार्क के भीतर दाखिल होने में सफल हो गए। पार्क के बीचों बीच एक विशाल और घना पेड़ था। वीर गुलाब सिंह लोधी बिजली की गति से उस पेड़ पर चढ़ गए। उन्होंने झंडे को बड़े जतन से छुपा रखा था। उनके पास बैलों को हांकने वाला एक डंडा भी था, जिसे पैना कहा जाता है। पुलिस बाहर भीड़ को रोकने में व्यस्त थी, जबकि गुलाब सिंह लोधी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर पहुंच चुके थे। पेड़ के शीर्ष पर पहुंचकर उन्होंने झंडा निकाला और पेड़ की शाखा पर झंडा फहरा दिया। हवा में लहराते झंडे को देखकर उन्होंने जोर से नारा लगाया, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, वंदे मातरम। पार्क के बाहर खड़े सत्याग्रहियों ने जब उनकी आवाज सुनी और हवा में लहराता झंडा देखा, तो गगनभेदी जयकारों से आसमान गूंज उठा। ब्रिटिश अधिकारी बौखला गए। उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया। अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई। वीर गुलाब सिंह लोधी की बांह, सीने और पेट में कई गोलियां लगीं। वो झंडे को संभाले हुए पेड़ पर खड़े थे और अंततः मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े। 23 अगस्त सन 1935 को मातृभूमि के लिए संघर्ष करते हुए भारत माता की गोद में ही वो बलिदान हो गए। आज वो पेड़ सत्याग्रह वृक्ष के नाम से जाना जाता है और अमीनाबाद पार्क का नाम झंडे वाला पार्क हो गया है, जो आज भी वीर गुलाब सिंह लोधी के बलिदान की गाथा सुनाता है। नमन ऐसे अमर बलिदानी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन ले, कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। अब समय है इस घंटे की खास खबरों का।

राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आज खेलो इंडिया संवाद खेल की बात पीएम के साथ कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश के 24 स्थानों पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11:45 पर खिलाड़ियों, युवाओं और खेल प्रतिभाओं से संवाद करेंगे। भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों के शैक्षणिक संस्थानों में होने वाले इन कार्यक्रमों में सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। हरदा, बड़वानी और छतरपुर में केंद्रीय मंत्री भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जबलपुर स्थित व्हीकल फैक्ट्री में T-72 टैंकों की ओवरऑल की करीब 600 करोड़ रुपए की परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। इसे सेना के बख्तरबंद बेड़े की परिचालन क्षमता मजबूत होने की उम्मीद है। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कल राज्यपाल बंगूभाई पटेल ने विधानसभा से पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद प्रदेश में प्रभावी किया जा सकेगा। प्रस्तावित कानून में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों के लिए समान कानूनी व्यवस्था का प्रावधान है। ओंकारेश्वर में एकात्मधाम स्थित पंचायतन मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज संतों और विशिष्ट अतिथियों के साथ 45 पवित्र शिलाओं का पूजन कर मंदिर निर्माण का शुभारंभ करेंगे। और प्रदेश में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज दतिया में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजगढ़, ग्वालियर, भिंड, रीवा, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी में भारी बारिश की चेतावनी है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज़ पर। साथ ही मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए सूचना और समाचारों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोता साथियों को अरुणा का प्यार भरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर के जरिए श्रोता मित्रों, कल से ही हम सभी का मन कुछ उदास सा है, कुछ भारी सा है। वजह आप सभी जानते ही होंगे, हमारे पड़ोसी देशों में जो भयानक त्रासदी हुई है उसकी ही हम आज बात कर रहे हैं आपसे। गुनगुनी चमकती धूप, खुशनुमा मौसम और बेफिक्र जिंदगी। तभी अचानक एक तेज सैलाब आया और अपने साथ सब कुछ बहाकर ले गया। बहुमंजिला इमारतें, बड़े बड़े पुल और इंसान खिलौनों की तरह देखते ही देखते बह गए। ये खौफनाक नजारा चीन नेपाल सीमा पर देखने को मिला। चीन के तिब्बत का सैलाब नेपाल में तबाही मचाते हुए आगे बढ़ा और गांव गांव शहर शहर बर्बादी का मंजर छोड़ता चला गया। इस हिमस्खलन के कारण इस सैलाब से कम एक दर्जन जल विद्युत परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा। इस त्रासदी ने 2013 में उत्तराखंड की केदारनाथ घाटी में आई जल प्रलय की याद दिला दी। श्रोता साथियों, प्राकृतिक आपदाएं कुछ दशकों से बढ़ी हैं, जिनका मुख्य कारण मनुष्य का प्रकृति से खिलवाड़ है। हमने जंगलों का विनाश किया, पहाड़ों को नष्ट किया, धरती को चीर कर खोखला कर दिया, प्रदूषण फैलाकर जमीन जल हवा को दूषित किया है। इन सभी कारणों की वजह से प्रकृति का संतुलन बिगड़ा है और जिसका परिणाम है प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हमें भुगतना पड़ रहा है। प्राकृतिक आपदा कोई एक नहीं बल्कि प्रकृति अलग अलग रूप में विनाश करती है। धरती पर प्राकृतिक आपदाओं का आना सामान्य है क्योंकि यह प्रकृति का एक हिस्सा है। कुछ मुख्य प्राकृतिक आपदाओं का हमें आए दिन सामना करना पड़ता है। जब अधिक वर्षा के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है तब बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। भारत में हर साल बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा का हमें सामना करना पड़ता है और आज भी हमारे कुछ राज्यों में बाढ़ हो रही है। बाढ़ का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और इसके प्रभाव से लोगों की जान भी बचाई जा सकती है, लेकिन फिर भी भारी मात्रा में बाढ़ के कारण लोगों को जान माल दोनों का नुकसान उठाना पड़ता है। प्राकृतिक आपदा कोई एक नहीं बल्कि प्रकृति का अलग अलग रूप में विनाश है। धरती पर प्राकृतिक आपदाओं का आना सामान्य है क्योंकि ये प्रकृति का एक हिस्सा है, लेकिन कुछ कारण हैं जिनसे हम प्रकृति के इस रौद्र रूप को कम कर सकते हैं। ये ज़रूरत है हमें समझने की, सचेत होने की, वरना वो दिन दूर नहीं जब हमें प्रकृति का यही रूप हमेशा देखने को मिलेगा। आइए हम अब सब उन जाने वालों को याद करें, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करें जो हमसे बिछड़ गए।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
4: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
7: आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर, और आज आपके साथ है आपके रेडियो मित्र अरुणा कार्यक्रम में आपके साथ। श्रोता मित्रों, कलावीथिका में कनु 8वीं कला प्रदर्शनी 8 सितंबर से शुरू होगी। जैसा कि हमारे श्रोताओं को ये पता ही है कि कुछ ही दिनों बाद गणेशोत्सव शुरू हो रहा है, और इसी अवसर पर 10 सितंबर तक चलने वाली इस कला प्रदर्शनी में स्कूल और महाविद्यालय के विद्यार्थी के अलावा कलाकारों की भागीदारी भी निःशुल्क रहेगी। प्रदर्शनी में चित्रकला और मूर्तिकला का प्रदर्शन किया जाएगा, साथ ही विशेष कार्यशाला होगी। इसमें शामिल होने वाले कलाकारों को लकड़ी के कैनवास पर गणेश थीम पर बनाई गई कलाकृति जमा करनी होगी। मूर्तिकला वर्ग में प्रतिमा किसी भी माध्यम में दी जा सकेगी। इस दौरान मिट्टी के गणेश बनाना सिखाया जाएगा। इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा निर्माण की निःशुल्क कार्यशाला भी होगी। इसके लिए 31 अगस्त तक पंजीकरण कराए जा सकते हैं। श्रोता मित्रों, आज विश्व झील दिवस भी है। झीलें धरती और जीवन के लिए अनमोल प्राकृतिक धरोहर है। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से झीलों का अस्तित्व संकट में है। विश्व झील दिवस हमें इन्हें बचाने की याद दिलाता है। आज ही के दिन पहली बार विश्व झील दिवस मनाया गया, ताकि झीलों के पारिस्थितिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। झीलें जीवनदायिनी जल संसाधन है, जो कि पेयजल, कृषि और उद्योग को समर्थन देती हैं। वे जलवायु को नियंत्रित करने, बाढ़ के पानी को सोखने और कार्बन को संचित करने में भी सहायता करती हैं। पर्यावरणीय भूमिका के अलावा झीलें पर्यटन, मत्स्य पालन और स्थानीय रोजगार जैसी आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देती है। ये दिन झीलों को प्रदूषण और क्षरण से बचाने के लिए वैश्विक प्रयासों का आह्वान करता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य इस तरह से लिया गया है कि झीलों की वैश्विक संख्या और झीलों का महत्व। झीलें मीठे पानी का सबसे बड़ा खजाना है। जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन में झीलों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आजीविका से पर्यटन तक झीलें और स्थानीय अर्थव्यवस्था का गहरा संबंध होता है। लेकिन आज के समय में झीलों पर 2050 तक खतरा मंडराने लगा है। कारण है प्रकृति का असंतुलन। आज झीलें गहरे संकट में हैं। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक दोहन ने उनकी सांसें घूंट दी हैं। खेतों से बहकर आने वाली खाद और रसायन, नदियों के रास्ते झीलों में पहुंचता कचरा और बढ़ता शहरी दबाव उनकी सेहत बिगाड़ रहा है। वहीं जलवायु परिवर्तन ने जलस्तर और बर्फ की परत पर असर डालना शुरू कर दिया है। बढ़ता तापमान झीलों के जलस्तर और बर्फ की परत पर असर डाल रहा है, जिससे वाष्पीकरण की दर तेज हो गई है। विश्व झील दिवस हमें यह अवसर देता है कि झीलों को बचाने के लिए अब और देर नहीं की जाए। ज़रूरत है कि हम झीलों को प्रदूषण से बचाएं, उनके किनारों पर प्राकृतिक और उनके संरक्षित करने के प्रयास करें, समुदायों को जागरूक करें और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से लड़ने के लिए ठोस कदम उठाएं। झीलें हमारी धरती की सुंदरता ही नहीं बल्कि हमारे बेहतर भविष्य की सूचक भी हैं। उन्हें बचाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
4: कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में श्रोता साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। श्रोता मित्रों, हम सभी राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मना रहे हैं, जो कि 25 अगस्त तक 8 सितंबर तक चलेगा। ये एक वार्षिक जागरूकता अभियान है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को नेत्रदान के बारे में शिक्षित करना और कॉर्निया दान और प्रत्यारोपण के प्रति सचेत करना है, जागरूकता बढ़ाना है। ये पखवाड़ा आम गलतफहमियों को दूर करने का भी एक अवसर है। कई लोग नेत्रदान का समर्थन करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि वे इसके लिए पात्र हैं या नहीं। मृत्यु के बाद उनके परिवार को क्या करना होगा या क्या नहीं, नेत्रदान से पारंपरिक अंतिम संस्कार में कोई बाधा आती है, इस बारे में वो संशय में रहते हैं। इन पहलुओं के बारे में पहले से जानकारी होने से व्यक्ति सोच समर्थ सच निर्णय ले सकते हैं और अपनी इच्छाओं को अपने प्रियजनों तक स्पष्ट रूप से पहुंचा सकते हैं। श्रोता साथियों, नेत्रदान से तात्पर्य मृत्यु के उपरांत नेत्र ऊतक दान करने से है, ताकि उपयुक्त ऊतक, विशेष रूप से कॉर्निया का उपयोग प्रत्यारोपण या अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सके। ये समझना महत्वपूर्ण है कि पूरी आँख को किसी दूसरे व्यक्ति को या कार्यशील आँख के रूप में प्रत्यारोपित नहीं किया जाता है। दृष्टि बहाल करने में सहायता के लिए कॉर्नियल ऊतक का उपयोग किया जा सकता है। बहुत से लोग मानते हैं कि नेत्रदान केवल युवा या पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्तियों तक ही सीमित है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। मृत्यु के बाद संबंधित चिकित्सा पेशेवरों द्वारा संभावित दाता की उपयुक्तता का आकलन किया जाता है। आयु और चिकित्सकीय इतिहास पर विचार किया जा सकता है, लेकिन इसका ये अर्थ है नहीं कि दान असंभव है। परिवारों को भी यह जानना चाहिए कि उपयुक्त नेत्रदान सेवा से शीघ्र संपर्क करना महत्वपूर्ण है। संपर्क संबंधी आवश्यक जानकारी उपलब्ध रखने से अनावश्यक देरी से बचा जा सकता है। और इस सब में सबसे ज़रूरी बात है, परिवारों को दिखावट उम्र और अंतिम संस्कार की व्यवस्था के बारे में प्रचलित मिथकों के बजाय सटीक जानकारी के साथ निर्णय लेना जरूर चाहिए।

जी हाँ श्रोता मित्रों, आप भी अपनी आंखों के जरिए अपने लोगों तक अपनी बात पहुंचाइए बिना बोले, और बस देखिए फिर कैसे वो भी आप तक अपनी बात पहुंचाते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आपका दिन खुशनुमा रहे, अब कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की अरुणा को दें अनुमति। नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे सूचना और समाचारों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे कलाकार पंडित दालचंद शर्मा का ताल चौताल में पखावज वादन। दीजिए सुनिए।

ಪಂಚ ಗಣಪತಿ ಪಂಚ ಪಾಂಡ ನಟ ನಾರಾಯಣ ನಟ

इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल जगह से ये और नभक्का है। धिनक का आवाज, ये मेरी परंपरा की खास कंपोजिशन है। ता धिनक धे धिनक, धिनक सॉफ्ट है, श्रृंगार प्रधान है, धे बोलने में ही मुश्किल होता है, तो वो वीर रस प्रधान है।

सुनाने से पहले कुदव सिंह महाराज के कंपोजिशन सुनाऊंगा, उसके बाद में नाना पानसे घराना और फिर नाथद्वारा घराना। तीनों का डिफरेंस देखिए, कुदव सिंह महाराज का जो घराना है वो ज़बरदस्त है, बोलों में जो है बहुत कठिन बोल होते हैं, दमदार बोल होते हैं। नाना पानसे घराना की शायरी बड़ी अच्छी होती है, मोल मुलायम होते हैं, और नाथद्वारा में दोनों का ही मिलन है। तीन बंदे सुनाऊंगा, देखिए कितनी सुंदर है। धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा धा

धाके द्वारा पूजा की भाव। हमारे पास तो कुछ है नहीं, मैं तानसेन जी को धाके द्वारा पूजा का भाव से समर्पण कर रहा हूँ। एक से तीन।

ताकट तक धड़गन धा धा धा ताकट तक धड़गन धा धा धा ताकट तक धड़गन धा धा धा धा ताकट तक धड़गन धा धा धा धा ताकट तक धड़गन धा धा धा धा ताकट तक धड़गन धा धा धा धा ताकट तक धड़गन धा धा धा धा

गायक के पास में तो स्वर होते हैं, स्वर के द्वारा आरोही अवरोही कर देता है। मेरे पास तो धा है, तो धा के द्वारा आरोही अवरोही।

ताकट तक धदग न था ताकट तक धदग न धा धा ताकट तक धदग न धा धा धा ताकट तक धदग न एक दो तीन चार ताकट तक धदगन एक दो तीन चार पाँच ताकट तक धदगन एक दो तीन चार पाँच छः ताकट तक धदगन एक दो तीन चार पाँच छः ताकट तक धदगन एक दो तीन चार पाँच ताकट तक धदगन एक दो तीन चार ताकट तक धदगन एक दो तीन ताकट तक धदगन एक दो ताकट तक नाट्य है संगीत में लेकिन कितनी मात्रा में है वो ध्यान देना चाहिए।

द्वारा परंपरा का एक खास कंपोजिशन है छंदात्मक। छंद का हिसाब भी हम नाद्वारियों ने दिया है। घनाक्षर छंद है ता लय ताल तोड़ने का कांटा। लय टूटेगी अपने आप जुड़ेगी। शब्द हैं कतिठता धिटता। बस इसी

बातचीत है, चार महिलाएं बातचीत कर रही हैं, नोक झोंक, ता दी थुन ना, चार करेक्टर हैं, ता सामान्य है, दी थोड़ा सा चढ़ा होता है, ता दी चढ़ा है, थुन ना, चारों बात कर रही हैं, फिर झगड़ा होता कैसे भागती है।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कलाकार पंडित डालचंद शर्मा का ताल चौताल में पखावच वादन। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 10 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे भोपाल से अनुप्रसारित जिले की चिट्ठी।
1: हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है डिंडौरी जिले की चिट्ठी। आलेख लक्ष्मी नारायण अवधिया, वाचन स्वर दीपा सिंह।

डिंडौरी जिले में इस समय रक्षाबंधन पर्व को लेकर बाजारों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कल रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। पर्व के पहले जिले के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। जगह जगह राखी और रुमाल की दुकानें सजी हुई हैं, जहां बड़ी संख्या में बहनें राखियों की खरीदारी कर रही हैं। इसके साथ ही कपड़े और मिठाई की दुकानों पर भी लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। रक्षाबंधन के अगले दिन कजरिया पर्व भी मनाया जाएगा। घरों में कजरिया बोकर उनकी सेवा की जा रही है। वहीं ईद मिलादुन्नबी को लेकर भी जिला मुख्यालय में उत्साह का माहौल रहा। नगर की सड़कों को सजाया गया। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने मुख्य मार्ग पर जुलूस निकाला। इसी तरह जिले में अलग अलग पर्वों को लेकर लोगों में उत्साह और उमंग का माहौल बना हुआ है। जिले में इस साल बारिश अपेक्षाकृत कम हुई है। जून से शुरू होने वाली बारिश देर से शुरू हुई और जुलाई तक पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण फसलों की बुआई प्रभावित हुई। धान और मक्का की फसल की बुआई काफी देर से हुई। किसानों का मानना है कि इस बार फसल कम हो सकती है, क्योंकि समय पर बारिश नहीं होने के कारण बुआई में देरी हुई है और देर से बुआई होने पर उपज कम होने की आशंका रहती है। हालांकि अगस्त माह में करीब 15 दिन लगातार हुई बारिश से किसानों को कुछ राहत मिली है। अगस्त में हुई बारिश के कारण जिले की नदियां भी उफान पर रहीं और नर्मदा सहित अन्य नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। जिले के विकास से जुड़े कार्यों की समीक्षा के लिए सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और मूल्यांकन समिति यानी दिशा की बैठक डिंडौरी में आयोजित की गई। बैठक में राघोपुर क्षेत्र की योजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन पर विशेष रूप से चर्चा की गई। नर्मदा नदी को निर्मल और अविरल बनाए रखने के लिए भी जिले में जन भागीदारी से कार्य करने पर जोर दिया जा रहा है। कलेक्टर अंजू पोन भदौरिया ने नर्मदा तटों पर स्वच्छता श्रमदान करने का आह्वान किया है। इसके साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण, छोटी जल संरचनाओं के पुनर्जीवन, बोरी बंधान और सोकपेट निर्माण जैसे कार्य करने के निर्देश दिए हैं। जिले के सभी 7 विकासखंडों में पोषण आहार की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए साझा चूल्हा समूहों के माध्यम से टेक होम राशन तैयार और वितरित किया जा रहा है। जिले में कुल 905 साझा चूल्हा समूहों के माध्यम से टेक होम राशन तैयार किया जा रहा है। इनमें से 661 समूहों ने इसका वितरण भी शुरू कर दिया है। इस व्यवस्था से लगभग 35,000 हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें 6 माह से 3 साल तक के बच्चे और गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। स्थानीय स्तर पर तैयार किए जा रहे इस पोषण युक्त टेक होम राशन में निर्धारित रेसिपी के अनुसार गेहूं और चावल के साथ दलिया, चना दाल, तिल और सोया बड़ी जैसी पोषण युक्त सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। डिंडौरी जिले में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का भी प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के तहत कृषि, मिलेट उत्पादन, प्राकृतिक और जैविक खेती, कृषि मशीनीकरण, पशुपालन, सिंचाई और जल संरक्षण सहित विभिन्न क्षेत्रों में विभागीय योजनाओं का समन्वित रूप से संचालन किया जा रहा है। इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप डिंडौरी जिले ने देश के 100 चयनित जिलों में जुलाई माह के मध्य प्रथम रैंक हासिल की है। ये उपलब्धि जिले में 11 विभागों द्वारा संचालित 36 योजनाओं के बेहतर समन्वय और प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है। इसी क्रम में डिंडौरी जिले में जनविश्वास अभियान के तहत भी ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाए जा रहे हैं। प्रत्येक गुरुवार को अलग अलग गाँव में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में ग्रामीण जनों की समस्याओं को सुना जा रहा है और उनके त्वरित निराकरण का प्रयास भी किया जा रहा है। विभिन्न विभागों द्वारा भी अपने अपने शिविर लगाकर ग्रामीणों को शासन की योजनाओं सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं के समाधान के लिए सुविधा मिल रही है। कुल मिलाकर डिंडौरी जिले में इस समय एक ओर जहां रक्षाबंधन, कचलिया और ईद मिलादुन्नबी जैसे पर्वों को लेकर उत्साह है, वहीं दूसरी ओर बारिश, खेती, जल संरक्षण, पोषण, ग्रामीण विकास से जुड़े कार्य भी लगातार जारी है। कम बारिश के बीच किसानों को अगस्त की वर्षा से कुछ राहत मिली है, जबकि प्रशासन ने नदी नालों के जलस्तर को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे डिंडौरी जिले की चिट्ठी। आलेख था लक्ष्मी नारायण अवधिया का, वाचन स्वर था दीपा सिंह का। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। इस समय सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए श्रोता साथियों के व्हाट्सएप संदेशों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को हमारा नमस्कार। श्रोता साथियों, आज हम सभी ग्वालियर में

सावन का भरपूर मजा ले रहे हैं। इस दिन के लिए हम बहुत तरसे हैं। इस तरह सावन की झड़ी लगी है मानो जैसे सामने कांच की बूंदें बरस रही हैं। सावन के इस आनंद को दोगुना करने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए फिल्म संगीत के कुछ चुनिंदा गीत। कार्यक्रम में सबसे पहले आप सभी श्रोता साथियों की पसंद पर फिल्म परख का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। पसंद किया है आप सभी श्रोता साथियों ने। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, मेघा राशि और अनुराग मोहन। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमित यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह और अविरल सिंह। इसी गीत को सुनवाने के लिए अनुरोध किया है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। आप सब सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म परख में।

अभी आपने सुना कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में फिल्म लता, फिल्म परह का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, बोल शैलेंद्र के थे।

तैयार की थी सलिल चौधरी ने। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, आप सभी श्रोता साथियों की पसंद पर फिल्म अभिनेत्री से। स्वर एक बार फिर से है लता मंगेशकर का, गीत रचना है मजरू सुल्तानपुरी की, संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत। इसी गीत को सुनवाने के लिए अनुरोध किया है क्राम तांगोरी मोहाली पंजाब से गुरप्रीत सिंह तांगोरी, जसवीर सिंह कौर, महकप्रीत कौर और सहजप्रीत कौर ने। गांव केरो जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता शम्मी, रजनी आकाशदीप, अनहद और पोत्रा गुरशबत। फिल्म अभिनेत्री के इसी गीत को सुनवाने के लिए हमें व्हाट्सएप किया है कस्बा बराड़ा अंबाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशरपत सिंह राहुल और हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण और जोहानुल हुदा। आप सब सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म अभिनेत्री में।

आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम अभी सुबह के 10:58 तक आप सुन सकते हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म आया सावन झुमके का ये शीर्षक गीत, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। गीत रचना है आनंद बख्शी की, संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर विर्क, जयतेग विर्क और मीका विर्क। खंडाला महाराष्ट्र से आकाश सरोदे, प्रिया सरोदे। बीड शहर महाराष्ट्र से विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, अदिति बंसोड़े और वैभव शिंदे। इसी गीत को सुनवाने के लिए अनुरोध किया है सिपाही शाही गांव जमशेदपुर झारखंड से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश और देवेन ने। और खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर त्रिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन, मास्टर समर, राज आर्यन, बेबी आरोही, एशिका, अंजलि, श्वेता। आप सब सुनना चाहते हैं फिल्म आया सावन झुमके का शीर्षक गीत, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंच।

0: जी मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: सो योर प्लेस और माइन।
3: उसके पहले ये बताओ, तुम्हारे पास कॉन्डोम है?
2: कॉन्डोम? लेकिन हम तो
3: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
2: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
4: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
0: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
0: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।

अभी आपने सुना किशोर कुमार को फिल्म मंजिल में। गीतकार थे योगेश, संगीतबद्ध किया था राहुल देव बर्मन ने। पसंद किया था आप सभी श्रोता साथियों ने।

कोयते बसी पूनावली से अजय सोनवणे, करिश्मा सोनवणे, अविका और साईशा सोनवणे। श्री गणेश अविका आर्ट श्रीरामपुर से डी अशोक कुम्भार, अविका जीविका, सानू कुम्भार और अंचना कुम्भार। ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। इसी गीत को सुनना चाहा था यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से ने। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म नमकीन से आशा भोसले की आवाज़ में। बोल गुलजार के हैं, धुन तैयार की है राहुल देव परमन ने, पसंद किया है आप सभी श्रोता साथियों ने। कुम्भार कली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकीत और जीविका दले। कलनौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा और नितिन और मयंक शर्मा। सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेशन चौहान, जयनारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक और मंजरू का टीला। दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। और इसी गीत को सुनवाने के लिए हमें अनुरोध किया है बठेना पाटन जलादुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी चित्ररेखा वर्मा, ज्योति प्रहलाद वर्मा, उमेश और धनेश्वरी वर्मा ने। आप सब सुनिए फिल्म नमकीन का ये गीत आशा भोसले की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में संतोष आनंद का लिखा हुआ और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में फिल्म प्यासा सावन का ये गीत। इस गीत को सुनवाने के लिए अनुरोध किया था आप सभी श्रोता साथियों ने। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। ततरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखीलाल वर्मा। फुलचिंचोली तालुका पंढरपुर महाराष्ट्र से जाकिर मुलाणी, सुमैया मुलाणी, सुबान मुलाणी, समीर मुलाणी, सलमा मुलाणी, मुमताज, दिलशाद, नसीर मुलाणी और इनके चाचा चाची, साथ में पूरा मुलाणी परिवार। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोता साथियों की पसंद पर, फिल्म थोड़ी सी बेवफाई से स्वर है लता आशा भोसले का, गीत गुलजार का है, धुन तैयार की है खयाम ने, पसंद किया है आप सभी श्रोता साथियों ने। अजीत नगर मलोट पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर और उनकी लाड़ी पोती रौनकदीप कौर। अम्बाला से संदीप हगोड़िया और राकेश हगोड़िया, बक्सर से राज एस डी वली अंसारी, राजकोट गुजरात से अजीता कुटरिया और इंदिरा विहार दिल्ली से डॉक्टर बेबी अंसारी और डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी। गांव कलाना भादरा राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन सतीश योगेश और युद्धव कड़वासरा। इसी गीत को सुनना चाहा है भूजो केजिया

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का ये अंतिम गीत आप सभी श्रोता साथियों की पसंद पर। सालार पहलगाम से पीरजादा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, केसरुद्दीन और इसी गीत को सुनवाने के लिए हमें अनुरोध किया है। पदमपुर जिला गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा ने। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। टोरेवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी और डॉक्टर प्रियम थांदी, साथ में बेबी वामिका वाणी थांदी। छत्रपति संभाजीनगर से मंगेश इंगले, संध्या इंगले, स्वराज विराज और ऑरेंज सिटी नागपुर से विठल जाधव, अनुसुईया जाधव, पवन राजे जाधव। लीजिए आप सब सुनिए फिल्म लम्हे का ये गीत लता मंगेशकर, इला अरुण और साथियों की आवाज़ों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, धुन तैयार की है शिव हरी ने।

लता मंगेशकर, इला अरुण और साथियों के गाए फिल्म लम्हे के इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का अनुप्रसारण।

0: राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आज खेलो इंडिया संवाद खेल की बात पीएम के साथ कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश के 24 स्थानों पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11:45 पर खिलाड़ियों, युवाओं और खेल प्रतिभाओं से संवाद करेंगे। भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों के शैक्षणिक संस्थानों में होने वाले इन कार्यक्रमों में सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। हरदा बड़वानी और छतरपुर में केंद्रीय मंत्री भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और अहमदाबाद में होने वाले आगामी ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेल तैयारियों की समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज जबलपुर में T-72 टैंकों के ओवरऑल की करीब 600 करोड़ रुपए की परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज ओंकारेश्वर स्थित एकात्म धाम में भव्य पंचायतन मंदिर का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ 2028 से पहले एकात्म यात्रा का आयोजन किया जाएगा। सरकार ने बाजार में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है और प्रदेश में मॉनसून फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दतिया, शिवपुरी, सागर, रीवा, छतरपुर, पन्ना, शहडोल जिलों में 2.5 से 4 इंच तक बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: कलाई पर बंधा वो धागा महज रेशम का तार नहीं, वो बहन की हर सांस से निकली दुआओं का संसार है। भाई का वो चुपचाप मुस्कुरा देना और कहना तू फिक्र मत कर, उस एक लफ्ज में पूरी दुनिया का प्यार है। दूरियां चाहे कितनी भी हों पर ये बंधन कभी कमज़ोर नहीं होता। जहां भाई बहन का एहसास बस जाए वहाँ कोई अकेला नहीं होता। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं पंक्तियों के साथ सभी श्रोताओं को सरिता का प्यार भरा नमस्कार। आज हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और कार्यक्रम है आज हमारा फ़ोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। तो सभी श्रोता तैयार होंगे फ़ोन करने के लिए, हमसे बात करने के लिए। और आज हमने विषय लिया है पवित्र भाई बहन का त्यौहार रक्षाबंधन। हम इसी पावन त्यौहार पर आज बात करेंगे। राखी, रेशम और रक्षाबंधन, इसी से जुड़ी कई बातें हम करेंगे आपसे, आपके भाई बहन के प्यार को लेकर, रिश्ते को लेकर। अगर आपकी बहन दूर है तो वो आपको राखी कैसे भेजती है और आपको कैसे क्या महसूस होता है जब वो राखी भेजती है, फिर आप अपना प्यार उसे कैसे दिखाते हैं। आइए श्रोताओं, हम सब मिलकर आज इस पावन त्यौहार को मनाएं।
2: हेलो
1: हेलो,
2: हाँ नमस्कार दीदी।
1: नमस्कार
2: जी, मैं ग्रामबा पोस्ट गोना कुसमाड़ थाना सोजना तहसील महरौनी जिला ललितपुर झांसी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आपका अपना रेडियो मित्र दीपक कुमार नामदेव बात कर रहे हैं।
1: अच्छा दीपक जी, तो विषय हमने आपको बता दिया है, तो आज रक्षाबंधन के त्यौहार के लिए भाई बहन के इस पवित्र रक्षाबंधन पर आप क्या बोलना चाहेंगे?
2: जी दीदी, भाई बहन का एक अटूट संबंध होता है, यह प्रेम निष्ठा के लिए मनाया जाता है। भाई बहन एक सिक्के के दो पहलू माने गए हैं
1: जी,
2: इसलिए भाईचारे में भाई और बहन इसलिए होते हैं कि बहन रक्षा सूत्र भाई के लिए इसलिए बांधती है कि अगर कहीं उसको समस्या या कुछ घटना पड़ जाए तो हमेशा साथ दे, इसलिए भाई बहन के लिए रक्षा सूत्र मांगती है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की अंगूठी कटने पर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का चीर काटकर उनके उंगली में बांध दिया था
1: जी,
2: तो फिर उनके ऊपर जब चीरहरण हुआ था तो श्री कृष्ण भगवान ने सहायता की थी और उनका अपना भाई का रिश्ता निभाया था, इसलिए भाई बहन का प्रेम बहुत ही सुंदर माना गया।
1: बहुत बढ़िया, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक जो उदाहरण है रक्षाबंधन के त्योहार पर, और भगवान कृष्ण ने बहुत बड़ी विपत्ति के समय उनकी रक्षा की थी
2: जी, जी।
1: है ना, तो ऐसे ही सभी भाई बहन का प्यार बना रहे और हम त्योहार मनाते रहे। तो दीपक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने फोन लगाया आज करके।
2: अपने दोस्तों के नाम लेना चाहते हैं दीदी,
1: आप दोस्तों से कहिए कि वो हमें फोन लगाया, हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, धन्यवाद आज हमें कॉल करने के लिए।
2: जी,

0: हेलो,
1: जानकी गुप्ता बोल रहा हूँ, अंत नगर जिला टीकमगढ़।
0: अच्छा, जिला टीकमगढ़ से बोलिए जानकी गुप्ता। जानकी गुप्ता जी, आपका फोन इन प्रोग्राम बात आपकी गीत हमारे में हार्दिक स्वागत है। और आज हमने विषय लिया है भाई बहन का पावन पर्व रक्षाबंधन। इस विषय पे हम बात करेंगे, तो क्या कहना चाहेंगी आप हमसे?
1: ये कहना चाहते हैं भाई बहन का सबसे अच्छा वो है जैसे
0: जी
1: त्योहार।
0: हाँ,
1: और भाई भाई आते भी हैं और बहन जाती भी है राखी बांधने के लिए घर।
0: अच्छा,
1: और सबसे अच्छा है शादी,
0: तो आपके
1: प्रेम रहता
0: भाई
1: है
0: जो
1: इसमें।
0: हैं वो दूर रहते हैं कि पास में ही रहते हैं? आपके भाई आपके घर से दूर रहते हैं कि पास में रहते
1: हमारे
0: हैं?
1: भाई हमारे से कम से कम दूर रहते हैं, वो आ
0: बहुत
1: जाती है रक्षाबंधन को दूज पर।
0: अच्छा। तो
1: तभी हम
0: कभी
1: चले जाते हैं।
0: कभी ऐसा भी हुआ कि आप जा नहीं पाई हैं और आपने राखी भेजी उनको पोस्ट के द्वारा?
1: नहीं वो पास ही में है ना।
0: अच्छा, पास में हैं।
1: हाँ
0: ठीक है, तो अच्छा लगा जानकी जी आपने हमें फ़ोन
1: अब
0: किया।
1: कल मेरी बेटी का बर्थडे है, कोई
0: अच्छा, आपकी बेटी
1: ऐसा
0: को
1: गाना सुनवा दे।
0: जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बहुत बहुत
1: थैंक यू,
0: धन्यवाद आपको हमें कॉल करने के लिए।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो, बात आपकी गीत तुम्हारे
0: जी, बिल्कुल स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: जी। मैं ग्राम तरसवा जिला मुरैना से हरबिलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
0: जी तो बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज हमने विषय लिया है भाई बहन का पर्व, पावन पर्व रक्षाबंधन। इस विषय पे
1: जी
0: बात करेंगे, तो मतलब क्या महसूस करते हैं आप इस पर्व को लेके और कैसे मनाते हैं रक्षाबंधन, जी बताइए कुछ।
1: यहाँ भाई बहन का पावन पर्व रक्षाबंधन है, परसों है शायद
0: जी
1: मेरे हिसाब से,
0: जी
1: और सभी बहनें यहाँ घर पे आ गई हैं। लोग लेने गए थे और वो भाई को तिलक करती हैं, राखी बांधती हैं,
0: अच्छा
1: भाई उन्हें रक्षा का वचन देते हैं और जितना भी हो सकता उनकी सेवा करते हैं, हमेशा जीवन भर साथ
0: बिल्कुल
1: निभाने का वादा करते हैं।
0: रक्षा करते हैं, हर समय पर उनका साथ देते हैं। बिल्कुल
1: जी, और इसी तरह हम आपस में मिलजुल के त्योहार मनाते, गांव वालों के पास जाते, भैरियां होती उन्हें देते, उनको
0: हाँ
1: गले
0: हाँ
1: मिलते हैं, उनसे बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, छोटों से गले मिलते हैं, इस तरह मनाते हैं रक्षाबंधन।
0: जी। तो बहुत अच्छा लगा आपका फोन आया और धन्यवाद आपको आज कार्यक्रम में कॉल करने के लिए।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो, फोन इन प्रोग्राम बात आपकी गीत हमारे में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमने विषय लिया है भाई बहन का त्यौहार रक्षाबंधन।
0: सोनू संतवाना हूँ मैडम, ग्राम पटेरिया जिला दमोह से बात कर रहा हूँ
1: सोनू जी।
0: जी।
1: अच्छा सोनू जी, आज हमने विषय लिया है रक्षाबंधन का त्यौहार, भाई बहन का अटूट बंधन रक्षाबंधन। इस त्यौहार पे आप क्या कहना चाहेंगे?
0: मैडम रक्षाबंधन का त्योहार है, भाई बहनों का त्योहार है,
1: हाँ
0: अच्छे से मना प्रेम से
1: हाँ
0: भाई अपने बहनों को जो गिफ्ट देना चाहे वो अपना इच्छा से दे सकते हैं। मतलब
1: अच्छा सुनो जी, कोई ऐसी याद, कोई ऐसी बात जो आपके भाई बहन के रिश्ते से जुड़ी हुई हो तो मतलब हमसे साझा करेंगी क्या?
0: जी मैडम, त्योहार के संबंध में क्या आपसे
1: हाँ,
0: क्या साझा करें।
1: भाई बहन के रिश्तों को लेकर कभी ऐसी कोई बात हुई कि आपकी बहन आपसे गुस्सा हो गई हो, फिर आपने मनाया हो उनको?
0: हाँ मैडम, ऐसा तो होता है, कभी बहुत बार साल में तो एक दो बार हो ही जाता है, मनाना पड़ता है बहनों को, कभी न कभी हो ही जाता है किसी बात की वजह
1: असल
0: से।
1: में क्या है ना, मैं भी किसी की बहन हूँ, बहनों को ना अपने भाई पर हक होता है, अधिकार होता है। मतलब
0: जी
1: पिता के बाद अगर कोई वो है तो वो भाई है, और मैं तो कहूँगी कि
0: जी
1: पिता का स्वरूप है भाई। तो मैं, ये
0: हाँ
1: बात सच है कि बड़ी जल्दी बुरा लगता है कि अरे आज भैया ने ये नहीं कहा मुझसे, ये नहीं कहा, फोन पे बात नहीं करी।
0: ये तो मैडम होता है, तो क्या भाई बहन का प्यार रहता है तो कभी नोक झोंक तो होती रहती, साल में भाई शादी भी हो गई तो भी होती रहती,
1: जी जी जी जी
0: कभी कभी तो बार हो ही जाती है वो तो,
1: हो ही
0: लेकिन
1: जाती है।
0: भाई बहन का प्यार प्यार होता है।
1: हाँ, तो सोनू जी, फिर हम आज कॉल करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और
0: जी
1: अब हम सुनवाते हैं आपको एक गीत।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो, कौन बोल रहे हैं
1: जी
0: जी?
1: मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैम, मैं मुस्तफा हुसैन बोहरा बोल रहा हूँ, देवास।
0: अच्छा जी, तो आपका आज का विषय हम बता दें आपको। आज विषय है राखी का त्यौहार, जो है भाई बहन का अटूट बंधन, रक्षाबंधन का त्यौहार। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब कोई बहुत अच्छी सी
1: देखिए मैम,
0: याद, कोई अच्छी सी
1: रक्षाबंधन तो
0: बातें।
1: ऐसा त्यौहार, ये भाई बहन के स्नेह का प्रतीक है।
0: हाँ
1: मैंने अपने भाई की राखी, भाई को राखी बांधते उसकी रक्षा का वचन देती है। भाई भी अपनी बहन को अपने उसकी रक्षा का वचन देता है कि हर तरह उसकी रक्षा करेगा, और
0: जी
1: साथ ही साथ बहन अपनी अपना भाई अपनी बहन को उपहार
0: हाँ
1: भी देता है। अच्छा,
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं आप?
1: मैं विवेक व्यास बोल रहा हूँ, मैडम डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी डोंगरगांव मऊ जिला इंदौर से। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि
0: जी
1: मेरी बात मैडम 17 अगस्त को हुई थी, तो
0: हाँ
1: आज
0: जी
1: आप मुझसे बात करवाएंगी
0: जी जी तो बिल्कुल आपका
1: तो
0: जो फोन है हम उसे प्रसारित करेंगे रेडियो पर। तो
1: जी
0: विवेक जी, आपको हम विषय बता दें, आज हमारा कार्यक्रम है बात आपके गीत हमारे, और हमने विषय लिया है रक्षाबंधन, भाई भाई बहन का अटूट बंधन, रक्षाबंधन। तो इस
1: जी
0: विषय
1: जी
0: पर आज आप हमसे क्या बातें करेंगे?
1: देखिए, ये तो आपने इतना अच्छा विषय रखा है कि
0: जी
1: इसमें जितना बोला जाए उतना कम है, और कुछ चीजें ऐसी होती है। आप
0: जी
1: अपना नाम बताना चाहेंगी
0: मैं
1: थोड़ा?
0: सरिता सिंह बोल रही हूँ।
1: जी सविता जी, नमस्कार।
0: हाँ
1: मेरा
0: नमस्ते।
1: कहना ये है कि देखिए, ये एक ऐसा त्योहार है जिसकी बड़ा ही भावुक और मतलब ऐसा रिश्ते है जो शब्दों में अपन बयान नहीं कर सकते, है
0: बिल्कुल सच कहा
1: ना
0: विवेक जी, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। मैं आपको सच्ची
1: जी?
0: बताऊं तो इतना
1: जी
0: भावुक कर देने वाला त्योहार है कि मैं तो बात कर रही हूं तो मेरी आंखें भर आ रही हैं।
1: नहीं, वही वही कंडीशन मेरी है।
0: जी
1: और मैं
0: जी
1: आपको बताऊं, सबसे ज्यादा मतलब खुशी भी होती है जब रेडियो पर इस तरह के गाने बजते हैं,
0: हाँ जी,
1: तो मतलब आंखें बिल्कुल नम हो
0: नम
1: जाती
0: हो
1: हैं।
0: जाती है, बिल्कुल सच बात है। अच्छा
1: तो
0: विवेक
1: मैं
0: जी,
1: आपको
0: कभी जब
1: एक बात मैं
0: जी
1: आपको और बताना चाहूंगा कि अभी कुछ सालों पहले आज ही के दिन मेरी जो सबसे बड़ी सिस्टर थी वो एक्सपायर हो गई थी, तो उसकी
0: अच्छा
1: भी मुझे
0: अच्छा
1: काफी याद आती है।
0: जी जी जी अरे ये तो
1: और
0: दुखद
1: जी,
0: है।
1: तो ये है कि आपने ऐसा विषय रखा कि मैं क्या कहूँ और कितना कहूँगा आज
0: हाँ हाँ
1: की
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: है ना। तो और मेरा यही है कि ये जो अपने तीज त्यौहार है, देखिए आज की जो सविता जी लाइफ हो गई इतनी व्यस्त हो गई है सभी
0: हाँ
1: की,
0: जी
1: है ना,
0: जी
1: कि किसी को आदमी को सही मतलब फुर्सत नहीं है।
0: हाँ
1: लेकिन
0: फुर्सत ही
1: ये
0: नहीं है।
1: त्योहार जो हमारे हैं
0: जी
1: ये इसीलिए है कि हम मतलब कम से कम एक दिन ऐसा है जैसे रक्षाबंधन है, तो भाई
0: जी
1: बहन एक दूसरे को समय दें और कुछ समय साथ गुजारें, और
0: हाँ
1: बचपन की बड़ी यादें आती है आज
0: हाँ
1: के
0: हाँ
1: दिन,
0: बिल्कुल
1: है
0: बिल्कुल
1: ना।
0: बिल्कुल।
1: हाँ
0: हमारा जो बचपन है वो हमारे सामने आ जाता है जब हम अपने भाई बहनों से मिलते हैं। अगर कुछ समय के बाद मिले तो हमें और ज़्यादा मतलब इतना अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि हम
1: जी
0: बचपन वापस लौट आया हमारा। तो ये बात सही है कि बहुत ही भावुक कर देने वाला त्यौहार है। अगर जो बहनें थोड़ा सा दूर है, किसी कारणवश अपने भाई के पास नहीं पहुंच पाई त्यौहार पे, तो आप सोचिए उनकी क्या मनोस्थिति होती होगी। आप जो कह रहे हैं कि
1: हाँ
0: गीत
1: ये है
0: सुनकर
1: कि
0: रेडियो पे
1: जी
0: जब गीत बजते हैं तो वाकई में रोना आ जाता है उस टाइम कि मतलब मैं आज अपने
1: जी
0: भाई के पास नहीं हूँ।
1: जी और अभी मेरी बहन की राखी आ जाती है,
0: जी
1: अभी आ
0: जी
1: गई है मुझे कल, तो ये ऐसा लगता है कि देखिए, और ये पुराना दौर याद आता है कि आज भी लिफाफे में जो राखी आती है तो
0: जी
1: ऐसा
0: जी
1: लगता है उसमें जो कुछ लाइन लिखी रहती है, उनको ऐसी
0: जी
1: इच्छा होती है कि बार बार पढ़े। और मैं मेरी एक आदत है कि जितनी
0: हाँ
1: भी आती है मैं संभाल कर रखता हूँ, और
0: हाँ
1: जब भी
0: हाँ जी
1: मुझे
0: जी
1: ऐसा लगता है तो मैं उनको बार बार पढ़ता हूँ।
0: हाँ। अच्छा विवेक जी, बहुत सारी बातें कर लिया आपने।
1: जी
0: जहाँ तक कि
1: जी
0: मैं कहूँगा कि आपकी बहन जो आपने किस्सा मुझे बताया, तो मतलब आप यकीन मानिए कि भगवान का जो उनका जो आशीर्वाद है वो आपको पूरा
1: जी
0: मिल रहा
1: जी
0: होगा
1: जी
0: अभी भी। और आप
1: जी
0: भी उनके लिए प्रार्थना करिए कि वो जहाँ भी हों अच्छे से
1: जी
0: हों। तो बस
1: जी
0: हमें फ़ोन लगाने के लिए कार्यक्रम में आपका
1: और
0: बहुत
1: आप
0: बहुत
1: सबको
0: धन्यवाद।
1: भी समस्त आकाशवाणी परिवार और सभी सुनने वालों को भी मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक
0: जी
1: शुभकामनाएं,
0: जी
1: और पर्सनली आपको भी।
0: जी जी धन्यवाद धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: फोन इन प्रोग्राम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है। आज हमने विषय लिया है रक्षाबंधन, भाई बहन का अटूट बंधन। तो इस विषय पर आप हमसे क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बता दीजिए।
1: हरदयाल यादव, ग्राम बाहरा, तहसील खंजाना, जिला सेठी, मध्य प्रदेश।
0: अच्छा जी, हरदयाल जी, तो आज इस विषय पर आप हमसे क्या कहना चाहेंगे, भाई बहन के प्यार, भाई बहन के इस त्योहार को लेकर?
1: ये कहना चाहता हूँ, बहन भाई के रिश्ते में तो ऐसा कि प्रेम से राखी बांधो और
0: जी
1: श्रद्धा पूर्व से राखी बनवाना चाहिए और बहन को लेने जाना चाहिए, माने अपने घर पे बुलाना
0: बिल्कुल
1: चाहिए
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहन को लेने जाना
1: और
0: चाहिए
1: बढ़िया
0: साथ सम्मान।
1: बढ़िया टी बढ़िया मान सम्मान से टीका लगवाओ और मान सम्मान से राखी बांधो।
0: बिल्कुल।
1: हाँ
0: और
1: जी,
0: कभी कभी कुछ छोटी मोटी बातों को लेकर जो भाई बहन में अनबन हो जाती है, उन सब बातों को भुलाकर हमें अपनी बहन से बात करना
1: माने
0: चाहिए।
1: माने पूरी बातों को भुला के अगली
0: हाँ
1: पिछली माने बुराई मराई छोड़ के प्रेम से राखी बनवाने चाहिए,
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है
1: माने अगली पिछली बातों को ध्यान में नहीं लेने चाहिए, छोटी छोटी बातों पे ध्यान
0: जी,
1: नहीं देने चाहिए।
0: ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो भाई
1: जो
0: बहन का रिश्ता है।
1: जो त्योहार है अपना, उस
0: हाँ
1: त्योहार को श्रद्धा पूर्वक से

0: मनाना
1: हाँ,
0: चाहिए।
1: त्योहार के अलावा भी जो भाई बहन का पवित्र रिश्ता है, जो भाई अपनी बहन के लिए कर सकता है, जो बहन अपने भाई के लिए कर सकती है, वो कोई नहीं कर सकता। तो इस रिश्ते को हमेशा बनाए रखने के लिए हमें बहुत समझदारी से और अपनी छोटी मोटी बातों को भुला देना चाहिए, है ना। तो हरदयाल जी, आज कार्यक्रम में आपने हमें फोन लगाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: हेलो, कार्यक्रम में
1: हेलो।
0: बात आपकी गीत हमारे। आज हमने विषय लिया है भाई बहन का अटूट बंधन, रक्षाबंधन। तो सबसे पहले
1: जी
0: अपना शुभ नाम बताइए।
1: जी मैं देवीलाल आठोड़े बोल रहा हूँ, सुसनेर से, जिला आगरमालवा, मध्य प्रदेश।
0: तो आज
1: जी
0: हमने विषय जो लिया है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: जी रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का बंधन
0: जी
1: मतलब त्योहार है,
0: जी जी
1: और
0: जी
1: ये खुशहाली लाता है, और बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा कवच सूत्र बांधती है।
0: जी जी
1: इसी इन शुभकामनाओं के साथ प्रत्येक भाई बहन इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं।
0: मनाते हैं। जी हाँ, तो आपकी बहन कहीं दूर रहती है कि पास में ही रहती है?
1: नहीं मैडम, मेरी बहन ज्यादा दूर नहीं है, 30 किलोमीटर दूर ही रहती है।
0: अच्छा, तब तो फिर वो हर राखी पर आपको मिल जाती
1: जी जी
0: होंगी।
1: मैडम जी
0: जी,
1: जी
0: ये तो बड़ी, ये भी किस्मत वालों के साथ होता है। जो दूर रहते
1: मैडम
0: हैं वो हर बार तो नहीं पहुंच पाते, कई बार बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के एग्जाम या फिर कुछ और भी चीज़ें ऐसी रहती हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन आप ये मानिए कि जो राखी पोस्ट के थ्रू उनके तक जाती है, डाक के थ्रू, उसमें इतना प्यार
1: बिल्कुल
0: रहता है
1: बिल्कुल
0: और
1: जी
0: इतनी भावनाएं रहती हैं कि मुझे नहीं लगता कि
1: मैडम,
0: भाई को कमी लगती होगी बहन की।
1: नहीं लगती मैडम। जब इच्छा होती है जब वो फोन
0: हाँ
1: लगा लेती है, और जब हमारी इच्छा होती है हम लगा लेते हैं, घर बुला लेते हैं।
0: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल सही बात
1: जी
0: है।
1: मैडम
0: तो सच में ये बहुत ही भावुक कर देने वाला त्यौहार है ना?
1: बिल्कुल, बहुत भाव करता है मैडम ये
0: हाँ
1: त्योहार।
0: हाँ कभी कभी तो जब गाने बजते हैं रेडियो पे तो अनायास ही रोना आ जाता है कि अरे यार
1: जी जी
0: हम अपने घर नहीं जा पाए, मतलब मम्मी के यहाँ नहीं जा
1: जी
0: पाए,
1: मैडम
0: है ना? चलिए ठीक है, आज आपने देवीलाल जी हमें कार्यक्रम में फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: मैडम, नमस्ते
0: नमस्ते। कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुभ नाम बताइए अपना।
1: बहुत दिन के बाद फोन लगा है आपके कार्यक्रम में।
0: जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: इंदौर से अनिल कौचाले।
0: अनिल जी बोल रहे हैं?
1: हाँ, इंदौर से।
0: अच्छा जी, तो अनिल जी आज इंदौर की श्रोता बहुत है हमारे साथ। आपको पता है आज कार्यक्रम है बात आपके गीत हमारे, और हमने विषय लिया है भाई बहन का अटूट बंधन, रक्षाबंधन। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय पर?
1: इस बारे में कहना चाहेंगे कि भाई ये सब ये रक्षाबंधन और भाई दूज, ये साल भर में जो दो त्योहार रहते हैं जो भाई बहन के स्नेह प्यार के प्रतीक है।
0: हाँ।
1: और भाई अपनी बहन की रक्षा करता है, और केवल घर के भाई बहन के नहीं, जो महिला है वो अपने देश में सैनिकों की रक्षा करती है वो भी उनके भाई है।
0: बहुत
1: और
0: अच्छी बात है।
1: इसके अलावा जो पुलिस वाले है, जो यातायात प्रबंधन है, जो हमारे दिन रात सुरक्षा में रास्ते में कोई एक्सीडेंट वगैरह न हो जाए इसकी चौकसी के लिए जगह जगह ट्रैफिक रोकते हैं, वो भी एक तरह से भाई है। तो उनके भी हिफाजत करना ये मतलब महिलाओं का कर्तव्य होता है। और सभी लड़कियां महिलाएं अपने कर्तव्य का पूरी तरह से अच्छी तरह से निर्वहन करती है, जिसकी हमें बहुत खुशी है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। और आज आपने कार्यक्रम में फोन लगाया, हमसे बात करी, हमें बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

इसी गीत के साथ आप कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपनी दोस्त सरिता को। नमस्कार। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में होगा।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आज खेलो इंडिया संवाद खेल की बात पीएम के साथ कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश के 24 स्थानों पर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों, युवाओं और खेल प्रतिभाओं से संवाद करते हुए कहा कि खेल केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और अहमदाबाद में होने वाले आगामी ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेल तैयारियों की समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित वाहन कारखाने में टी सीरीज टैंक ओवरऑल परियोजना की आधारशिला रखेंगे। नेपाल के विदेश मंत्री ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा के कुछ हिस्सों में आई अचानक बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। वहीं भारत ने आपदा राहत और दवाओं सहित 10 टन सामग्री नेपाल को भेजी है। भारतीय बचाव दल राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हैं। सरकार ने बाजार में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की लक्षित आपूर्ति शुरू की है। प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 2 दिनों तक तेज बारिश का दौर रहने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में सबसे पहले हमने चुना है आपके लिए राजा हिंदुस्तानी फिल्म का वो नगमा जिसे आवाज दी है अलका याग्निक ने। समीर के बोल हैं, संगीत नदीम श्रवण का है। पसंद आप सब श्रोताओं की। आप्त दुबे, रेहान दुबे, अनन्या दुबे और रीशु दुबे ने इस गीत की फरमाइश भेजी है गुड़गांव से। इसी गीत को पसंद किया है जयराम प्लॉट राजकोट के श्रोताओं ने। ये हैं मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमीन और प्रयागराज भट्ट। इसी गीत को पसंद किया है गोला बाजार बक्सर के श्रोताओं ने। ये हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित और इनके परिवार के सभी सदस्य। तो आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद पर राजा हिंदुस्तानी फिल्म का।

और अब आपको सुनवा रहे हैं नदिया के पार फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है जसपाल सिंह और हेमलता ने। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का। पसंद आप सब श्रोताओं की है। छत्तीसगढ़ के श्रोताओं ने इस गीत की पसंद के लिए हमें पत्र लिखा है। दतरेंगी से हैं भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और पिपरिया से हैं दुर्गा राम साहू। इसी गीत को हमारे कुछ और श्रोताओं ने भी पसंद किया है। बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार और मास्टर मनीष का पत्र हमें मिला है। प्रवीण श्रीमाली, मीना आदित्य, अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली इस गीत को सुनना चाहते हैं कंवर कॉलोनी बड़वाह से। तो आइए सुनते हैं इन सबके साथ हम भी नदिया के पार फिल्म का ये नगमा।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। अब आपको सुनवा रहे हैं हम तीसरी कसम फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है मन्ना डे और साथियों ने। शैलेंद्र का लिखा हुआ ये गीत है, संगीत शंकर जयकिशन का है। पसंद आप सब श्रोताओं की। बक्सर बिहार से इस गीत को सुनना चाहते हैं शरीफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी। डुमराव बिहार से इसी गीत को पसंद किया है डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम आदिबा और दानिश अंसारी ने। बक्सर के ही कुछ और श्रोता हैं जो इस गीत को पसंद कर रहे हैं, ये हैं राज एसडी अंसारी और खातून अंसारी। जेल रोड दिल्ली से हमें पत्र मिला है लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती का। बक्सर से जीवित गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी इस गीत को पसंद कर रहे हैं। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र के श्रोताओं की भी यही पसंद है। पत्र लिखने वाले श्रोता हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब, साइमा, मुस्तफा, आफिया, राउफ भाई और शहीद भाई इस गीत के लिए हमें पत्र लिख रहे हैं। गांधी बाग अकोला के श्रोताओं ने भी हमें पत्र लिखकर इस गीत की फरमाइश की है। पत्र लिखने वाले श्रोता हैं रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। तो आइए सुनते हैं तीसरी कसम फिल्म का ये गीत।

अब आपको सुनवा रहे हैं आपकी कसम फिल्म का वो गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। आनंद बख्शी के बोल हैं, आरडी बर्मन का संगीत। पसंद आप सब श्रोताओं की। सिंहपुर बड़ा के श्रोताओं ने पत्र लिखा है, ये हैं राजेश नेमा, संगीता, भावना, प्राची और इनके परिवार के सदस्य। इसी गीत को पसंद किया है गुड्डू मिश्रा, गिरीश मिश्रा, निशा मिश्रा और इनके परिवार के सदस्यों ने। ये पत्र हमें मिला है सनावत से। एक और फरमाइशी पत्र हमें मिला है, ये पत्र है मोहाली चंडीगढ़ के श्रोताओं का। ये है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा और इनके साथी। कालका के श्रोता हैं शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद आपकी कसम फिल्म का ये नगमा।

0: और कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं परख फिल्म का वो नगमा जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने। शैलेंद्र के बोल है सलील चौधरी का संगीत। पसंद आप सब श्रोताओं की। चार मीनार चौक गंडई पडरिया के श्रोता हैं दरमियान माल, अनीता मोटवानी, राजेश मुकेश मोटवानी। नागपुर के श्रोता हैं अशोक कुमार सावलानी। तो आइए सुनते हैं परख फिल्म का ये नगमा।
1: सजना।

0: परख फिल्म के इसी गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। हमारा अगला प्रसारण इस छोटे से अंतराल के बाद होगा।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
5: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, प्रस्तुत है संग्रहालय से कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं धारावाहिक जमुनिया, आज सुनिए इसकी 9वीं कड़ी।

अभी तक आपने सुना कि कैसे जमुनिया अपने पति के साथ मेहनत से सुख के साथ जीवन यापन कर रही थी कि झूठे कागजों पर छल पूर्वक दिखाए गए बड़े कर्ज के बोझ तले दबकर रतन ने आत्महत्या कर ली और उसके भाई ने भी छल पूर्वक जमुनिया के बेटे को भी हथिया लिया। दूसरे गांव के झुल्लन ने जमुनिया को आसरा दिया। बांस के डलिया पंखे बनाने का काम सीखकर जमुनिया अपनी बेटी चिरैया के साथ जीवन बिताने लगी। इसी बीच गांव के दुर्दशा देख उसने पढ़ने का मन बनाया और गांव के ही एक गुरुजी ने उसे पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने जमुनिया को अक्षर से वाक्य तक तथा अंक से गणित तक ज्ञान देने के साथ उसे भारत के इतिहास के बारे में भी बताया। अब आगे।

0: बाबा
1: हाँ।
0: मैं आज पढ़ने नहीं जाऊंगी, गुरुजी को बोल कर आती हूँ, नहीं तो वो राह देखेंगे।
1: अरे जमुनिया, क्यों नहीं जाओगी पढ़ने? पढ़ाई का नुकसान क्यों करती हो बिटिया?
0: बाबा, चिरैया के पास रहना पड़ेगा ना।
1: अरे ऐसी कोई बात नहीं है बिटिया, मामूली बुखार है, ठीक हो जाएगा। उसके पास तो मैं बैठा ही हूँ, तुम चिंता मत करो बिटिया, जाओ। एक बार तय कर लिया है ना, तो फिर पीछे मत हटो बिटिया।
0: हाँ बाबा,
1: हाँ
0: तो फिर ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ
1: हाँ,
2: तुम फिकर मत कर माई, अभी मुझे ठीक लग रहा है, ठीक हो जाऊंगी, तू जा।
0: मेरी अच्छी चिरैया, चल आराम कर। हाँ मैं अभी जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है?
2: ठीक है माई, तू जा।
0: प्रणाम गुरुजी।
3: प्रणाम, खुश रहो बेटा। क्या बात है, कुछ परेशान सी लग रही हो, आज तुम्हें कुछ देर भी हो गई है।
0: कुछ खास नहीं गुरुजी, वो बेटी चिरैया है ना,
3: हाँ हाँ,
0: थोड़ा बुखार था।
3: अच्छा।
0: सो थोड़ी देर हो गई गुरुजी।
3: कुछ दवाई वेद जी से लाकर पिलाए हैं कि ऐसे ही?
0: हाँ, उन्होंने काढ़ा दिया है, उबाल कर पिलाया है।
3: अच्छा अच्छा, तुम जरा रुको
0: जी।
3: ये लो चार गोलियां।
0: जी,
3: अगर कल तक बुखार ना उतरे तो सुबह शाम एक एक गोली खिला देना है?
0: जी।
3: क्या करें बेटा, यहाँ कोई अस्पताल भी तो नहीं है और ना कोई डॉक्टर ही आता है।
0: सही बात, तभी तो मुकंदी, उसकी जोरू, बेचारी शारदा मर गई बिना इलाज के।
3: अच्छा चलो चलो, आगे की कथा सुनाते हैं। धीरे धीरे हमें अपने अधिकार और उत्तरदायित्व सीखने होंगे।
0: हाँ गुरुजी, ये तो सही बात है। चलिए, अच्छा आगे पढ़ते हैं। हाँ
3: हाँ, तो देखो, आजाद भारत दो हिस्सों में बटा, आपस में नफरत की आग लगी थी। हमारे योग्य नेताओं ने धीरे धीरे इस पर काबू पाया, तभी हमें दो पड़ोसी देशों के आक्रमण झेलना पड़े, चाहे वो 1962 का आक्रमण हो जिसमें पड़ोसी देश ने छुरा भोंका था, या 1965 का युद्ध जिसमें दूसरे पड़ोसी ने देश पर हमला किया। हम फिर भी कामयाब रहे, हमारी बहादुर फौज ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे, और 1971 में तो हमारी फौज ने ऐसी विजय पाई कि सारी दुनिया ने लोहा माना।
0: 1971 में ऐसा क्या हुआ था गुरुजी?
3: अब वो मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा
0: जी,
3: अभी तो बस इतना समझ लो कि दुश्मन को लड़ाई में हमारी सेना ने ऐसा घेरा कि दुश्मन के लाखों सैनिकों को हथियार डालना पड़े थे। दुनिया की किसी लड़ाई में इतने सैनिकों ने कभी भी एक साथ आत्मसमर्पण नहीं किया था। इतनी सारी सफलताओं के बाद भी अभी बहुत कुछ बचा था जो हमें हासिल करना था। इस कहानी पर तुम जरा ध्यान देना, पूछूंगा बाद में मैं तुमसे।
0: ध्यान से ही तो सुनती हूँ गुरुजी, आपकी बात को ध्यान से नहीं सुनूंगी तो सीखूंगी कैसे?
3: थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया ना
0: जी?
3: अरे भाई, धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा हैं?
0: जी।
3: देखो अब आगे सुनो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को एक नई दिशा मिली जब ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने भारत को एक नई सोच दी। उसका नाम था राजीव गांधी।
0: गुरुजी, वही ना इंदिरा जी के बेटे?
3: बिल्कुल सही। उन्होंने देश को नई नई तकनीक से आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उनके हर काम में एक मिशन था, या यूं कहें कि उद्देश्य था। वे चाहते थे कि देश की तरक्की की रफ्तार तेज हो, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान हो, या महिलाओं और बच्चों का विकास, या दूर संचार हो। देश हर क्षेत्र में तरक्की करने लगा। पहली बार पंचायती राज गांव गांव पहुंचा, वास्तविक रूप से पहली बार। विकास के लिए कब और कहां खर्च किया जाए, पहली बार गांव के लोग खुद निर्णय लेने लगे। सड़कों का निर्माण तेजी से हुआ। देश के विकास के लिए सड़क कितनी जरूरी है, ये तो तुम अच्छी तरह समझती हो ना?
0: जी गुरुजी, सड़क होती तो शारदा बहन शायद बच जाती है ना। सरकार पैसा देती है गांव के विकास के लिए, जिसे दीवान जैसे लोग दबाकर बैठ जाते हैं।
3: ये सब जानने समझने के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है।
0: जी गुरुजी।
3: अच्छा तो बेटा, आज यहीं समाप्त करते हैं।
0: जी।
3: तुम्हें अपनी चिरैया की चिंता होगी, मेरे कोई जरूरत हो तो बता देना।
0: जी अच्छा गुरुजी, प्रणाम गुरुजी।
3: आयुष्मान।
4: अरे करण है क्या घर पर?
5: ना भैया, वे तो घर पर ना हैं, पड़े होंगे कहीं पी पाकर।
4: अरे वो भाभी नहीं है, हमने पहले वहीं देखा फिर इधर आए हैं।
5: ना भैया, हमें तो ना पता कि कहाँ हैं वे, पर बात का है।
4: वो दीवान जी बुलाए हैं, और हाँ आए तो बता देना।
5: ठीक है भैया, आते ही भेज दूंगी।
4: हाँ जल्दी भेजना।
6: अरे ए, कौन है मेरे घर पर?
5: लो वो तो आ भी गए।
4: अच्छा बेटा, अब हमें नहीं पहचानते हैं?
7: ले चलो इसे, वहीं पहचानवाते हैं।
4: चलो
7: दीवान जी के सामने।
4: और का।
6: अरे माफ करना भैया, अंधेरा था जो पहचान नहीं पाया।
4: अच्छा।
6: आप लोगों को नहीं जानता है? अच्छा पर बताओ तू सही, बात क्या है?
4: अरे दीवान जी की बातें दीवान जी ही जानते हैं, हम क्या जाने।
7: वो जैसा बोलते हैं हम कर देते हैं,
4: और क्या,
7: बाद में क्या होता है वो संभाल लेते हैं।
6: अच्छा भैया चलो चलते हैं।
4: चलो चलो
7: चलो
6: चलो चलो। प्रणाम मालिक।
8: प्रणाम प्रणाम। अरे हट, जी तो बहुत ही पिए है।
4: हाँ मालिक।
8: इससे अभी क्या बात करूं। सुनो।
4: जी मालिक।
8: इसे बारह दरी में डाल दो ले जाकर। बोलो सो जाए, सवेरे बात करेंगे।
4: चलो चलो
8: जी, पर देखना उठकर चला ना जाए कहीं।
4: हाँ मालिक।
7: कहीं नहीं जाने पाएगा मालिक,
4: आप निश्चिंत रहिए।
8: ठीक है फिर, ले जाओ इसे।
4: चल चल चल
6: चलो चलो।
8: अरे सुनो
4: जी मालिक,
8: वो देखो करण उठा क्या।
4: मालिक अभी तो वो खर्राटे मार रहा है।
8: जगाओ उसे, बोलो हाथ मुंह धो ले फिर यहाँ लेकर आओ उसे।
4: हाँ मालिक।
7: अरे ओ कुंभकर्ण हट।
9: करण बाबू उठिए, हाथ मुंह धोइए।
4: अबे उठ जल्दी, दीवान जी बुला रहे हैं।
6: अच्छा
4: लेकर
6: उठता हूँ भैया, उठता हूँ। प्रणाम मालिक।
8: प्रणाम प्रणाम। होश में तो हो ना?
6: आपको देखकर तो नशा वैसे ही उतर जाता है मालिक, माफ करना।
8: क्या बात है, बहुत दिनों से तुम इधर दिखे नहीं।
6: बस यूं ही सरकार, कहीं गया तो नहीं था, बस यूं ही। हुक्म कीजिए मालिक, कैसे याद किया आपने?
8: देखो करण
6: जी,
8: तुम्हारी चाल के चलते रतन ने अपनी जान दे दी, और उसकी जमीन भी तुमने हड़प ली, और उसकी बहू और बेई को घर से बाहर निकाल दिया और उसका बेटा भी तुमने हत्या लिया, तो अब कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है
6: जी।
8: समझे? हाँ।
6: माफी मालिक, माफी, इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से चुकाऊंगा?
8: बिल्कुल सही कह रहे हो, तुमसे काम धाम तो कुछ होता नहीं। अच्छा भला खेत बनाया था रतन ने, उसी पे वो सोना पैदा कर देता, तुमने फिर उसे बर्बाद कर दिया। तुम्हारे पास रुपया चुकाने का कोई रास्ता तो है नहीं, पर मैं भी रुपए छोड़ तो नहीं सकता ना। रतन का सब तुम्हारा है तो फिर कर्ज भी तुम्ही को चुकाना पड़ेगा, सीधी सी बात है।
6: पर कागज में तो खाली गवाही हूं मालिक।
8: बिल्कुल नहीं, स्टाम्प पेपर पर साफ साफ लिखा है, यदि किसी वजह से रतन ये कर्ज ना चुका पाए तो फिर मैं चुकाऊंगा। मैं यानी करण, यानी तुम, हस्ताक्षर के तौर पर तुम्हारा अंगूठा है करण।
6: अरे ऐसा जुलुम मत करो मालिक।
8: पैसे पेड़ पर नहीं उगते बच्चे। जाओ और पैसे का जाकर इंतजाम करो।
6: अरे कितना इंतजाम करूं मालिक?
8: कितना क्या, बस 25,000 मूल दे देना और क्या। सूद तुमसे क्या लूंगा, अपने आदमी हो। और हाँ, तुम भी क्या याद रखोगे, तुम्हारे दारू का खर्चा भी माफ, ठीक?
6: अरे अरे कुछ तो रहम करो सरकार।
8: रहम? अच्छा चलो किया रहम, एक रास्ता निकल सकता है अगर कर सको तो।
6: क्या मालिक क्या?
8: तुम अपनी बहू को हमारे घर भेजो।
6: जी?
8: वो मालकिन का हाथ बटाएगी, यहीं खाएगी पिएगी रहेगी, और वो रतन का बेटा गोलू, वो हमारी बाहर की सेवा टहल करेगा। बोलो है मंजूर? जब तक ये दोनों यहां रहेंगे तब तक तुमसे पैसे वापस नहीं मांगेंगे, और अगर मंजूर ना हो तो एक मुश्त 25,000 रुपए दे जा, रट्टा खत्म, हम भी खुश तुम भी खुश।
6: अरे ये क्या कह रहे हैं मालिक, उन्हीं दोनों के भरोसे तो एक रोटी नसीब हो रही है, फिर कमाएगा कौन, खिलाएगा कौन, मेरा क्या होगा सरकार?
8: तुम्हारा क्या होगा ये सोचना सरकार का काम नहीं है, हमने अपना फैसला सुना दिया, अगर नहीं मानोगे तो फिर आगे क्या हो सकता है तुम अच्छी तरह से समझ सकते हो। और हाँ बताते जाना कि क्या मंजूर है, हमारी पहली वाली बात या फिर दूसरी वाली बात?
6: मालिक हमारे पास पहली बात मानने के सिवा कोई चारा भी तो नहीं है, मुझे भी किसी काम पर लगा लीजिए, दो रोटी खाकर यही कहीं पड़ा रहूंगा मालिक।
8: अरे हट, ये दीवान का घर है, कोई रैन बसेरा नहीं, तुम किस काम के हो जो तुम्हें काम दूंगा? चलो जाओ यहां से, और अपनी बहू और बेटे को भेज देना, आज ही आ जाना चाहिए उन्हें, बस जाओ।
6: जी सरकार।

0: रुको।
1: अरे दरवाजा खोल।
0: अरे तुम क्या रात भर वहीं रहे दीवान जी के घर? अरे खूब खिलाता पिलाता है तुम्हें, है ना?
1: चुप, बकवास तो करना नहीं। अरे दीवान जैसे लोग किसी के नहीं होते हैं। उसने तो मुझे भी फांस लिया, समझी?
0: अरे का हुआ है, कैसे फांस लिया?
1: अरे रतन भैया मर गए, अपना फंदा मेरे गले में डाल गए।
0: वो कैसे?
1: अरे ये जमुनिया चली तो गई, पर उसका भूत अभी तक मेरे पीछे लगा है।
0: है जी?
1: हाँ, जब देखो तब लगता है कभी भी आकर बदला लेगी।
0: अरे साफ साफ बताओ हुआ का है?
1: अरे हुआ क्या, करण भैया ने 10,000 कर्ज लिया था दीवान से, तो मुझे भी लालच आ गया, मैंने भी 5,000 ले लिया, तो दीवान ने उसे 25,000 बनाकर मेरा भी अंगूठा लगवा लिया।
0: है?
1: मैंने सोचा आधा तो रतन भैया को करना है, अरे वो तो जान देकर फ्री हो गए। अब

0: कोई उपाय भी नहीं है। और सुनो, गोलू को भी जाना पड़ेगा, वो बाहर का काम करेगा। और अरे चुप भी कर,
1: तुमने अपने शौक, अपने नशे के लिए हमें गिरवी रख दिया, अपनी पत्नी और अपने बेटे को गिरवी रख दिया। चलो अच्छा है, अब चलाना बैठे बैठे रो, तब पता चलेगा।
0: अरे चुप रहती है, दुए कान के नीचे।
1: फोन लगाओ, लगाओ, जरूर लगाओ। इसके सिवा तुम्हें आता ही क्या है? हे भगवान, मुझे उठा लो।
0: जीना हराम कर रखा है। चुप रह, दू नहीं के।
2: समय बीतता गया। जमुनिया गुरुजी से शिक्षा लेती रही। करण दर दर भटकता विक्षिप्त हो गया। उसकी पत्नी दीवान के घर काम करने लगी और जमुनिया रतन का बेटा गोलू दीवान के घर बंधुआ मजदूर की तरह काम करने लगा। आइए सुने इस गीत में क्या हो रहा है।

0: अरे चमनिया, ये क्या है तुम्हारे हाथ में?
1: प्रणाम गुरुजी।
0: प्रणाम।
1: ये अखबार है गुरुजी, कल हाट गई थी सो ले आई।
0: अरे वाह वाह वाह जमुनिया, तू तो अखबार भी पढ़ने लगी।
1: जी गुरुजी। गुरुजी, सब अखबार यही बोलते हैं कि सरकार हजारों करोड़ों रुपया गांव के विकास के लिए खर्च कर रही है। स्कूल खुलवा रही है, अस्पताल बनवा रही है, फिर हमारे गांव में कुछ क्यों नहीं?
2: अरे कल 15 अगस्त है, मौका लगे तो तुम भी जाके देख लो, सारी बातों का जवाब मिलने लगेगा तुम्हें।
0: भाई वरना हो तो मैं भी चलता हूँ, है? देखते हैं क्या होता है।
1: जरूर चलेंगे गुरुजी।
3: देशभक्ति गीत गाएंगे।

0: अब आप लोग सब खामोश होकर बैठ जाइए। आज आजादी की वर्षगांठ पर, इस शुभ अवसर पर हम अपने सरपंच दीवान जी से विनती करते हैं कि वे यहां पर आएं और आप सभी के सामने अपनी बातें रखें।
1: भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो स्वाधीनता दिवस पर आप सबको बधाई।

0: शुभकामनाएं। साथियों, हमारे देश में आजादी के बाद से बहुत विकास हुआ है, गांव गांव में तरक्की हो रही है। अब अपने गांव को ले लो, पिछले साल गलियों में खड़ंजा डलवाया गया।
1: भैया हमने तो देखा।
0: अरे अरे दीवान जी की गली में डलवाया गया था भैया। हाँ डलवाया गया हमारी गली में भैया, तो क्या हम गांव में नहीं है, है? बोलिए। अरे भाई कुछ और गलियों में भी डाला गया, सरकार से जितना पैसा आया वही तो खर्च होगा ना। बोलो डलवाया कि नहीं?
2: हाँ डलवाया था भैया, डलवाया था आपने। हाँ डलवाया था, मालूम है।
1: दो नए कुएं भी खुदवाए साहब।
2: हाँ मालूम है।
3: अरे कितने रुपए खर्च हुए थे दीवान जी?
0: पूरे 50 लाख।
3: अरे हमने तो सुना है कि 12 लाख रुपए सरकार ने दिए थे पानी के लिए।
0: हाँ बाकी के हैंडपंप लगवाए गए।
3: हमने तो गांव में कोछु हैंडपंप देखो ही नहीं है।
0: भाई हमने तो खुदवाए थे पर पानी नहीं निकला, तो क्या करें भैया, पैसे तो आखिर खर्च हो गए ना।
3: क्या कहिए आप लोग, शांत रहे आप लोग।
0: तुम लोग मुंह बांध क्या बैठे हो?
4: सही है मालिक, बिल्कुल सही है। अरे हम ही तो बुलाकर लाए थे पंप गाड़ने वालों को।
1: हम ही लाए थे।
5: झूठ बोल रहे हैं।
0: देखो भाइयों मेरी बात सुनिए। अरे ये गांव मेरा परिवार है, यहाँ के सभी लोगों का ध्यान रखना मेरा फर्ज है, और फिर ये कोई आखिरी काम तो है नहीं। भाइयों जब भी मेरी जरूरत हो तो बताइए, मैं हमेशा आप लोगों की सेवा के लिए हाजिर रहूंगा।
6: इतनी चुपड़ी चुपड़ी बातें करता है दोबारा।
7: मेरी पत्नी को अस्पताल ले जाने के लिए ट्रैक्टर मांगा था, हैं? आपने नहीं दिया, अब मर गई।
0: ये मेरे ऊपर बेकार का इल्जाम है, सुनिए मेरी बात। ये मेरे ऊपर बेकार का इल्जाम लगाया गया है। भाइयों जैसे ही मुझे पता चला कि इसकी पत्नी बीमार है, उसे अस्पताल ले जाना है, मैंने उसी समय तुरंत ट्रैक्टर भेजा था, पर दुर्भाग्य से उसी समय डीजल खत्म हो गया। भाइयों तो बताइए मैं क्या करता।
3: ट्रैक्टर तो तुरंत आया था।
0: भाइयों बहनों मुझ पर भरोसा रखिए, सरकार जितना पैसा गांव के विकास के लिए देती है, मैं रत्ती रत्ती पाई पाई गांव के विकास के लिए खर्च करता हूं। पर भाइयों जरूरतें बहुत हैं, अरे धीरे धीरे ही तो पूरी होंगी ना।
8: देखा कितनी सफाई से सारी बातें टाल गया ये।
9: इसकी सफलता का कारण जानती हो जमनिया?
8: ठीक से बता नहीं सकती, पर इतना तो जरूर है कि अपने छोटे छोटे फायदे के लिए लोग इसे अपनी तरफ किए रहते हैं।
9: समझी तो हो पर ठीक से नहीं। दीवान लोगों की छोटी छोटी लालचों को पूरा करता है, इसी में उन्हें उलझाकर फंसा लेता है, और लोग उसमें इस तरह फंस जाते हैं कि निकल ही नहीं पाते।
8: बहुत सही है गुरुजी, हमें अपने सुख दुख का डटकर सामना करना चाहिए।
9: बिल्कुल।
8: और छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर काम करना चाहिए, है ना गुरुजी?
9: हाँ तुम सही कह रही हो बेटा, पर अभी समय है एक दूसरे को बधाई देने का, शुभकामनाएं देने का। स्वाधीनता दिवस की बहुत सारी बधाई।
8: आपको स्वाधीनता दिवस की बधाई हो झुलन बाबा।
10: स्वाधीनता दिवस मंगलमय हो।

0: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से, इस कार्यक्रम में जमुनिया धारावाहिक की 9वीं कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आज खेलो इंडिया संवाद खेल की बात पीएम के साथ कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश के 24 स्थानों पर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों, युवाओं और खेल प्रतिभाओं से संवाद करते हुए कहा कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खेल केवल मेडल जीतने तक ही सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित कार्यक्रमों में युवा खिलाड़ी, छात्रों सहित केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और अहमदाबाद में होने वाले आगामी ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेल तैयारियों की समीक्षा करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्री ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा के कुछ हिस्सों में आई अचानक बाढ़ के चलते लापता हजारों लोगों में से लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। वहीं भारत ने आपदा राहत और दवाओं सहित 10 टन सामग्री नेपाल भेजी है और भारतीय बचाव दल राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज ओंकारेश्वर स्थित एकात्मधाम में आयोजित पंचायतन मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में कहा कि सिंहस्थ 2028 से पहले एकात्म यात्रा का आयोजन किया जाएगा जो देश के विभिन्न हिस्सों से होकर सिंहस्थ क्षेत्र में पहुंचकर संपन्न होगी। और प्रदेश में मानसून लगातार सक्रिय है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक तेज बारिश का ये दौर जारी रहने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

महिला सभा सुनने वाली सभी सखियों को आपकी अपनी रेडियो सखी प्रीति का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी प्यारी प्यारी सखियों का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। सखियों, जब गर्मियों में हम पानी की समस्या से जूझते हैं तो चारों तरफ से बस यही बात उठती है कि पानी को बचाओ, उसे बर्बाद मत करो, प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण करो, उन्हें प्रदूषित ना करो, बरसात के पहले जल स्रोतों की सफाई करो ताकि जब पानी गिरे तो ये जल स्रोत पानी से भर जाएं और गर्मी में पानी की समस्या से बचा जा सके। पर क्या वास्तव में हम इन सब बातों का पालन करते हैं? शायद जिस रूप में जितना प्रयास करना चाहिए हम नहीं करते। अभी पानी गिर रहा है पर हमने अपने आसपास के जल स्रोतों को कितना साफ किया? क्या हमने ये सुनिश्चित किया कि जब इनमें पानी भरे तो वो उपयोग करने के योग्य हो? इस सवाल का जवाब हमें ही खोजना है। सखियों, आज हम विश्व झील दिवस मना रहे हैं। झीलें केवल हम इंसानों के लिए ही पानी का मुख्य स्रोत नहीं हैं, बल्कि कई जीव जंतुओं के जीवन का आधार भी हैं। झीलों की इसी अहमियत को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में आज के दिन यानी 27 अगस्त को विश्व झील दिवस घोषित किया। सखियों, इसे मनाने का उद्देश्य दुनिया भर के सरकारी गैर सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थानों और सिविल सोसाइटियों को झील संरक्षण की दिशा में सक्रिय करना है। सखियों, धरती पर लगभग 11 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा झीलें हैं जिनमें दुनिया का 90% पीने का पानी मौजूद है।

पर इनकी अनदेखी की वजह से न सिर्फ पीने के पानी के समाप्त होने का खतरा बढ़ गया है, बल्कि इन झीलों में पाई जाने वाली कई जातियां विलुप्ति की कगार पर हैं। झीलों पर खतरा क्यों है? क्योंकि एक तो जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान बढ़ने से झीलें सूख रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर हम उद्योगों और रसायनों के कचरे से झीलों को गंदा कर रहे हैं। सखियो, यदि अब भी हम नहीं चेते, हमने झीलों के संरक्षण की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो झीलों में पानी की गुणवत्ता और मात्रा दोनों घट जाएगी। इस समस्या से बचने के लिए और झीलों को बचाने के लिए हमें झीलों में कचरा और प्रदूषण फैलाना बंद करना होगा। जो झीलें सूख गई हैं उनका पुनरुद्धार करना होगा। जलवायु परिवर्तन को रोकने के प्रयास और तेज करने होंगे। लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ानी होगी ताकि हर कोई झीलों की अहमियत को समझे और उन्हें संरक्षित रखने में सहयोगी बन सके। यदि हम ऐसा कर पाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचा पाएंगे।

0: सखियों, इस गीत के बाद अब चलते हैं आज के अगले क्रम की ओर, जिसमें आज हम सुनेंगे डॉक्टर संध्या जैन से उनकी कहानी शाश्वत सत्य। तो आइए सुनते हैं कहानी शाश्वत सत्य।
1: आज स्निग्धता का गरिमामय सौंदर्य युक्त चेहरा कुछ धूमिल सा हो गया था। वह परेशान थी कि उसके पिताश्री ने यह आदेश कैसे दे दिया कि जिस गुरु ने उसे बचपन से साहित्य व संस्कृति की शिक्षा दीक्षा दी, जो महात्मा दुनिया के समस्त वैभव और विलासिता से सदैव अपने को दूर रखते रहे, साहित्य सृजन ही जिनकी उपासना और मन वचन कर्म से सत्कार्यों की पूजा ही उनका सर्वस्व था, जिन्होंने मुझे साहित्य ज्ञान से परिपूर्ण किया, जिसका प्रतिफल आज देश के राजाओं महाराजाओं के बीच स्निग्धता के लेखन की चर्चा होने लगी थी कि अचानक पिताश्री ने गुरु महात्मा बीरभानु को मृत्युदंड दे दिया। यह सब सोचते सोचते स्निग्धता बेचैन हो बेहोश होकर गिर पड़ी। यह दृष्टांत आज से कई वर्ष पूर्व मगध राज के राजवंश से घटी घटना का है। राजा कीर्तिसुख की इकलौती कन्या स्निग्धता बाल्यकाल से ही अति सुंदर और बुद्धिमान थी। राज्यकाल में सब ओर सुख और शांति का साम्राज्य था। अन्य देशों के राजा भी इस देश को बड़ी ललचाई नजरों से देखते और उसके यश व वैभव से ईर्ष्या करते थे। राजन ने अपनी इकलौती पुत्री स्निग्धता के लिए सभी प्रकार की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया था। बाल्यावस्था पार करते ही राजकुमारी अस्त्र शस्त्र में निपुण होने लगी, साथ ही राजकाज के कार्यों को भी समझने लगी थी। राजा के परिवार में साहित्य और संगीत का भी प्रभाव था, अतः राजा ने गुण और धर्म के अनुसार बच्ची को साहित्य और संस्कारों की शिक्षा हेतु एक अच्छे और निपुण ज्ञानी की तलाश के आदेश दिए। राजाज्ञा के बाद तुरंत इसकी खोजबीन की गई। राज्य के ही घने वन में निवास करने वाले संस्कृत और साहित्य के ज्ञाता ऋषि वीरभानु को ससम्मान राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राजन ने अपनी लालसा संपूर्ण विवरण सहित मुनिवर के समक्ष प्रस्तुत की कि वे चाहते हैं उनकी पुत्री साहित्य और संस्कृति की ज्ञाता बने। अन्य कार्यों में तो वह निपुण है, किंतु अभी साहित्य के क्षेत्र में उसका ज्ञान अल्प है। वह जिज्ञासु है, अतः हम चाहते हैं कि हमारी राजकुमारी साहित्य में भी पारंगत हो। हे मुनिवर, हमारा ये निवेदन स्वीकार कीजिए और राजकुमारी स्निग्धता को ज्ञान दान दीजिए। राजन की बात सुनकर रिसीवर थोड़ा खामोश रहकर बोले, हे राजन, निश्चय ही यह मेरे लिए हर्ष का विषय हो सकता है, किंतु मेरी एक शर्त है कि मुझे इन विशालकाय भवनों की आबो हवा रास नहीं आएगी। मुझ जैसे दीनहीन व्यक्ति को राशि ठाटबाट की आवश्यकता भी नहीं है, किंतु यदि राजकुमारी को शिक्षा ग्रहण करना ही है तो वह मेरे आश्रम में रहकर ग्रहण कर सकती है। पहले तो राजन मुनिवर का यह प्रस्ताव सुनकर थोड़ा चिंतित हुए, किंतु राजकुमारी की ज्ञानार्जन की लालसा ने उन्हें विवश कर दिया। वे इन वयोवृद्ध ऋषि की बात मान लें। राजा ने ऋषि की बातें स्वीकार कर राजकुमारी को ज्ञानार्जन हेतु ऋषि बीरभानु के साथ जंगल की ओर अनेकानेक सेवक और अन्य सुविधाओं के साथ प्रस्थित किया, किंतु ऋषिवर ने इन समस्त साधनों और सेवाओं को लेने से इनकार कर दिया और वह अकेली राजकुमारी को लेकर जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। घनघोर जंगल में ऋषि का आश्रम था। अब राजकुमारी एक पुत्री की तरह मुनिवर की सेवा करती और प्रतिदिन उनसे शिक्षा ग्रहण करती। यह क्रम लगातार चलता रहा। राजकुमारी ने अपने प्रयास और परिश्रम से कुटिया के चारों तरफ का वातावरण

बहुत अच्छा बना रखा था। वह प्रतिदिन साफ सफाई, वृक्षों व जानवरों की देखभाल के साथ ही मुनि श्रेष्ठ की सेवा भी मन लगाकर करती। अब मुनि का आश्रम भी एक सुरम्य और सुशोभित परिवेश में झलकने लगा। यहाँ का वातावरण सदैव ही आनंदमय और उल्लासपूर्ण रहता। स्निग्धता के लेखन में भी निखार आता चला गया और वह श्रेष्ठ कवित्री की तरह बहुत अच्छी रचनाओं का सृजन करने लगी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद राजा ने राजकुमारी को महल बुलाया। राजकुमारी आश्रम छोड़ महल में आई। राजा ने उत्कंठा जाहिर की कि राजकुमारी के लिखे कुछ लेख व कविताएं वो देखना चाहते हैं, जिससे उनकी साहित्य साधना का ज्ञान उसे हो सके। राजकुमारी ने अपने पिता श्री के सम्मुख अपनी स्वतः की लिखी कुछ कविताएं और लेख प्रस्तुत किए। राजन राजकुमारी का यह लगाव व उन्नति देखकर प्रसन्न थे, किंतु राजकुमारी की एक कविता ने राजा को बेचैन कर दिया। राजकुमारी स्निग्धता अभी यौवनावस्था की दहलीज पर पैर रख ही रही थी, जिसने सदैव ही महलों के वैभव व सुख सुविधाओं को ही देखा था, जिसके चारों ओर खुशी ही खुशी थी, संपन्नता थी, सेवक सेविकाएं थीं, विशालकाय महल और रमणीय दृश्य थे। उसे ये जानकारी ही नहीं थी कि अभाव क्या होता है, गरीबी कैसी होती है, भूख और मौसम के प्रभाव से ठिठुरता मानव किस तरह मर्मांतक हो उठता है। फिर यह क्या, यह कल्पना राजकुमारी में कहाँ से जन्मी कि एक घनघोर जंगल में एक गरीब परिवार रहता है। वह जानवरों की सेवा करता है और उसी से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। उसने घास फूस की एक झोपड़ी भी बना रखी है। बरसात के दिन हैं, तेज आंधी और हवा के कारण उस अंधकारमयी झोपड़ी में आज भूख और सिहरन की सेवा कुछ नहीं। घनघोर बारिश हो रही है और बिजली जोर जोर से तड़क रही है। झोपड़ी के चारों तरफ पानी ही पानी है, अंदर भी पूरी तरफ पानी रिस रहा है। झोपड़ी के कोने में बैठा गरीब किसान कांप रहा है, क्योंकि बारिश का पानी झोपड़ी से रिसता हुआ उसके बदन को भिगो चुका है। झोपड़ी के अंदर कहीं भी रोशनी का एक भी बिंदु नहीं है। अगर कुछ है तो वो है मजबूरी, बेबसी और अभावग्रस्तता। राजन ने ये कविता पढ़कर चौंके ही नहीं बल्कि स्तब्ध रह गए। इस कल्पना ने उन्हें व्याकुल कर दिया। जाने क्या क्या अंतर्द्वंद उठने लगा, जिसने उनके मानस पटल को उथल पुथल कर डाला। जब स्थिति असहनीय हो गई और निर्णय के किसी बिंदु पर पहुंचने लगी, तो उन्होंने आदेश जारी कर दिया कि इस महात्मा का वध कर दिया जाए। मेरी पुत्री, जिसने कभी दुख न देखा न जाना हो, उसने दुख की कल्पना कैसे की? राजा ने सोचा, यह उस दीनहीन और अभावग्रस्त जीवन जीने वाले ऋषि के दिमाग की उपज है। इसने ही मेरी पुत्री का दिमाग परिवर्तित किया है और ऐसे दृश्यों की कल्पना की ओर आकर्षित किया है। मैं नहीं चाहता इस वैभवशाली राज्य की राजकुमारी, जिसका भूत वर्तमान भविष्य वैभव संपन्नता से गुजरा है, वह ऐसी कल्पना करे। यह कैसे संभव हो सकता है? कल अन्य देशों के राजा व राजकुमार इसे जानेंगे तो क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे? अतः निश्चित ही इस मुनि ने राजसी परिवार के चिंतन में यह पनपाकर घोर अपराध किया है। उसने अपने हित के लिए राजा के हित को तिलांजलि दे दी। हमने उस पर विश्वास किया और हमारे उस विश्वास पर उसने शंकाओं की चादर डाल दी। इस तरह की कल्पना भी राजसी परिवार के लिए दुखमय है। राजा के मन में यह विचार पनपने लगा कि मृत्युदंड के पश्चात राजकुमारी भी यह समझ जाएंगी कि राजवंश सिर्फ राज्य करने और वैभव भोगने के लिए होते हैं। उनकी कल्पनाओं में राजप्रसाद, मुक्ता स्वर्णाभरण, नयनाभिराम उद्यान, रंग बिरंगी अट्टालिकाएँ, अदब से सर झुकाकर खड़े सेवक सेविकाएँ, गर्व से लहराती कीर्ति पताकाएँ ही जीवन का एक अंग हैं। इससे बाहर सोचना हमारे बस में नहीं, और ऐसी सोच पैदा करने वाला मृत्युदंड का भागी है। राजकुमारी स्निग्धता स्तब्ध सी डबडबाई आँखों से विचारमग्न हो राजाज्ञा के पालन का समय देखती रही।
उसकी तंद्रा

0: टूटी कि कान में वही मधुरता और आशीर्वाद घोलते हुए कुछ शब्द आ टकराए। पुत्री, साहित्य तुम्हारा जीवन है, तुम इससे विमुख मत होना। कल्पनाएं अनंत हैं, तुम उनके सहारे सब कुछ देख सकती हो। इसलिए आज मृत्यु पथ पर बढ़ते हुए तुम्हें स्नेहिल आशीर्वाद देकर आदेशित करता हूँ कि तुम्हारी लेखनी कभी रुके नहीं, क्योंकि वैभव एक दिन नष्ट हो जाता है, सत्य सदैव विजयी रहता है और सम्यक साहित्य ही शाश्वत है। स्निग्धता ने बहुत कोशिश की कि उसके गुरु को मृत्युदंड ना मिले, किंतु उसकी तमाम कोशिशें व्यर्थ गईं। एक सुबह सिपाही रिसीवर बीरभानु को मृत्युदंड के लिए नियत स्थान पर ले जाते हैं और स्निग्धता डबडबाई आँखों से उन्हें देखती रह जाती है।
1: सखियों, अभी हम डॉक्टर संध्या जैन से उनकी कहानी शाश्वत सत्य सुन रहे थे। सखियों, बरसात अपने साथ पानी की समस्या का हल लाती है, हरियाली लाती है, ठंडक लाती है, इसलिए लोगों को लुभाती है। पर जब बरसात की वजह से जलभराव होता है, कीचड़ के कारण गंदगी होती है, तो समस्या भी आने लगती हैं। इन समस्याओं के कारण बीमारियाँ भी फैल जाती हैं। सखियों, जब हमारे आसपास पानी भर जाता है तो मच्छर होने लगते हैं, जिनके कारण डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इस समय पीने का पानी भी एकदम साफ नहीं आता, जिससे हैजा टाइफाइड जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर लंबे समय तक शरीर में कहीं गीलापन रहे तो फंगल इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है, साथ ही सर्दी जुकाम बुखार से भी हम परेशान हो सकते हैं। सखियों, अब यदि हम इन सब से बचना चाहते हैं तो क्या करें? तो वैसे तो हमारी सखियां समझदार हैं, इनसे बचने के उपाय जानती हैं, पर फिर भी कहीं कुछ कसर रह जाती है, या कभी कभी हम थोड़े से लापरवाह भी हो जाते हैं। जैसे कभी बाहर गए और कुछ खाने का मन हुआ तो हम अपने मन को नहीं मना पाते और बाहर का खुला हुआ खाने से बीमार पड़ जाते हैं। इन दिनों पानी की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पानी भले ही दिखने में साफ लगे, पर फिर भी यदि उबाल कर पिया जाए तो हम बीमारी से बच सकते हैं। अपने आसपास या घर में भी ये सुनिश्चित करें कि कहीं लंबे समय से पानी भर तो नहीं रहा है, क्योंकि भले ही पानी साफ हो, वहाँ भी मच्छर हो सकते हैं। बल्कि डेंगू के मच्छर तो साफ पानी में ही होते हैं। कई बार हम छत पर पुराने डिब्बे या टायर जैसी कोई ऐसी चीजें रख देते हैं जिनमें पानी जमा हो सकता है, तो उनमें मच्छर होने का खतरा बना रहता है। इसलिए अगर आपके यहाँ भी खुली जगहों में कुछ ऐसा सामान रखा है तो ये सुनिश्चित करें कि वहाँ पानी का जमाव ना हो। यदि आसपास कहीं जलभराव की समस्या है तो तुरंत सक्षम व्यक्ति से संपर्क कर वहाँ दवाई का छिड़काव जरूर कराएं, ताकि मच्छर ना हो। गीले कपड़े या जूते पहनने से बचें, ताकि त्वचा संबंधी समस्याओं से बचा जा सके। अपने आप को सूखा रखेंगे तो सर्दी जुकाम से भी बच सकते हैं। सखियो, हर मौसम अपनी सुखद स्मृतियां तब देता है जब हम उसे उसके अंदाज में अपनाते हैं, यानी उसका स्वागत उसके हर पहलू को जानकर पूरी तैयारी के साथ करते हैं। हम उम्मीद करते हैं हमारी सखियों ने सावन माह की हरियाली और उसकी यादों को अपने कैमरे में सुरक्षित किया होगा। फिलहाल हम भी जाते हुए सावन को इस गीत के साथ याद करते हैं।

0: और सखियों, इस गीत के साथ वक्त हो रहा है आप सभी से विदा लेने का। सखियों, बीमारियों से बचने के लिए अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसी शुभ भाव के साथ महिला सभा से प्रीति को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे महिला सभा और ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: सुनिए आकाशवाणी भोपाल से ग्रामीण श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम सभा, प्रतिदिन शाम 7:20 से।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए आप सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान है। पहले सुनिए अशोक कुमार झारिया के स्वर में लोक भजन।

ये था लोक संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान है। इसमें सुनिए किशोर मिश्रा के स्वर में गजल।

0: इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। समय है अंतराल का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: सुनिए प्रतिदिन आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, प्रतिदिन सुबह 7:20 से।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खेल सिर्फ पदक जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं और खेल प्रतिभाओं को जोड़ने का माध्यम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के हर जिले में खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने की क्षमता है। उन्होंने 5 से 15 वर्ष तक की उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा खोजने के लिए बड़े प्रतिभा खोज अभियान की बात भी कही। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर प्रवास के दौरान डुमना एयरपोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सहभागिता की। वहीं कटनी जिले में आयोजित कार्यक्रम में सांसद वीडी शर्मा ने इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया।
1: खेलो इंडिया का संवाद के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री वर्चुअली आज सम्मिलित हुए हैं। सभी खिलाड़ियों को देश के खेलो इंडिया का अभियान और ये नए नौजवान बच्चों का टैलेंट का स्तर तो 2036 में होने वाले ओलंपिक के लिए तैयारी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे खेल जिनमें भारत प्रतिनिधित्व नहीं करता उनमें खिलाड़ी हमारे डेवलप हों। हमने आज कटनी के अंदर हमारे उन खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया है जिन्होंने प्रदेश का और देश का नाम रोशन किया है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जबलपुर में 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले टी सीरीज टैंक ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। ये कार्यक्रम व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस परियोजना से रक्षा उपकरणों के रखरखाव और उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और इस प्रोजेक्ट से जबलपुर की रक्षा क्षेत्र में भूमिका भी मजबूत होगी तथा महाकौशल क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
2: ये अपने आप में भारत की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजिकल कॉन्शियसनेस, हमारी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी और डिफेंस सेक्टर में हमारे बढ़ते कॉन्फिडेंस की एक यह नई विशाल है। यह प्रोजेक्ट हमारे उन सैनिकों के लिए एक वरदान सिद्ध होगी जो इन टैंक के सहारे दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि यह प्रोजेक्ट जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों के स्थानीय लोग, हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे नौजवान, हमारे छोटे उद्यमी के जीवन में भी समृद्धि और रोजगार के नए दरवाजे भी खोलने वाला है।
0: ओंकारेश्वर स्थित एकात्म धाम में पंचायतन मंदिर के निर्माण के लिए आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भूमि और शिला पूजन किया। मुख्यमंत्री ने सपत्नीक विधि विधान से मंदिर निर्माण की नींव रखी। इस पूजन के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से विद्वान भी ओंकारेश्वर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ से पहले ओंकारेश्वर में मंदिर के साथ कई विकास कार्य और घाटों का निर्माण पूरा किया जाएगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के स्नेह और अटूट विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये पर्व भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा और पारिवारिक समरसता का संदेश देता है। राज्यपाल ने लोगों से सामाजिक सद्भाव और आपसी भाईचारे की भावना को मजबूत करने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 29 अगस्त को बालाघाट जिले में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान में शामिल होंगे। रक्षाबंधन के अवकाश के कारण इस बार प्रदेश भर में शनिवार को यह अभियान

आयोजित किया जाएगा। बालाघाट में मुख्यमंत्री जिला स्तरीय समाधान ऑनलाइन में चिन्हित शिकायतकर्ताओं की समस्याएं सुनेंगे। इसके बाद बैठक और समीक्षा के अलावा मीडिया संवाद और उद्योग संवाद भी आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही आश्रमों, छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों और युवाओं से भी संवाद होगा। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और पूर्वी तथा उत्तरी हिस्से के 17 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार सागर, रीवा और शहडोल संभाग में अगले 24 घंटे के दौरान 2.5 से 4 इंच तक बारिश होने की संभावना है। वहीं कल प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। दतिया जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने दतिया जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। शिवपुरी जिले की तहसील बदरवास स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में 4 सितंबर को एक दिवसीय श्री कृष्ण पर्व का आयोजन भव्य रूप से किया जाएगा और कटनी के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में युवा कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, खिलाड़ी एवं युवा शामिल हुए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: runs in second innings of the second and final test.
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध। नेपाल में बाढ़ से लगभग 160 लोगों की मौत, 300 भारतीय समेत सहित 1000 से ज्यादा लोग लापता। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी। नेपाल बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए बातचीत की कोई निश्चित समय सीमा नहीं। और कोलंबो में दूसरे तथा अंतिम टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका ने दूसरी पारी में चायकाल तक भारत पर 151 रन की बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल ढांचा विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले।
3: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है।
3: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं, तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है। खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में खेल प्रतिभा खोजने के लिए बड़े प्रतिभा खोज अभियान की घोषणा की थी।
3: लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है। हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को

0: ट्रेनिंग देनी होगी।
1: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों ने लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया है।
2: भारत का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडल्स तक सीमित नहीं है। फिट इंडिया से करोड़ों युवाओं को जोड़ने से लेकर संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों तक आपने फिटनेस को लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स को नेशनल मूवमेंट बना दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयर अपॉर्चुनिटी को मजबूत करने का प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिभा को अपना टैलेंट साबित करने का समान मंच मिले।
1: ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत मेरा युवा भारत माय भारत ने आयोजित किया था। देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर जिले के दो दो कॉलेजों के युवाओं ने इसमें भाग लिया। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश में मजबूत खेल व्यवस्था और बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 36,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। गुजरात में गांधीनगर के पालज स्थित IIT में आयोजित खेलो इंडिया संवाद से अलग मीडिया से बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि इस राशि का इस्तेमाल खेल अकादमियों की स्थापना, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खेल सुविधाओं को मजबूत करने में किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारत को अपनी खेल परंपराओं को एक जीवंत खेल संस्कृति में विकसित करना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली के हिंदू कॉलेज में खेलो इंडिया संवाद में हिस्सा लिया। छात्रों को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश एक मजबूत खेल तंत्र विकसित करने के लिए लगातार काम कर रहा है।
3: इंटरनेशनल लेवल में हमारा मेडल्स बढ़ रहे हैं। पहले तो हम एक मुश्किल से दो मेडल मिलते थे, अब तो हम हर कंपटीशन, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, चाहे ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो, अब तो मल्टीपल मेडल्स जीतते हैं इंडियन प्लेयर्स। ये तो बहुत फख्र की बात है।
1: कश्मीर के सभी 10 जिलों के हजारों छात्रों, खिलाड़ियों और अन्य लोगों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल माध्यम से आयोजित खेलो इंडिया संवाद में भाग लिया। प्रतिभागियों ने युवा पीढ़ी को खेल अपनाने और खेल में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की। चंडीगढ़ के 51 शिक्षण संस्थानों के हजारों विद्यार्थियों और राष्ट्रीय खेल सेवा स्वयं सेवकों ने आज खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पठानकोट स्थित आर्य महिला महाविद्यालय की छात्रा शिव्या ने कहा कि प्रधानमंत्री के संदेश हमेशा युवाओं को विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित रूप से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज आगामी ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अहमदाबाद के सर्किट हाउस एनेक्सी में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्री गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में 450 करोड़ रुपए की लागत से टी सीरीज टैंकों के ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस परियोजना से रक्षा उपकरणों के रखरखाव और उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहाले गए और कई पन बिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया है। एक रिपोर्ट।
4: नेपाल में आई इस भीषण त्रासदी का कारण भूकंप के झटकों से ग्लेशियर फट जाने को माना जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इस बीच काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है +9779851316807 और +9779707 9100750000। विश्व बैंक ने भी प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। इसके अलावा नेपाल में बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया कि बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी हैं। डॉ जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव और काठमांडू और पेचिंग में भारत के राजदूतों के साथ नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि विदेश मंत्रालय इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, पर्यटन संचालकों और परियोजना अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार राहत सहायता प्रदान करने के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम कर रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद हैं और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हुए हैं। भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने कहा है कि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि दोनों राज्य सरकारों के समन्वय से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि दोनों राज्यों में एनडीआरएफ की 20 टीम तैनात की गई है, जिनमें से 9 बिहार में और 11 उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बल की एक टीम तैनात की गई है।
0: यूपी में कुशीनगर एरिया अफेक्ट होता है गोरखपुर के पास, तो एक टीम वहां पर डाइवर्ट कर दी गई थी। एक जो सीडब्ल्यूसी का भी इनपुट था कि उसका इम्पैक्ट वाल्मीकि नगर में बैरेज है गंडक रिवर पे, उसका जो पानी का डिस्चार्ज का फ्लो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। फील्ड में अभी तक फ्लड का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज एनडीआरएफ की जो रिक्वायर्ड तैनाती है वो कर दी है दोनों राज्यों में, और अभी तक हम इस स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं।
1: इस बीच मौसम विभाग ने शनिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। वहीं शनिवार और रविवार को ओडिशा के कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया कि प्याज को 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस महाराष्ट्र के नासिक से रवाना हो चुकी है और लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आज देर शाम या कल सुबह तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इसके पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार पर अपने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जारी न करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि डीए अभी तक जारी नहीं होने के कारण 3 लाख से अधिक राज्य सरकार के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए वार्ता फिर शुरू करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें बातचीत फिर से शुरू करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका बड़ी बढ़त हासिल कर रहा है। उन्होंने ईरान की आर्थिक मुश्किलों का भी उल्लेख किया। इस बीच कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी आज ईरान पहुंचेंगे। वे ईरानी अधिकारियों से मुलाकात कर तनाव कम करने और बातचीत के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत मजबूत स्थिति में बना हुआ है। श्रीलंका ने चायकाल तक दूसरी पारी में 155 रन की बढ़त बना ली है। इससे पहले भारत ने श्रीलंका को उनकी पहली पारी में 290 रन पर ऑल आउट करके फॉलो ऑन दिया है। दो मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 143 अंक गिरकर 77,330 जबकि निफ्टी 36 अंक की गिरावट के साथ 24,171 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध। नेपाल में बाढ़ से लगभग 160 लोगों की मौत, 300 भारतीय समेत 1,000 से ज्यादा लोग लापता। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी। नेपाल बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और कोलंबो में दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने दूसरी पारी में चायकाल तक भारत पर 155 रन की बढ़त बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के लिए ये फरमाइश भेजी है बक्सर से ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष सानवी, कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी, मीनूरा श्रीमाली, घंटा घर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमंद्र और सन्मति पंचोलिया, और मुरादाबाद से जफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद, इन सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है इजाज़त फिल्म का ये गीत, जिसके लिए आवाज़ है आशा भोसले की, गीतकार हैं गुलजार और संगीत है आर डी बर्मन का।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और ये अगली फरमाइश है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश, जयराज प्लॉट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा, जास्मीन प्रयागराज भट्ट, नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, इन सभी साथियों ने सुनना चाहा है जीवा फिल्म का गीत, जिसके लिए आवाज़ है आशा भोसले, अमित कुमार की, गीतकार हैं गुलजार, संगीत है आर डी बर्मन का।

आपके फरमाइश के लिए ये अगली फरमाइश भेजी है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा, निवान शर्मा, छत्तीसगढ़ दतरेंगी से भागवत प्रसाद वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, पिपरिया से दुर्गाराम साहू, सागर से दिलीप राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। इन सभी साथियों ने सुनना चाहा है आंधे फिल्म का ये गीत, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर, किशोर कुमार की, गीतकार हैं गुलजार, संगीत है आर डी बर्मन का।

0: गणेश भिजी हैं बेरडी से, हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक करमकर, प्राची करमकर, तनु करमकर, मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, सरिता गवाणकर, एकांश गवाणकर और सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता, अर्जुन गवाणकर गवाणकर और नागपुर से वैशाली शैलेश गवाणकर, सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनि गढ़वाकर और ये साथी हैं सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान, जितेंद्र, धर्मेंद्र मालाकार। इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज़ में, अमित खन्ना का लिखा गीत, संगीत है राजेश रोशन और फिल्म है बातों बातों में।
1: सुनिए सुनिए
2: कहिए कहिए ना

और पिंडरस छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, दिव्यांश श्रीवास्तव, धामणी मनोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती, संदेश डेरे, आदर्श डेरे, किरण डेरे, प्रज्वल डेरे, अनुत डेरे, और बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा, सारागांव चटौदा से सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी, कृति वर्मा। तो सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर थोड़ी सी बेवफाई इस फिल्म का गीत।

का। आपकी फरमाइश के लिए ये फरमाइश है फिल्म थोड़ी सी बेवफाई, इस फिल्म के गीत के लिए। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार की, गीतकार हैं गुलजार और संगीत है खयाम का। सुनना चाहते हैं बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित

0: इसके साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जबलपुर में 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले टी सीरीज टैंक ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। ये कार्यक्रम व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल और भारत की ओर से प्रस्तावित 2036 ओलंपिक खेल की मेजबानी की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। श्री शाह एक दिन के गुजरात दौरे पर हैं। ओंकारेश्वर स्थित एकात्म धाम में पंचायतन मंदिर के निर्माण के लिए आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भूमि और शिला पूजन किया। मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी के साथ विधि विधान से मंदिर निर्माण की नींव रखी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के स्नेह और अटूट विश्वास का प्रतीक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 29 अगस्त को बालाघाट जिले में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में शामिल होंगे। रक्षाबंधन के अवकाश के कारण इस बार प्रदेश भर में शनिवार को ये अभियान आयोजित किया जाएगा और प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और उत्तरी हिस्से के 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आपको बता दें आज शाम की सभा के कार्यक्रम। 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी जबलपुर का योगदान होगा। 5:33 पर, 6:30 पर, 8:15 पर, रात 9:30 पर सुनिए फिल्म संगीत। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम होगा शाम 6 बजे। रात 8 बजे सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।

10 बजकर 30 मिनट पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा राग रजनी। इसमें आप सुनेंगे विदुषी गंगूबाई हंगल का राग शुद्ध कल्याण में ख्याल गायन। और आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम होगा किसान वाणी 7 बजकर 30 मिनट पर। इसमें आप सुनेंगे ओबी आधारित कार्यक्रम उद्यानिकी फसलों से किसानों एवं शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार के अवसर। प्रतिभागी होंगे राजकुमार सगर, श्रेयल सी भाकोरिया, श्याम सिंह कुशवाहा, हेमंत कुशवाहा। ये जानकारी आज शाम के सभा के कार्यक्रम होगी। मीडियम वेव 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। 3 बजकर 2 मिनट हुए हैं, हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, मगर इस बीच डीटीएच पर हमारे प्रसारण को आप सुनेंगे। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान है। पहले सुनिए अशोक कुमार झारिया के स्वर में लोक

इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान था। लीजिए आप सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान है। पहले सुनिए गजल किशोर मिश्रा के स्वर में।

ये था सुगम संगीत का कार्यक्रम और ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान था। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। सुनते हैं चित्रपट संगीत।

अकेले हम अकेले तुम इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना उदित नारायण अलका याग्निक के स्वर में। गीतकार थे मजरूर सुल्तानपुरी, संगीत था अनु मलिक का।

आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसके लिए आवाज़ है कुमार शानू अलका याग्निक की। फिल्म है बरसात और गीत लिखा है समीर ने, संगीत है नदीम श्रवण का।

इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है, फिल्म है तुमसा नहीं देखा। इसके लिए आवाज़ है श्रेया घोषाल के, गीतकार हैं समीर, संगीत है नदीम श्रवण का।

ये गीत था फिल्म मिस्टर आशिक से, जिसके लिए आवाज़ थी कुमार सानू की। गीतकार थे इंदिवर, संगीत था जतिन ललित का। और इसके साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ।

0: डीटीएच ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के साथ देश का संबंध हमेशा राष्ट्रहित सर्वोपरि के हितों के अनुरूप होना चाहिए। भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षुओं ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि वे ये सुनिश्चित करें कि भारतीय दूतावास आवश्यकता के समय नागरिकों के लिए हमेशा उपलब्ध रहें। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी भारतीयों की स्थिति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रयास जारी हैं। डॉ जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव और काठमांडू और बीजिंग में भारत के राजदूतों के साथ नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रदेश के जबलपुर में 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले टी सीरीज टैंक ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। ये कार्यक्रम व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 29 अगस्त को मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान में बालाघाट जिले में शामिल होंगे। शुक्रवार को रक्षाबंधन का अवकाश होने के कारण इस बार 29 अगस्त शनिवार को संपूर्ण प्रदेश में जनविश्वास अभियान आयोजित होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। और कश्मीर के सभी 10 जिलों के हजारों छात्रों, खिलाड़ियों और अन्य लोगों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअल सत्र खेलो इंडिया डायलॉग खेल की बात पीएम के साथ में भाग लिया। इस संवाद का मुख्य केंद्र श्रीनगर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान था, जहां प्रतिभागियों ने नशा मुक्ति की शपथ ली और प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: कि केंद्र सरकार ने देश में मजबूत खेल व्यवस्था और बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 36,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लापता। बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी। डॉक्टर जयशंकर ने नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव और काठमांडू और बीजिंग में भारत के राजदूतों के साथ नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल सन लाइफ फाइनेंशियल और कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड समेत कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता की। कर्नाटक सरकार ने विद्यार्थियों से जुड़े मुद्दों पर विचार करने और शिक्षा सुधारों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल की उप समिति का गठन किया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। मुंबई का जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह विश्व का सबसे तेजी से विकसित होने वाला कंटेनर बंदरगाह बनकर उभरा है। इस बंदरगाह ने इस वर्ष की पहली छमाही में कंटेनर परिवहन में 13.6% की वृद्धि दर्ज की। अमेरिका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्म पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए $18 अरब तक का भुगतान करेगी। और मौसम विभाग ने शनिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तो ये थे अब तक के FM रेनबो पर मुख्य समाचार।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

बहुत स्वागत है आप सभी का संदेश टू सोल्जर्स में। ये एक ऐसा खास कार्यक्रम है जो वर्षों से हमारे जो जवान हैं उनकी वीरता, उनके अनुशासन, उनके समर्पण, उनके त्याग की कहानियां आपके बीच लेकर के आता रहता है। उन्हीं की जुबानी आप सुनते हैं उनकी कहानी। लेकिन आज हम आपकी आवाज, आपके दिल की आवाज उन सीधे उन सैनिकों तक पहुंचाएंगे जो इस समय शायद किसी बर्फीली चौकी पर हैं, किसी तपती सीमा पर हों, किसी जहाज पर, समुद्री जहाज पर, या किसी ऑपरेशन के बीच खड़े हैं। आज का संदेश टू सोल्जर्स पूरी तरह समर्पित है आपके संदेश, आपकी दुआओं, आपके गर्व की। और गर्व की बातें जो उनकी होती हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आज संदेश टू सोल्जर्स में। मेरा नाम है शैली भाषांजलि, इसी अभिमान की मैं बात कर रही हूँ।

और हमारे सैनिक अपने परिवार से महीनों महीनों बहुत दूर रहते हैं, लेकिन हमारी ओर से एक छोटा सा संदेश जब पहुंचता है तो शायद उनका हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तभी तो एक सैनिक ने कहा था कि सरहद पर सबसे मुश्किल रातें तब आसान होती हैं जब लगता है ना कि देश वाले हमें याद कर रहे हैं। ये बात सच है, क्योंकि देशवासियों का जो प्यार है, भरोसा है, उससे भी लड़ते हैं वो। तभी तो सियाचिन में तैनात एक जवान ने लिखा था ये संदेश कि माँ, यहाँ तापमान -30 है, लेकिन जब कोई बच्चा पत्र लिखता है, संदेश भेजता है कि भैया आप हो इसलिए हम सुरक्षित हैं, तो मेरे ना दिल का तापमान गर्म हो जाता है। बस यही भाव, यही रिश्ता हम जोड़ना चाहते हैं। 9868107070 हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है और कार्यक्रम है बहुत खास, संदेश टू सोल्जर।

वेलकम बैक टू संदेश टू सोल्जर्स इस शो में आज आपके साथ हूँ मैं शैली भाषांजलि। अमूमन हमारे साथ होते हैं देश के जाबाज जो रूबरू हमारी बातचीत होती है उनसे आप सुनते हैं और गर्व करते हैं, लेकिन आज आपका गर्व पहुंचाने का काम मैं कर रही हूँ, सूत्रधार हूँ। 9868107070 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो आपका आपके दिल का संदेश है, जो भी आप महसूस करते हैं ज़रूर लिखिएगा। युद्ध के मैदान में देश की रक्षा करने वाले हमारे सशस्त्र बल मुश्किल की हर घड़ी में तो साथ खड़ाई दिखाते थे, लेकिन सिर्फ सीमा पर ही नहीं, बाढ़ हो, भूकंप हो, प्राकृतिक आपदा हो, राहत, बचाव, पुनर्वास, इन सब में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। याद दिलाना आवश्यक है, महसूस करना हर पल आवश्यक है। कई बार वे वहां पहुंचते हैं जहां पहुंचना भी एक चुनौती होता है। और मीरा जी लिखती हैं, पता नहीं कहां से लेकिन लिखी है, बहुत पते की बात लिखी है कि इंडियन आर्म फोर्सेस आप सरहदों की रक्षा नहीं करते, हमारे सपनों की भी रक्षा करते हैं।

संदेश टू सोल्जर्स जिस कार्यक्रम में हम दोहराने की ये कोशिश करते हैं, बात आप तक पहुंचाते हैं कि जब भी कोई क्षेत्र आपदा में घिर जाता है तो सशस्त्र बल केवल राहत सामग्री नहीं पहुंचाते बल्कि लोगों को कठिन समय से निकाल कर भी लाते हैं। फिलहाल का समय बहुत ही कठिन है नेपाल के लिए भीषण बाढ़ की वजह से, लेकिन भारत एक तत्पर, एक सजग, एक देश की तरह अपने सशस्त्र बल की मदद से इनका बचाव भी करते हैं, रेस्क्यू भी करते हैं, कई जिंदगियों के लिए उम्मीद भी बन जाते हैं। और हमारे सशस्त्र बल की सेवा केवल देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है, ये हम जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो अभियान है उसमें वे हाथ बढ़ाते हैं और काम करते हैं, क्योंकि वर्दी का अर्थ केवल शक्ति नहीं, अनुशासन, साहस और मानवता सबसे बढ़कर।

बहुत स्वागत है आप सभी का संदेश टू सोल्जर्स में। मेरा नाम है शैली भाषांजलि और आज सोल्जर्स की ही बातें कर सकते हैं, बहुत गर्व के साथ बातें करते हैं। अब जो पूरा देश जो बहनें हैं अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधने की तैयारी में लगी हुई हैं, लेकिन कुछ भाई अपने घरों से बहुत दूर हैं, देश की सीमाओं पर हैं। किसी बहन की राखी आज पहुँचेगी शायद डाक से उनके पास, किसी की वीडियो कॉल पर बंधेगी और किसी बहन की कलाई खाली होगी, भाई की कलाई खाली होगी, क्योंकि उनका भाई देश की रक्षा में तैनात है। लेकिन सच तो यह है कि सैनिक सिर्फ अपनी बहन की रक्षा नहीं करता, पूरे देश की रक्षा करता है। आज संदेश टू सोल्जर्स में देश के हर वीर जवान को एक राखी, एक अनदेखी राखी, वो धागा आपकी कलाई तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन देश की हर बहन की दुआ आपके साथ है।

वेलकम बैक टू संदेश टू सोल्जर्स. और ये कार्यक्रम तभी पूरा होता है जब आप जुड़ते हैं अपने मैसेजेस के साथ, अपने भाव के साथ. शांताचारा बाडिगर कोकोनूर, कोकानूरू, कोकानूर, एम आई राइट? ओके. भाव की तरफ ध्यान दीजिएगा, शब्दों पे क्षमा चाहूँगी. लेकिन दावानागरे से लिखते हैं कि कार्यक्रम इसलिए वंडरफुल होता है ना शांताचारा जी, बिकॉज सैनिकों के बारे में होता है. आप जुड़े हैं इस शो के साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और हमारे साथ शंकर जी जुड़े हुए हैं ककरूला द्वारका से, एंड ही सेंडिंग हिज हार्टिएस्ट लव टू द इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टुवर्ड्स द नेशन. एंड बहुत सारी प्यारी बातें, डिवोशन, डेडिकेशन की उनको उनके बारे में लिखी है, एक्सप्रेस की है अपनी फीलिंग्स, और सल्यूट करते हैं उनको. यशवंत जी लिखते हैं अपने भाव के साथ. और मंजू भाटिया जी कहती हैं कि हमारी सीमा पर तैनात सभी सैनिकों को राखी की हार्दिक शुभकामनाएं, अपने हर मिशन में आप कामयाब हो, यही हम चाहते हैं. जी हाँ, रक्षाबंधन एक ऐसा धागा जिसमें विश्वास बंधा है, सुरक्षा का वादा है, वो ये करते हैं. इसलिए आज आपकी आवाज़ उन तक पहुँचे, आपकी दुआ, आपका गर्व, आपका सम्मान, आपके भाव, आपके शब्द, इसी उद्देश्य से तो ये शो बना है. मेरा नाम है शैली भाषांजलि. सिर्फ और सिर्फ यही काम है कि आपकी बात को उन तक जोड़ूं और पहुंचाऊं.

आकाशवाणी के इस चैनल में आप जुड़ रहे हैं संदेश टू सोल्जर से। बहुत ही ख़ास दिल के करीब यह कार्यक्रम होता है। हम जानते हैं कि सब लोग अपने अपने हिस्से का काम करते हैं, कोई धूप में तपकर, कोई छांव में रहकर अपने हिस्से की ज़मीन कमा रहा है, रोटी कमा रहा है, थकता है, मुस्कुराता है, चलता है, फिर लग जाता है। लेकिन स्पेशली उनकी बात करना चाहूँगी, उन माताओं को नमन करना चाहूँगी जिन्होंने देश को अपने बेटे दिए हैं, उन बहनों को सलाम करना चाहूँगी जो भाई के लौटने का इंतज़ार करती हैं। स्पेशली जब राखी आती है तो उनके इंतज़ार में बहुत ही एक तत्परता बन जाती है। उन सैनिकों को प्रणाम करूँगी जिनकी वजह से हम त्यौहार मना पाते हैं। और यही बात कहते हैं अनिल जी, अनिल कुमार, गेंडा खाली, चिलिया घोल, टनकपुर ज़िला, चंपावत, उत्तराखंड से इन्होंने लिखा है और यही कहा है कि रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं तो दी है, पर ये भी कहा है कि सुरक्षा के साथ हम कोई भी फेस्टिवल मना सकते हैं उनकी वजह से। हैप्पी राखी, हैप्पी हैप्पी लॉट ऑफ विशेज ही इज रिटन। दिस इज श्री रंगम राजेश फ्रॉम तमिलनाडु। आप सुनिए ये गीत, हम फिर आते हैं। मैसेजेस का सिलसिला यहाँ बन चुका है 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। संदेश टू सोल्जर्स में आप अपने संदेश भेज दीजिए। दिस इज द प्रोग्राम विच रीचेस स्ट्रेट टू द सोल्जर्स एंड द हार्ट्स।

चूंकि ये कार्यक्रम प्राइमरली आपके संदेश, आपके दिल की भावना और आवाज़ से जुड़ा हुआ है, इसीलिए जो सिलसिला मैसेज उसका यहाँ है वो आप तक ज़रूर पहुँचाती हूँ। यहाँ पर आनंद मोक्षी ने मुंबई से लिखा है, बहुत शुभकामनाएं दी है रक्षाबंधन की। और ये इन्होंने बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं कि इन्होंने, यश सिंधे ने लिखी है। इन्होंने लिखा है कि सरहद पर जो खड़े हैं सीना ताने, वही तो इस पावन राखी का असली मान है। जो घर नहीं आ सकते वतन के खातिर, उन भाइयों के लिए दिल से दुआ आती है, बिल्कुल आती है दिल से। रेशम का धागा भले सरहद तक ना पहुंचे, पर हर बहन की दुआ आपको महफूज रखती है। बिल्कुल सही बात है, न जाने कैसे आपके दिल तक पहुंच जाती है। और यही बात यश शिंदे जी ने लिखी है। और हमारे पास मैसेज आया विपिन नेहरा का देहरादून से, एंड ही इज़ ऑल्सो विशिंग यू नो वॉर्म विशेज ही इज़ सेंडिंग टू ऑल द सोल्जर्स। और ये शो, अच्छा, बहुत धन्यवाद अनिल कुमार जी, इसी तरह से प्यार से आप जुड़े रहिए हमारे शो से, संदेश टू सोल्जर्स, ये हमारा शो है। सोल्जर्स की ईशान में हमेशा जी करता है कि कुछ ना कुछ बोले। बहुत सारी बातें उन पर लिखी गई हैं, लेकिन ये बात बहुत प्यारी लगती है मुझे। शायद आपने पढ़ा होगा स्कूल में, जानते होंगे इसके बारे में कि देवों के सिर पे चढ़ जाऊं, भाग्य पे इठलाऊं, ये चाह नहीं है, बस तोड़ लेना वनमाली मुझे, उस पथ पर फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक।

और इसी के साथ ही हम रसराज जी, प्रीतम जी और राजकुमार संतोषी जी का, जी के मैसेज का बहुत बहुत स्वागत करते हैं संदेश टू सोल्जर्स में। और साथ ही बहुत सारे भाव प्रकट होते हैं ना संदेश टू सोल्जर्स के कार्यक्रम में, जब हम आते हैं सूत्रधार के रूप में, आपकी भावनाओं को सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और फिर माइक के माध्यम से उन तक पहुँचाते हैं, तो एक अलग भावना में परिपूर्ण हो जाते हैं। वो बर्फीली हवाओं में जो डटे सैनिक हैं, कभी समुद्र की अनदेखी गहराइयों में तिरंगे की शान उसकी रक्षा करने जो जो नेवी के जाबाज हैं, जो आसमान में सरहदों की जो चौकसी कर रहे हैं, एयरफोर्स के जो शूरवीर, जो पायलट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, इन सभी की अनगिनत कहानियां आप तक आती रहेंगी संदेश टू सोल्जर्स के माध्यम से। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जिस तरह से दिल से आप जुड़ते हैं, उस तरह से दिल से, प्यार से, मन से, भाव से, आदर से हम अपने सैनिकों के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे।

0: बात बच चुके हैं, लीजिए सुनिए आकाशवाणी एफएम रेनबो पर अभी तक के मुख्य समाचार। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि कैलाश मानसरोवर
1: नरेंद्र मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद में देश भर के युवा खिलाड़ियों को संबोधित किया और राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को याद करते हुए कहा कि खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं बल्कि विकसित भारत की ताकत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रदेश के जबलपुर में 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले टी सीरीज टैंक ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। ये कार्यक्रम जबलपुर में आयोजित किया गया जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी मौजूद रहे। इस परियोजना से रक्षा उपकरणों के रखरखाव और उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ओंकारेश्वर स्थित एकात्मधाम में पंचायतन मंदिर के निर्माण के लिए आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भूमि और शिला पूजन किया। पूजन के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से विद्वान भी ओंकारेश्वर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एकात्म धाम में भव्य पंचायतन मंदिर का निर्माण प्रदेश के लिए गौरव और सौभाग्य का विषय है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 29 अगस्त शनिवार को मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में बालाघाट जिले में शामिल होंगे। शुक्रवार को रक्षाबंधन का अवकाश होने के कारण इस बार 29 अगस्त शनिवार को यह अभियान संपूर्ण प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं और विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल गए तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 5:02 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा मित्रों के लिए कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

0: खुशामदीद, नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। युवाओं को प्रेरित और जागरूक करने वाला हमारा खास कार्यक्रम युववाणी लेकर हम हैं आपके रेडियो दोस्त। मैं रेहान
1: और मैं अमीशा पटेल। साथियों, हम स्वागत करते हैं आपका आज के कार्यक्रम में। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे विश्व झील दिवस पर और जानेंगे खेलों का युवाओं के जीवन में कितना ज्यादा महत्व है। साथ ही हम आपको सुनवाएंगे वर्षा ऋतु में होने वाली बीमारियां और उनसे बचाव के उपाय पर आधारित भेंटवार्ता।
0: ये सब कुछ आपके मनपसंद गीतों के साथ। और हाँ दोस्तों, हमारे पास आपके लिए सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न भी हैं।
1: तो साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मूल स्वरूप का डिजाइन किसने तैयार किया है?
0: और आज का दूसरा सवाल है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों, इन सवालों के जवाब हम आपको बताएंगे कार्यक्रम के आखिर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आज की चर्चाओं में। मगर उससे पहले हम शामिल करते हैं हमारे कार्यक्रम का पहला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से। आवाजें हैं मारिया फर्नांडिस, फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन और अभय देओल की।
2: He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy, tan de repente, y da sentido a toda mi vida con tu querer.
3: Name Samcha, name Jana, yo vi tu nemo tse kaha hai, señor.

0: वैसे अमीशा, क्या तुम कभी भोपाल घूमने गई हो?
1: हाँ रिहान, बड़ा ही खूबसूरत शहर है।
0: तो तुम्हें वहाँ की सबसे सुकून भरी जगह कौन सी लगती है?
1: मुझे सबसे अच्छी जगह अपर लेक लगती है, जिसे जनरली हम बड़ी झील के नाम से भी जानते हैं, जो कि भोपाल और सीहोर इन दो जिलों को जोड़ती है।
0: अरे वाह, ये तो कोइंसिडेंस हो गया अमीशा, मुझे भी वही जगह पसंद है। मतलब तुम्हें भी नेचर और झील वाली जगह पसंद है।
1: बिल्कुल ऐसा ही है रिहान, क्योंकि झीलों से आसपास का वातावरण साफ और स्वच्छ होता है, जो हमें मेंटल पीस प्रोवाइड करता है।
0: जी हाँ दोस्तों, झीलें सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं होती, ये पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। साथ ही ये भूजल को बनाए रखने में सहायक होती हैं। कई तरह के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का घर होती हैं। इसी के साथ ये पर्यावरण का संतुलन बनाए रखती हैं।
1: दोस्तों, आज दिनांक 27 अगस्त को हम सभी विश्व झील दिवस के रूप में मनाते हैं। ये झीलें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। इनके किनारे बसे शहरों और गांवों की अपनी अलग पहचान है। लेकिन आज कई झीलें प्रदूषण, प्लास्टिक, कचरे, अतिक्रमण और पानी की कमी जैसी समस्याओं का सामना कर रही हैं।
0: दोस्तों, हम हमेशा सोचते हैं कि झीलों को बचाना सरकार या किसी संस्था की जिम्मेदारी है, लेकिन क्या ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। जब हम किसी झील के किनारे घूमने जाएं, तो वहाँ कचरा ना फैलाएं, प्लास्टिक बोतलें और पैकेट्स पानी में ना फेंकें, दूसरों को भी ऐसा करने से रोकें। छोटी छोटी कोशिशें ही मिलकर बड़ा बदलाव ला सकती हैं दोस्तों।
1: तो दोस्तों, इसीलिए झील दिवस सिर्फ एक दिन मनाने का अवसर नहीं है, बल्कि ये दिन हमें याद दिलाता है कि प्रकृति सिर्फ हमारी जरूरत ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है।
0: बिल्कुल ठीक कहा अमीशा। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गाना, फिल्म बागी से, जिसे आवाज दी है मोनाली ठाकुर और मीत ब्रदर्स ने।

0: साथियों आइए अब हम आपको सुनवाते हैं भेंट वार्ता जिसका विषय है वर्षा ऋतु में होने वाली बीमारियां, कारण, लक्षण और बचाव। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नटराज भट्टाचार्य, जिनसे बातचीत की है रविंद्र दुबे ने।
1: श्रोताओं, प्रकृति अपने गोद में ना जाने कितने रहस्यों को समेटे हुए है और इन रहस्यों को जानने की कोशिश मनुष्य हमेशा से करता आया है। दुनिया प्रकृति की गोद में रंगमंच है और मानव अभिनेता, यानी कि जिंदगी नाटक है और दुनिया रंगमंच, और हम अलग अलग पात्रों का अभिनय कर रहे हैं। इस अभिनय रूप

0: भी संसार में जब बात स्वास्थ्य को लेकर आती है तो हम समय समय पर विशेषज्ञों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी हाँ, बारिशी मौसम, बीमारियाँ, कारण, लक्षण, उपचार, इस विषय पर आज हम बात करेंगे संस्कारधानी के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नटराज भट्टाचार्य जी से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। डॉक्टर साहब, इस मौसम में नमी और जगह जगह पानी भरने के कारण मच्छर और बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं, जिससे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, वायरल बुखार, पेट का संक्रमण यानी डायरिया और ना जाने ऐसी कितनी बीमारियां होती हैं। क्या ये बात सच है? यदि सच है तो आप बताएं कि इस मौसम में कौन कौन सी बीमारियां ज़्यादा होती हैं।
1: जी, ये बीमारियां जो होती हैं पानी ज़्यादा गिरने के कारण या पानी कहीं इकट्ठा हो जाए उस कारण से ज़्यादा होता है
0: जी,
1: एवं ये जो पानी इकट्ठा होते हैं इसमें मच्छर मक्खी पनपते हैं। मच्छर भी जो बीमारियां देती हैं वो कॉमनली मलेरिया देती हैं और डेंगू भी देती हैं, चिकनगुनिया भी देती हैं
0: जी।
1: इसमें दो प्रकार में हम इसको विभाजित कर सकते हैं
0: जी।
1: एक नंबर, जो रात को जो मच्छर काटते हैं यूजुअली वो मलेरिया देती हैं, दिन के मच्छर काटने वाले में डेंगू होता है।
0: ओके डॉक्टर साहब, पहले तो आप ये बताएं कि डेंगू क्या है, जैसा आप अभी आप बता रहे हैं।
1: डेंगू एक वायरस है जो कि मच्छर इसके बीच में ट्रांसमिट करता है, वो आदमी में काटने में एंड जो सफरर है वो आदमी होता है
0: जी।
1: ये वायरस जब शरीर में प्रभाव होता है ये ब्लड के जरिए इन्वॉल्व करता है और बोन मैरो को इफेक्ट करता है
0: जी।
1: बोन मैरो में तीनों सेल सीरीज को इफेक्ट करता है। मैं इसमें डिटेल में जाके मेन जो रहता है उसमें प्लेटलेट काउंट कर रहता है
0: जी।
1: जब वो प्लेटलेट नीचे करता है तो पेशेंट को सिम्टम मिलते हैं, उसमें तेज बुखार आता है, जॉइंट्स पे पेन होता है और कभी कभी बीपी फॉल होता है, जिसको डेंगू शॉक सिंड्रोम के नाम से भी हम लोग जानते हैं
0: जी।
1: ये खतरनाक बीमारी है लेकिन आराम से इसमें रोकथाम की जा सकती है। मलेरिया दूसरा भी, मलेरिया में भी फीवर आता है लेकिन मलेरिया फीवर में एक या दो दिन छोड़ छोड़ के फीवर आता है, जिसमें फीवर ऊपर चढ़ता है एवं नीचे गिरता है, दोनों में इलाज संभव है। मलेरिया में भी दो टाइप की कॉमनली इंडिया में मिलता है, वो है वाइवैक्स मलेरिया, दूसरा है फैल्सीपेरम मलेरिया।
0: अच्छा,
1: दोनों के इलाज में थोड़ा सा अंतर है लेकिन इलाज अगर समुचित रूप से दिया जाए तो क्योरेबल बीमारी है। डेंगू का एज सच कोई क्योर अलग से नहीं है, उसको प्रिवेंट करना पड़ रहा है। अगर उसको प्रॉब्लम ना हो, वायरस अगर प्लेटलेट काउंट ज़्यादा ना आए, यूजुअली रिकवरी होता है मेनली, एंड इसमें प्रिवेंशन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। प्रिवेंशन क्या है? पानी इकट्ठा ना होने दे, अगर वो टायर में, गमले में, कूलर के डब्बे में, उसको रेगुलर चेंज ना करें तो प्रॉब्लम होने का चांस ज़्यादा होता है। अगर इसको रेगुलर हफ्ते हफ्ते में चेंज करते रहें तो ये प्रॉब्लम होने का चांस कंपैरेटिवली कम रहेगा। ये है आपका मच्छर की बीमारी
0: जी।
1: दूसरा आपका जो पानी से होता है वो खाद्य पदार्थ में इन्फेक्शन से होता है, तो थोड़ा बरसात के समय खाद्य पदार्थ में थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना है
0: जी।
1: वाटर बोन यानी पानी से बीमारियां होने वाली उसमें होती है टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए, जो बहुत कॉमन है, जो जबलपुर में भी कुछ फैला था, अभी फिलहाल कंट्रोल नजर आ रहा है।
0: तो
1: ये पानी का अगर उबाल लें करके लें तो होता है
0: जी।
1: घर के अंदर के इन्फेक्शन पानी उबाल के कर सके, बाहर का स्ट्रीट फूड जो है थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए या ऐसे जगह जाना चाहिए जहां बहुत ज़्यादा साफ सफाई मेंटेन किया जा रहा है, अगर वहां नहीं है तो ये बीमारी होने के चांस ज़्यादा होगा। तीसरी बीमारी जो ये बरसात में होता है आर्द्रता के कारण, अभी पानी खूब गिरता है तो टेम्परेचर नीचे उतरता है प्लस ह्यूमिडिटी बढ़ती है, अब इसमें सांस की बीमारियाँ ज़्यादा होती है जिसको हम लोग वायरल फीवर के नाम से जानते हैं। इस वायरल फीवर में दो प्रकार के होते हैं। वायरल फीवर तो नॉर्मल वायरल में तो कोई दिक्कत होती नहीं, नाक बहती है, थोड़ा बहुत आँख में पानी आता है, खांसी आती है। दूसरा होता है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा में लंग्स भी इन्वॉल्व हो जाता है, पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत होती है तो उसमें प्रॉब्लम्स थोड़ी ज़्यादा होती है
0: जी।
1: ये बीमारी किन को होती है? उनको होती है जो छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग लेवल में, जो 60 साल के ऊपर, उनमें ज़्यादा होती है
0: जी, जी।
1: तो उसको प्रिवेंशन किया जा सकता है, तीन तरीके प्रिवेंशन। एक तो घर के अंदर जो अब जो हो नमी ना रखें
0: जी।
1: बहुत सारे दीवारों में फफूंद लग जाते हैं, फंगस लग जाते हैं, उसको अगर साफ सफाई रखें तो ये इन्फेक्शन आराम से नहीं होगा। बाहर जाएं तो गीले होने से बचे, डस्ट एरिया में थोड़ा सा अवॉइड करें। बरसात में भी देखा गया, शुरुआत के बरसात में प्रॉब्लम कंपैरेटिवली ज़्यादा है, एक बार बरसात फ्लो में आ जाए उतनी दिक्कत नहीं होती। शुरुआत में क्या पानी मट्टी में गिरता है, वो सब पोलेंस वोलेंस सब उड़ते हैं, सो इन्फेक्शन होता है। अब इसमें भी हम रोकथाम में आपको ज़्यादा दे रहे हैं क्योंकि रेडियो के माध्यम से रोकथाम में मैं थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा हूं।
0: जी जी,
1: रोकथाम का बेस्ट तरीका ये है कि एक तो गीले होने से बचें, साफ सफाई मेंटेन रखें, पौष्टिक भोजन लें एंड व्यायाम रेगुलर करें
0: जी
1: भोजन अगर पॉजिटिव रहेगा, भोजन जैसे बना हुआ है उस

0: उसको 6 घंटे में ही इस्तेमाल करें, 6 घंटे से ज़्यादा भोजन रखा हुआ उसको इस्तेमाल ना करें, 6 घंटे के बाद भोजन को डिस्कार्ड दे दे, फ्रेश भोजन ले, एक नंबर। एंड हाइजीन मेंटेन करें, खाना पीना ठीक रखें, नींद बराबर होना चाहिए, व्यायाम करते रहें, दिस इज लेवल वन। लेवल टू कर सकते हैं छोटे बच्चों में, बुजुर्गों में, इम्यूनाइजेशन का आजकल जमाना आ गया, जैसे बच्चों में इम्यूनाइजेशन होता है ऐसे बड़ों में भी होता है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दे सकते हैं
1: जी,
0: इन्फ्लुएंजा वैक्सीन देने में आपका प्रिवेंशन हो जाएगा, जरूरी नहीं कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन देने में आपको बीमारी होगी ही नहीं, होगी लेकिन मात्रा इतनी कम रहेगी कि आपको कोई मेजर दवाई लेने की आवश्यकता नहीं आएगी एवं भर्ती होने से बचेंगे। तो एक लेवल टू प्रिवेंशन। लेवल थ्री प्रिवेंशन में आपका इलाज ही लेना होता है, जो कि वो नौबत ना आए तो ज़्यादा ही अच्छा है। तो ये आपका सांस की बीमारी होती, इसमें सांस की बीमारी में उन लोगों में ज़्यादा इफेक्ट होता है जिनको पहले से कोई बीमारी है, जैसे कुछ को एस्मा है, COPD, COPD मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज
1: जी।
0: एस्मा वालों में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखना होता है, क्या है कि गर्मी के समय उनको इनहेलर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसी बरसात आती है ह्यूमिडिटी बढ़ता है, सडनली सांस में दिक्कत आती है और वो सांस की उछाल इतने जम के तकलीफ होती है कि सीधे अस्पताल जाके भर्ती होना पड़ता है, नेबुलाइज करना पड़ता है। अगर उस समय कोई समुचित चेस्ट फिजिशियन या दमा रोग विशेषज्ञ से मिल लें तो वो आपके इनहेलर डिजाइन कर देंगे, जिससे ये प्रॉब्लम नहीं होगी एवं अस्पताल जाने से बचा जा सकता है। ऐसी सेम COPD में बरसात में जैसी आदतें बढ़ती है उनको इन्फेक्शन ज़्यादा होने का चांस होता है, तो एंटीबायोटिक कवरेज देना पड़ता है, प्लस सांस की रिलीफ देने की दवाई देनी पड़ती है। ये नौबत प्रिवेंटेबल है, अगर पहले से अगर एक्शन ले लेंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एवं आप समुचित ठीक रहेंगे। इसका बेसलाइन लेकिन हटाना नहीं है, बेसलाइन यही है कि खाद्य पदार्थ खाना अच्छा खाना है, नींद अच्छी होनी चाहिए एंड व्यायाम रेगुलर रहते रहने चाहिए, चाहे बरसात हो चाहे ठंड हो। अगर ये चीज करते रहें तो डॉक्टर के पास जाने की नौबत कम से कम रहे।
1: डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि बच्चों के लिए या बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे मौसम में वो कैसे बच सकते हैं, कोई बीमारी उनको ना हो?
0: युवाओं में जनरली हम लोग, ये क्यों होता है, ये इम्यूनिटी कम होने के कारण होता है, जैसे बीमारी से लड़ने की क्षमता, युवाओं में जनरली इम्यूनिटी अच्छी होती है
1: जी।
0: तो आमतौर पर वो आसानी से बीमार होते नहीं है, मान लो होती भी तो छोटे मोटे चीज में निकल जाता है। बेस्ट तरीका यही है, भोजन अच्छा होना चाहिए, न्यूट्रिशन अच्छा होने से, और अपना साफ सफाई मेंटेन करना है, हाथ अच्छे से धोना है, नहाना है, हैंड वॉशिंग करने से, हैंड वॉशिंग मतलब हाथ धोने से, इससे इन्फेक्शन नहीं होगा। हैंड वॉशिंग से आधे से ज़्यादा पेट की बीमारियाँ कम हो जाएंगी। लूज मोशन होना है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, टाइफाइड, आपका जॉन्डिस होने का चांस कम हो जाएगा। अगर आप रेगुलर अगर सुबह ब्रश करते समय एक गार्गल कर लें, रात को सोने पहले गार्गल कर लें, तो गले का इन्फेक्शन नहीं होगा। जनरली इम्यूनिटी यंग लोगों में अच्छा होता है तो वो बीमार पड़ते नहीं है। हम केयर करते हैं बच्चों को जिनमें इम्यूनिटी कम होती है, बुजुर्ग हो जाए 60 साल के ऊपर उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो उनको हमको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर देना पड़ता है क्योंकि ये ग्रुप के आदमी जल्दी बीमार पड़ सकते हैं, सो उनको तो मैं एक्स्ट्रा केयर करता हूं। जैसे मान लो गीले होके घर आए तो आप डायरेक्ट आप जाके आप वॉशरूम में आप अपने हाथ पैर धोया, आपने आपके गार्गल किया, गार्गल करके हाफ कप चाय ले लिया, ऐसा कुछ ले लिया, तो ये गला के इन्फेक्शन नहीं होगा। नहीं तो यूजुअली हमारे पास क्लिनिक्स में आते हैं कि साहब गीले हो गए थे, दूसरे दिन बीमार पड़ गए। ये जवान लोगों में होने का कोई कारण बनता नहीं है, मतलब ये अगर ये इजीली प्रिवेंटेबल है, इसमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, थोड़ा सा चिकनगुनिया के बारे में भी हमारे सुनने वालों को बताएं आप।
0: चिकनगुनिया एक ये मच्छर से ही बीमारी फैलती है, इसमें जॉइंट पेन्स होता है, सीवियर जॉइंट पेन्स होता है एंड ये जॉइंट पेन्स होने के कारण फीवर हाई ग्रेड विद जॉइंट पेन्स आता है। इसमें हम ब्लड टेस्ट करते हैं, चिकनगुनिया IgM एंटीबॉडीज अगर ज़्यादा मिलती है तो चिकनगुनिया कन्फर्म होता है। लेकिन ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, कुछ कुछ लोगों में 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है, कुछ लोगों में ये जॉइंट पेन्स एक्स्ट्रा चलता है, लंबा चलता है, तो वहाँ हमें पेन किलर्स देने की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा लंबा ट्रीटमेंट। इसमें बीमारी कंट्रोल करने का तरीका यही है कि मच्छर काटने से बचना है। अब मच्छर काटने से बचने में 2-3 तरीके, बहुत मुख्य में प्रिवेंशन में ध्यान दे रहा हूँ, बचने में 3 तरीके। एक नंबर मस्कीटो नेट्स यूज करना है, दूसरा फुल स्लीव के कपड़े पहनना है, मैंने पूरे बाहें वाले शर्ट बूहे फुल पैंट हाफ पैंट नहीं पहनना है, जिससे मस्कीटो बाइट का चांस कम हो। मान लो फिर भी अगर हो रहा है तो बाहर एंटी रिपेलेंट, मच्छर एंटी रिपेलेंट स्प्रे आता है, उस स्प्रे लगा सकते हैं, ऑइंटमेंट लगा सकते हैं ताकि मच्छर आपको ना काटे।
1: जहां तक डॉक्टर साहब आपने खान पान की बात की
0: जी,
1: तो क्या खान पान का पीलिया रोग से भी कोई संबंध है क्या?
0: डेफिनेटली है। पीलिया रोग 2 तरीके से होता है
1: जी।
0: ये हेपेटाइटिस वैसे 5 प्रकार का है, ABCDE
1: जी।
0: हम मेनली ए पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि वो वाटर बोन डिजीज में
1: जी।
0: अब वो खाने से भी ज़्यादा, खाना अगर दूषित होगा
1: जी
0: तो हो सकता है, यूजुअली वो फुल्की

0: की खाने वालों में पानी दूषित होता है, पानी दूषित होने से भी हो सकता है। हेपेटाइटिस ए अंदर गया ज़्यादा मात्रा में और अपना पानी दूषित रहा तो ये हेपेटाइटिस में पनपता है, आपको बुखार आता है, ठंड लग के फीवर भी आता है, उल्टियाँ होती हैं, आँख पीलापन आता है, पेशाब गाढ़ा पीला होता है। इसमें डॉक्टर आपका चेक करके, LFT चेक करके, लिवर फंक्शन टेस्ट चेक करके बताता है एंड इवन ट्रीटमेंट करते हैं। नॉर्मली ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, ठीक भी हो जाता है। रेस्ट करना इज द मेन, खाना आपको संतुलित लेना पड़ेगा, पौष्टिक लेना पड़ेगा और डॉक्टर जो दवाई देगा उसमें ठीक हो जाता है। रेयर फल्मिनेंट हेपेटाइटिस होता है, रेयर मतलब बहुत ही कम मात्रा में होता है। जब ऐसा ज़्यादा दिक्कत होती है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेना, वो आगे का आपका इलाज आपको देख के।
1: डॉक्टर साहब, चलते चलते युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: युवाओं के लिए ज़िंदगी बहुत प्यारी है, भगवान ने दिया है, उसको मेंटेन करके चलना है। जैसे हम कपड़े खरीदते बाजार से, उसको नया रखते हैं, हैंगर में रखते हैं, धोते हैं, प्रेस करते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, ऐसे ही शरीर को भी रखना है। आप संतुलित भोजन लीजिए, जो आप सिस्टम में खाते हैं अपना खाइए, एक्सरसाइज बराबर करिए, बराबर नींद लीजिए, आपको कोई दिक्कत होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमम रहेगा। जैसे हम लोग बाकी सब कोई नया आइटम लाते हैं, कपड़े लाते हैं, TV लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, उसको साफ सुथरा रखते हैं, ऐसी बॉडी को भी अगर एक्सरसाइज करते रहें, संतुलित भोजन लें और नींद बराबर लें, प्रॉब्लम होने का चांस एब्सोल्यूट मिनिमम है।
1: डॉक्टर साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे सुनने वालों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, जिसका विषय था वर्षा ऋतु में होने वाली बीमारियां, कारण, लक्षण और उनके बचाव। विशेषज्ञ थे डॉक्टर नटराज भट्टाचार्य, जिनसे बातचीत की रविंद्र दुबे ने।
3: तो साथियों, चलिए अब सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म गुड न्यूज से, जिसमें आवाज दी है अरिजीत सिंह और रोचक कोहली ने।

0: रिहान एक बात बताओ, क्या तुम्हारे हिसाब से आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में युवा खेलों के लिए पर्याप्त समय निकाल पा रहे हैं?
1: अमीषा, सच कहूँ तो नहीं। पढ़ाई, नौकरी और दूसरी जिम्मेदारियों के बीच खेल कहीं पीछे छूट जाते हैं। ऊपर से मोबाइल और सोशल मीडिया में भी काफी समय यूं ही निकल जाता है।
0: हाँ, ये बात तो सही है। साथियों, खेल सिर्फ खाली समय बिताने का माध्यम नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध हमारी सेहत और सोच दोनों से है।
1: बिल्कुल सही कहा अमीषा। तभी तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि 5 से 17 साल की उम्र के बच्चों और किशोरों को रोज कम से कम 1 घंटे शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए।
0: अच्छा, यानी दोस्तों, रोज थोड़ा समय खेल या किसी शारीरिक गतिविधि के लिए निकालना वाकई जरूरी है। तो दोस्तों, खेलिए, सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। और सुनिए आज के कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है चेन कुली की मेन कुली से, जिसमें आवाज दी है के और सलीम मर्चेंट ने।

0: तो दोस्तों अब वक्त हो गया है आपको कार्यक्रम की शुरुआत में पूछे गए सवालों के जवाब बताने का।
1: आज का हमारा पहला प्रश्न था, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मूल स्वरूप का डिजाइन किसने तैयार किया है, जिसका उत्तर है पिंगली वेंकैया ने।
0: और आज का दूसरा सवाल था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है, जिसका उत्तर है 182 मीटर। तो दोस्तों इसी के साथ अब हम कार्यक्रम की आखिरी कड़ी में आ पहुंचे हैं और वक्त हो चला है आपसे रुखसती लेने का। मगर जाने से पहले आपको बताता चलूं कि यारों, एक तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए भी हमें बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। तो अपना हौसला कभी कम मत होने दें और हमेशा आगे बढ़ते रहें।
1: इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का युवाणी कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। अब अपने रेडियो दोस्त अमीषा पटेल और
0: रिहान को दीजिए अनुमति कार्यक्रम समाप्त करने की।
1: स्वस्थ रहें, मस्त रहें, नमस्कार।
2: आकाशवाणी जबलपुर के योगदान के अंतर्गत कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण अभी किया जा रहा था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद कृपया प्रतीक्षा करें।

0: या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
3: पानी के छींटे व्यर्थ में ना उड़ाएं।
2: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
3: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
2: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
3: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
2: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
3: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
2: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
3: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
2: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
3: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
2: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
3: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
4: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे,
3: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
2: समय है पानी बचाने का,
3: पानी का मोल समझने और समझाने का।
2: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश, ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं वरुण जैन और राघव चैतन्य की आवाज़ों में, फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया से। इंद्रनील ने इस गीत को लिखा है और संगीत है सचिन जिगर का।

मोहम्मद फैज़ की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही से, जानी और समीर अनजान के बोल, साथ ही जानी और आदेश श्रीवास्तव का संगीत। श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का, अरिजीत सिंह की आवाज़ में। आइए सुनते हैं फिल्म ज़रा हटके ज़रा बचके का ये गीत। अमिताभ भट्टाचार्य की शब्द रचना है, धुन बनाई है सचिन चिगर ने।

0: श्रोताओं, फिल्म एनिमल के इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल ना करें। क्या आप जानते हैं कि पॉलीथीन की ये थैलियाँ कभी नष्ट नहीं होती, जमीन में गाड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं, और यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं न केवल वायु को प्रदूषित करता है बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अभी से करें पॉलीथीन बैग्स को टाटा बाय बाय। खरीदारी के लिए कपड़े का थैला लेकर जाएं। पॉलीथीन बैग्स को हटाना है, धरती को बचाना है।
1: प्लास्टिक पॉलीथीन का छोड़ो साथ, प्रकृति से मिलाओ हाथ। प्लास्टिक पॉलीथीन थैलों का उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति के लिए है रोग। खरीदारी करते समय कपड़े से बना थैला हमेशा साथ रखें। यदि पर्यावरण बचाना है, पॉलीथीन दूर हटाना है।

वह परी के हितों के अनुरूप होना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि वे ये सुनिश्चित करें कि भारतीय दूतावास आवश्यकता के समय नागरिकों के लिए हमेशा उपलब्ध रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने आने वाले महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी कीमतों को कम करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित और लक्षित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। नेपाल की सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की नेता विदुषी राणा ने भीषण प्राकृतिक आपदा के बाद नेपाल के साथ खड़े होने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है और राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रक्रम में पारित आदेश के अनुपालन में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स समिति का गठन किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार समिति में भारसाधक सचिव पर्यावरण को अध्यक्ष समन्वयक बनाया गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 6 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं श्रोताओं आज का सुविचार। इसे भेजने वाले हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी। लिखते हैं,
2: सत्य की राह भले कठिन हो लेकिन मंजिल हमेशा उजाले तक पहुंचाती है। झूठ कुछ पल चमक सकता है पर सत्य सदा सम्मान और विश्वास दिलाता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके द्वारा भेजे गए संदेश। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत और गुरकीरत राहुल के साथ गुरशब्द सिंह राहुल जी का।
2: तहसील ठियोग जिला शिमला से सूरज चौहान जी।
0: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी ने लिखा है, आज उमंग कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के जीवन, संघर्ष और राष्ट्रभक्ति से जुड़ी अत्यंत रोचक

0: प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी सुनने का अवसर मिला।
1: ये भी जानिए, मैं ये जानकर गर्व हुआ कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जैसे ओजस्वी पुकार और जय हिंद जैसे अमर राष्ट्रनाद को जन जन तक पहुंचाने में नेताजी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
0: उनका अदम्य साहस, अटूट देश प्रेम और बलिदान आज भी प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए अजीत जी और विमलेश जी और कार्यक्रम की पूरी टीम का हार्दिक धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। लिखा है, आपकी संपूर्ण टीम को बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने वाले कार्यक्रम के निर्माण हेतु हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के देश सेवा सर्वोपरि के सिद्धांत को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से श्रेष्ठ साबित करने वाला प्रेरक प्रसंग सुनकर मन गदगद होकर उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। आपको हार्दिक आभार और धन्यवाद।
1: आपको भी हार्दिक आभार संदेश भेजने के लिए। ग्राम नगर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। जैसा हर बार हम निवेदन करते हैं, इस बार भी करेंगे कि जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, इस सप्ताह पिछले दो दिनों में हमने बात की भारत के दो अनोखे गांवों की। आज एक बार फिर से हम लेकर आए हैं एक और रोचक गांव की जानकारी। तो विमलेश जी, आज अपनी ज्ञान यात्रा में हम कहां चल रहे हैं?
1: अजीत जी, चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्य की ओर और चलते हैं एक गांव में जहां मानो बारिश रुकना ही भूल गई हो।
0: क्या बात है, जहां मानो बारिश रुकना ही भूल गई हो। अच्छा, ऐसा भी कोई गांव है? कोई मजाक कर रहे हैं आप?
1: नहीं नहीं अजीत जी, बिल्कुल सच। ये वो जगह है जहाँ के छाते भी कहते हैं वर्षा रानी कभी तो रुको।
0: क्या बात है, वर्षा रानी कभी तो रुको।
1: जी चलिए, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछते हूँ, बताइए ये कौन सी जगह है?
0: अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कि वर्षा भी रुकना भूल जाती है तो मुझे याद आ गया, वो जगह है मौसिन राम, ये मेघालय राज्य में है।
1: बिल्कुल सही जवाब। अच्छा तो जरा श्रोताओं को ये तो बता दें कि कितनी बारिश होती है वहाँ।
0: विमलेश जी, यदि यूं ही बता दूं ना कि वहाँ की औसत सालाना बारिश कितनी होती है तो जानकारी में वो मजा नहीं आएगा
1: जी।
0: तो पहले मैं बताता हूँ कि भारत के कुछ और शहरों में बारिश कितनी होती है
1: जी।
0: जैसे दिल्ली की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 650 मिलीलीटर,
1: चेन्नई की लगभग 1400 मिलीमीटर और मुंबई की लगभग 2200 मिलीमीटर।
0: और यदि कोलकाता की बात करें तो ये लगभग 1600 मिलीमीटर है। तो अब सुनिए कि मौसिन राम मेघालय की औसत सालाना वर्षा कितनी है
1: जी।
0: तो यहाँ की सालाना औसत वर्षा है 11900 से लेकर 12000 मिलीमीटर तक
1: जी।
0: यानी यदि इसे मीटर में मापें तो औसत सालाना बारिश लगभग 12 मीटर के आसपास है।
1: 12 मीटर यानी अगर इतना बारिश का पानी जमा हो जाए तो 4 मंजिला मकान की ऊंचाई के बराबर होगा
0: जी। जी तो विमलेश जी, अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि चेन्नई, मुंबई और अन्य शहरों की अपेक्षा यहाँ बारिश कितनी होती है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि यहाँ पर 1200 मिलीमीटर की बात हम कर रहे हैं। तो आपने ठीक कहा, 12 मीटर यानी इतना पानी यदि जमा हो जाए तो 4 मंजिला मकान की ऊंचाई के बराबर होगा। हालांकि इतना पानी वहाँ जमीन पर लगातार जमा नहीं रहता, लेकिन जरा सोचिए विमलेश जी, आसमान से हर साल करीब 12 मीटर यानी 39 कह लीजिए या तो 40 फीट पानी बरसता है।
1: आपने बड़ी अच्छी तरह से इसकी तुलना की है, अब समझ में आया कि कितना पानी वहाँ बरसता है। तो अब एक और मजेदार सवाल, वहाँ के लोग सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते होंगे, चाय या मौसम का हाल?
0: शायद दोनों ही, लेकिन उनके लिए बारिश कोई खास घटना नहीं है, ये तो उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा है
1: जी। अब कुछ और मजेदार बातें जानते हैं अजीत जी, वहाँ अनाज का भंडारण और कपड़ों को सुखाना तो बहुत बड़ी समस्या होगी, वहाँ ये काम कैसे होते हैं?
0: विमलेश जी, बड़ा अच्छा और उपयोगी प्रश्न आपने पूछा। वहाँ कपड़ों को सुखाने के लिए पारंपरिक रूप से टिन या लोहे की पेटियाँ होती
1: जी,
0: जिन्हें आग जलाकर गर्म रखा जाता है। भीगे कपड़े उन्हीं गर्म पेटियों में सूखते रहते हैं।
1: और अनाज का भंडारण वे धान के पुरालों या पुआलों में रखकर करते होंगे, ये उनके पारंपरिक तरीके हैं
0: जी।
1: तो जी जी, अब बात करते हैं उनके घरों की। घरों को भी भारी बारिश को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। उस इलाके में बहुत से ऐसे घर मिल जाएंगे जो बांस के खम्भों पर टिके हुए हैं। वहाँ रास्तों पर पानी, फिसलन और कभी कभी भूस्खलन भी बहुत बड़ी चुनौती है। बता दें कि खासी जनजाति का मुख्य भोजन चावल है और जादू यहाँ का पारंपरिक व्यंजन है।
0: इंग्लिश जी, मन में एक सवाल और आता है कि वहाँ बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे?
1: अजीत जी, ऐसा नहीं है कि वहाँ बारिश के कारण स्कूल बंद रहते हैं, भूस्खलन और तेज तूफानों के समय विशेष सावधानी बरती जाती है। लेकिन वहाँ बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाते हैं। दिल्ली और NCER शहरों में स्कूल जाते समय बच्चे सोचते हैं आज बारिश होगी तो क्या होगा, जबकि
0: मौसिन राम में बच्चे सोचते होंगे आज कितनी बारिश होगी, विमलेश इतनी बारिश के बाद वहाँ की प्रकृति कैसी होगी।
1: अद्भुत, चारों तरफ हरियाली, पहाड़, झरने, धुंध और गुफाएं, मानो प्रकृति ने खुद को हरे रंग में रंग दिया हो। एक बात और, वहाँ लगातार होने वाली बारिश के कारण सामान्य पुल बहुत अधिक नहीं टिकते, इसलिए उस क्षेत्र और मेघालय राज्य में पेड़ों की जड़ों से भी पुल बनाए जाते हैं।
0: जी हाँ, इन्हें लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है। यहाँ पेड़ों की जीवित जड़ों को वर्षों तक दिशा देकर मजबूत पुल का रूप दिया जाता है। ये पुल कभी नहीं टूटते।
1: जी,
0: यानी विमलेश जी, सब कुछ सुनकर ऐसा लगता है कि वहाँ के लोग प्रकृति को हराने की कोशिश नहीं करते।
1: जी बिल्कुल सही कहा अजीत जी, वे प्रकृति के साथ जीना सीखते हैं। तो अजीत जी, मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स का ये गांव मौसिन राम हमें क्या सिखाता है?
0: विमलेश जी, ये गांव हमें ये सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, मनुष्य उनके साथ तालमेल बनाकर जीवन को सुंदर बना सकता है।
1: जी अजीत जी, मेरे मन में एक खूबसूरत वाक्य आ रहा है।
0: भला वो क्या?
1: बारिश कितनी भी हो, जीवन में उमंग की धूप बनी रहनी चाहिए।
0: वाह क्या बात है, बारिश कितनी भी हो,
1: जीवन में उमंग की धूप बनी रहनी चाहिए।
0: जी जी, ये बात है। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी भारत के एक और गांव मौसिन राम के बारे में। ये गांव तो है ही, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा क्षेत्र भी। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से, हमारा प्रश्न है, मौसिन राम और मेघालय खासी जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मौसिन राम और मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है?
0: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
1: और यदि आपको NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए।
0: जी, पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर NCERT बुक्स PDF टाइप करें।
1: और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना है या ऑडियो बुक्स तो YouTube पर जाइए और टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल, विकल्प आपको मनचाही पाठ्य पुस्तकों पर ले जाएंगे।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सबसे पहला हमारा आज का कार्यक्रम है धरती का हरियाला उत्सव।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में मानसून के बारे में विस्तार से बताया गया है और विशेषकर इसके बनने की प्रक्रिया पर चर्चा की गई है।
0: धरती का हरियाला उत्सव।
2: नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ऋतिक और रश्मि नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में गए हुए थे। नाना नानी दोनों ही शिक्षक रह चुके हैं। शाम को ऋतिक और रश्मि चौपाल जरूर जाते थे। बहुत गर्मी पड़ रही थी, सब गर्मी के प्रकोप से परेशान थे। देखते ही देखते चौपाल में चर्चा मानसून की होने लगी। ऋतिक और रश्मि जब घर पहुंचे तो उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मानसून किसे कहते हैं? आइए सुनते हैं कि क्या बातें हो रही हैं ऋतिक, रश्मि और उनके नाना नानी के बीच।
3: नाना जी, नाना जी।
4: अरे ऋतिक, रश्मि भाई, आओ आओ आओ, कैसी रही चौपाल?
3: ठीक रही नाना जी, आज ना किसी ने गीत गाया और ना ही कोई नाटक दिखाया गया। आज तो बस यही बात हो रही थी कि
5: बहुत गर्मी पड़ रही है, कोई कह रहा था कि मानसून अब बस आने ही वाला है।
6: नाना जी, इतना तो मुझे भी पता है कि यह ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है, लेकिन आप हमें और कुछ बताइए ना।
3: हाँ हाँ बताइए ना, माँ बताती हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे आप?
4: बेटा मैं भूगोल पढ़ाता था।
5: ये लो, नानी जी भी आ गई।
7: अरे यहाँ क्या बातें हो रही हैं?
4: कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, मैं तो बता रहा था इन्हें कि तुम बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हो।
7: हाँ वो तो है।
3: नानी, हम मानसून के बारे में जानना चाहते थे।
7: अच्छा तो ये बात है, तो भाई चलो शुरुआत करते हैं तुम्हारे नाना जी से।
4: अच्छा चलो भाई चलो, मैं शुरू करता हूँ। देखो बच्चों,
8: मानसून के बारे में

0: में जानने से पहले ये तो जान लें कि मानसून शब्द आया कहाँ से है।
1: कहाँ से आया है
0: भाई? शाब्दिक रूप से मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया है। किस शब्द से?
1: अरबी भाषा के मौसम शब्द से।
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे। भाई मौसम शब्द का अर्थ होता है ऋतु। एक बात और बता दूं कि इस शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में नहीं होता।
1: पूरी दुनिया में नहीं होता तो फिर?
0: ये शब्द हिंद महासागर, अरब सागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।
1: आपने कहा ये मौसमी पवन है, क्या मानसून पवन या हवा है?
0: बहुत सुंदर प्रश्न बेटी, बहुत सुंदर प्रश्न। नहीं बेटी, मानसून सामान्य हवा या पवन नहीं है। ये एक ऋतु है जो विशेष मौसमी हवाओं के कारण आती है, इसीलिए इसे मानसूनी हवा भी कहते हैं। इसी के कारण वर्षा ऋतु आती है।
1: नाना जी, मानसूनी पवन कैसे बनती है?
0: देखो बच्चों, अगर सरल शब्दों में कहें तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, एशियाई भूभाग गर्म होने लगता है, वहाँ एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है।
1: अच्छा नाना जी।
0: चूँकि पवन ऊंचे दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है, इसलिए ये महासागर से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। ये समुद्री पवन नमी लेकर आती है।
1: अच्छा।
0: जो गर्म भूभाग पर संघनित होती है और फिर उससे भारी वर्षा होती है।
1: अब समझ में आया। नाना जी, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि भारत में मानसून आने ही वाला है, इसका क्या मतलब हुआ?
0: देखो भाई, यदि भारत की बात करें तो मानसून यानी मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी हिस्से से प्रवेश करती हैं, कुछ सप्ताहों में उत्तर की तरफ बढ़ती हैं और जुलाई के महीने तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल जाती हैं।
2: और बच्चों, भारत में मानसून सबसे पहले केरल में आता है।
0: हाँ।
2: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की लगभग 60-70% खेती मानसून पर ही निर्भर करती है।
0: बिल्कुल।
2: और हाँ, हमारी भारतीय परंपरा में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जिन्हें षड ऋतु कहा गया है।
1: अच्छा।
2: वर्षा ऋतु का प्रभाव सभी ऋतुओं पर पड़ता है। अच्छा मानसून यानी अच्छी फसल, और अच्छी फसल यानी
1: अच्छी अर्थव्यवस्था।
2: हाँ।
0: बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तुम्हें पता है वर्षा का हमारी भारतीय संस्कृति पर भी बहुत गहरा प्रभाव है। ये सिर्फ बारिश का मौसम ही नहीं है, हमारी कला, साहित्य, त्योहारों और संस्कृति का भी आधार है।
1: वो कैसे?
2: वो ऐसे कि महाकवि कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है मेघदूत। कहा जाता है कि इस महाकाव्य में बादलों और वर्षा ऋतु का सबसे सुंदर चित्रण है। अगर आधुनिक कविताएं कहें तो फिर सुमित्रा नंदन पंत, निराला और महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मानसून यानी वर्षा ऋतु की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ और बहुत सुंदर लिखा है।
0: वही, इसे सावन और भादों का नाम भी दिया गया है। और हाँ, यदि संगीत की बात करें तो हमारे राग जैसे मेघ मल्हार, मिया मल्हार, गौड़ मल्हार और राग देश विशेष रूप से वर्षा ऋतु के लिए ही तो रचे गए हैं। समझ गए?
1: जी नाना जी। और हमें मानसून के बारे में जानकारी भी मिल गई।
3: हाँ हाँ, पूरी जानकारी मिल गई।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम धरती का हरियाला उत्सव, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम तुलसी गौड़ा जंगल की इंसाइक्लोपीडिया।
5: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण जनजातीय कार्यकर्त्री तुलसी गौड़ा के जीवन और पर्यावरण संरक्षण में उनकी अहम भूमिका के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है।

0: नंगे पांव धोतीनुमा पारंपरिक कपड़े आदिवासी गहने पहने
1: तुलसी गौड़ा 72 ईयर ओल्ड ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका
2: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछन्ते
3: Encyclopedia of the forest as she is called in Karnataka, Tulsi Gowda.
0: जंगलों की encyclopedia कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
4: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है।
5: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
6: श्रीमती तुलसी गौड़ा समाज सेवा पर्यावरण।
5: यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। देश भर में प्रसन्नता की लहर।
7: नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता के मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों मैं करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए। हाँ।
3: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
2: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
3: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
2: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
2: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
3: अच्छा,
2: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ।
3: अरे ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। तुलसी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
2: हाँ बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ देश बचाओ।
0: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
2: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
0: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
1: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
0: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
4: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
2: बड़ा अच्छा सवाल है।

0: माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
1: अच्छा।
0: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
1: अच्छा।
0: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
1: अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
0: हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है। ठीक है ना?
1: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत धन्यवाद।
2: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
3: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
4: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम तुलसी गौड़ा जंगल की इंसाइक्लोपीडिया। हमें आशा है कि हमारे आज के कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आए होंगे। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम
5: चेतना,
4: जगबंधु
5: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले सुनते हैं फिल्म सुल्तान का ये गीत। सुखविंदर सिंह और शादाब फरीदी की आवाज़ें हैं, इरशाद कामिल के लिखे बोल और विशाल शेखर का संगीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म भाग मिल्खा भाग से। आरिफ लोहार की आवाज़, प्रसून जोशी की शब्द रचना और संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

फिल्म इकबाल का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थी के सलीम मर्चेंट, डोमिनिक और क्लिंटन की। इरफान सिद्दीकी ने इस गीत को लिखा था और संगीतबद्ध किया था सलीम सुलेमान ने। श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

हेमा सरदेसाई की आवाज़ में ये गीत आपने सुना फिल्म चक दे इंडिया से। जयदीप सहानी की शब्द रचना और संगीत था सलीम सुलेमान का। श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत का आनंद आप ले रहे हैं। इसी कड़ी में आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं सलीम मर्चेंट की आवाज़ में फिल्म पाठशाला से। गीतकार और संगीतकार हैं हनीफ शेख।

फिल्म न्यूयॉर्क का गीत आपको सुनवा रहे हैं केके की आवाज़ में। संदीप श्रीवास्तव के लिखे इस गीत को संगीत दिया है प्रीतम ने। आइए सुनते हैं।

0: श्रोताओं, फिल्म न्यूयॉर्क के इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस अंतराल के बाद।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी।

0: लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: कराए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
0: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल ना करें। क्या आप जानते हैं कि पॉलीथीन की ये थैलियाँ कभी नष्ट नहीं होती, जमीन में गाड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं, और यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं न केवल वायु को प्रदूषित करता है बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुँचाता है। तो अभी से करें पॉलीथीन बैग्स को टाटा बाय बाय। खरीदारी के लिए कपड़े का थैला लेकर जाए। पॉलीथीन बैग्स को हटाना है, धरती को बचाना है।
3: धरती माँ की यही पुकार, वृक्ष लगाओ बारंबार, मिलजुल कर पेड़ लगाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ। धरती पांच तत्वों से ही बनता है हमारा पर्यावरण। आइए इस पर्यावरण को हरा भरा बनाएं, वृक्ष लगाएं।
4: प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार अभी तक 30 से अधिक देशों के 1300 से अधिक नागरिक लापता हैं। इनमें 288 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। प्रवक्ता ने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल गए 21 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है। चीन में फंसे भारतीय नागरिकों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि पेचिंग में भारतीय दूतावास उनकी सुरक्षित निकासी के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोफ के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि खेल विश्वविद्यालयों

0: से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने के लिए खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के साथ देश का संबंध सदैव राष्ट्रहित के अनुरूप होना चाहिए। राष्ट्रपति भवन में आज भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में राष्ट्रपति ने ये बात कही। उन्होंने राजनयिकों से निवेश, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और नवाचार जैसे क्षेत्रों में उभरते अवसरों पर नजर रखने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी श्रृंखला के युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है।
1: आज का यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता की एक मजबूत कड़ी है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स हब में अपनी मजबूत पहचान बनाए और इस नेशनल मिशन में जबलपुर जैसी फैसिलिटी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी एफिशिएंसी के साथ और सिंसियरिटी के साथ निर्वाह करेंगे।
0: सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मुकाबला ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने ये श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। श्रीलंका ने आज मैच के अंतिम दिन फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में खेल समाप्ति तक 9 विकेट पर 429 रन बनाए। इससे पहले श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन पर घोषित की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 7:05 हुए हैं और यह समय होता है कार्यक्रम विवरण का। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम विवरण के साथ हाजिर हूं मैं आपका रेडियो साथी ऋषभ आहूजा। श्रोताओं आपसे कुछ ही देर में यानी 7:30 पर सुनिए किसान साथियों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी। कार्यक्रम सुर्खियों में का प्रसारण रात्रि 8 किया जाएगा। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 8:15 और 9:30 पर। कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुनिए रात्रि 10 और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आज आप सुनेंगे विदुषी गंगूबाई हंगल का ख्याल गायन, राग होगा शुद्ध कल्याण। इसका प्रसारण रात्रि 10:30 पर किया जाएगा। श्रोताओं ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल यानी शुक्रवार 28 अगस्त 2026 को प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। श्रोताओं सुबह की खूबसूरत शुरुआत होगी हमारे दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल के साथ 7:20 पर। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा का आनंद आप लेंगे सुबह 8:30 पर। कार्यक्रम गांधी चर्चा का समय होगा सुबह 9:15। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे 9:30 पर। सुबह 10:05 पर सुनिए कार्यक्रम महिला संसार, जिसमें कल होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम आओ सखी बातें करें। और

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में 10:30 पर आप सुनेंगे देवव्रत चौधरी का सितारवादन। राग होगा भैरवी और कोमल ऋषभ असावरी। श्रोताओं, इन सभी कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी भोपाल के अंतर्गत होगा। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुनिए फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने सुबह 11 बजे। कार्यक्रम आपकी फरमाइश का प्रसारण दोपहर 12 बजे, दोपहर 2:30 और रात्रि 10 बजे किया जाएगा। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक जमुनिया का 10वां भाग आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1 बजे सुनिए कार्यक्रम महिला सभा, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर के योगदान से प्रसारित होंगे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए दोपहर 2 बजे, शाम 5:33, 6:30, 8:15 और 9:45 पर। शाम 6 बजे सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति के अंतर्गत ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण शाम 7:21 पर किया जाएगा। कार्यक्रम सुर्खियों में सुनिए रात्रि 8 बजे। कार्यक्रम खेल जगत का प्रसारण 9:30 पर होगा। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग कोच नेहा कश्यप से बातचीत। और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में कल आप सुनेंगे राग रागेश्री पर पंडित देवव्रत चौधरी का सितारवादन रात्रि 10:30 पर। श्रोताओं, ये थे कल यानी 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से संवाद, खेलों को विकसित भारत की ताकत बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जबलपुर में T-72 और T-90 टैंकों के ओवरहॉल की नई सुविधा का भूमि पूजन किया। ओंकारेश्वर में पंचायतन मंदिर का शिलान्यास, एकात्म धाम बनेगा आध्यात्मिक केंद्र। और भारत ने श्रीलंका से टेस्ट सीरीज 1-0 से जीती, दूसरा टेस्ट हुआ ड्रॉ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम के जरिए देशभर के युवाओं से वर्चुअली संवाद किया। उन्होंने महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को याद करते हुए कहा कि खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं बल्कि विकसित भारत की ताकत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को ओलंपिक के ज्यादा से ज्यादा खेलों में भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है और जिलों से नई खेल प्रतिभाएं तलाशनी होंगी।
1: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है,

0: ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
1: वहीं इस मौके पर प्रदेश के 110 से ज्यादा महाविद्यालयों में खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भोपाल में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खेलों को सिर्फ पदक जीतने तक सीमित नहीं रखा जा रहा है, बल्कि इसे युवा सशक्तिकरण और विकसित भारत 2047 से भी जोड़ा जा रहा है। वहीं इस अवसर पर मंडला, रायसेन, छतरपुर, बालाघाट, मुरैना, दतिया, छिंदवाड़ा, अशोकनगर, बड़वानी और देवास सहित प्रदेश के सभी जिलों में खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय स्तर पर युवा खिलाड़ियों ने आकाशवाणी के साथ देश और प्रदेश के बदलते खेल परिदृश्य पर अपने अनुभव साझा किए। जबलपुर में आज T-72 और T-90 टैंकों के ओवरहॉल की नई सुविधा का भूमि पूजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में करीब 472 करोड़ रुपए की इस परियोजना की शुरुआत की। यहां हर साल 80 टैंकों की जांच, बड़ी मरम्मत और तकनीकी अपग्रेड किया जा सकेगा। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत से देश के रक्षा उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2014 में करीब 46,000 करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन अब बढ़कर 1,80,000 करोड़ और रक्षा निर्यात 1,000 करोड़ से बढ़कर करीब 39,000 करोड़ का हो गया है। उन्होंने कहा कि यह बढ़ोतरी भारत की बढ़ती तकनीकी और औद्योगिक क्षमता को दिखाती है।
2: डिफेंस एंड एरो स्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की मजबूत नींव रख रहा है। इन सब अचीवमेंट्स के लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी पूरी टीम को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। यह प्रोजेक्ट हमारे उन सैनिकों के लिए एक वरदान सिद्ध होगी जो इन टैंक के सहारे दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि यह प्रोजेक्ट जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों के स्थानीय लोग, हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे नौजवान, हमारे छोटे उद्यमी के जीवन में
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 29 अगस्त को बालाघाट में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान में शामिल होंगे। रक्षाबंधन के अवकाश के कारण इस बार शनिवार को पूरे प्रदेश में जनविश्वास अभियान आयोजित किया जाएगा। बालाघाट में मुख्यमंत्री जिला स्तरीय समाधान ऑनलाइन में चिन्हित शिकायतकर्ताओं से सीधे उनकी समस्याएं सुनेंगे। इसके साथ ही बैठक और समीक्षा के अलावा मीडिया संवाद तथा उद्योग संवाद भी होगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज ओंकारेश्वर के एकात्म धाम में भव्य पंचायतन मंदिर का शिलान्यास किया। उन्होंने संतों के साथ 45 पवित्र शिलाओं का पूजन कर मंदिर निर्माण की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि एकात्म धाम सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारतीय ज्ञान, आध्यात्मिकता और संस्कृति का बड़ा केंद्र बनेगा।
4: आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा जो पंचायतन पूजा पद्धति जिसके कारण से हमारे समाज की विविधता की व्यवस्था थी, उसमें एक ऐसे कठिन काल में, ये वाकई वो कठिन काल भी था, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम पूरे समूचे भारत की विविधता के बीच एकता का संदेश पंचायतन पूजा पद्धति के माध्यम से जो हमने दिया है, हम सबका सौभाग्य है। आज इस मानधाता पर्वत के ऊपर जब ये दिव्य धाम का आनंद आएगा।
1: रीवा जिले में भारी बारिश और नदियों के उफान के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल लगातार बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा कर हालात का जायजा ले रहे हैं। कल उन्होंने लक्ष्मणपुर, महाटोला, लोही भटलो और कोठी सहित आसपास के गांवों में लोगों से मुलाकात कर नुकसान की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल समय में सरकार लोगों के साथ खड़ी हुई है। उज्जैन में रक्षाबंधन का पर्व श्री महाकालेश्वर मंदिर में विशेष धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जाएगा। श्रावण पूर्णिमा पर सबसे पहले भगवान महाकाल को करीब 2 फीट की विशेष राखी अर्पित की जाएगी। पुजारी परिवार की महिलाएं करीब 1 सप्ताह से रेशमी कपड़े, रुद्राक्ष, मोरपंख और आभूषणों से यह राखी तैयार कर रही हैं। कल तड़के भस्म आरती के दौरान राखी चढ़ाई जाएगी। इसके बाद महिलाएं अपना व्रत खोलकर भाइयों को राखी बांधेंगी। वहीं रक्षाबंधन के पर्व पर अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने महिलाओं के लिए 48 घंटे मुफ्त इंटरसिटी बस यात्रा की सुविधा शुरू की है। यह सुविधा आज सुबह 6 बजे से 29 अगस्त सुबह 6 बजे तक लागू रहेगी। इसके तहत इंदौर से भोपाल, सागर, रतलाम, नीमच, अशोकनगर, झाबुआ और खरगोन जाने वाली बसों में महिलाएं मुफ्त सफर कर सकेंगी। इसके अलावा भोपाल से उज्जैन और गुना के बीच चलने वाली AICTSL बसों में भी यह सुविधा मिलेगी। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी ने वर्ष 2026-27 के लिए उर्दू पांडुलिपियों के प्रकाशन और आर्थिक सहायता के लिए आवेदन पत्र मांगे हैं। प्रदेश के साहित्यकार और शायर अपनी उर्दू पांडुलिपियां 25 सितंबर तक भोपाल स्थित उर्दू अकादमी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। इसके लिए पांडुलिपि के साथ प्रदेश का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र देना भी जरूरी है। वहीं नशे पर प्रहार करते हुए प्रदेश पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पिछले एक सप्ताह में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अलग अलग जिलों में MD ड्रग्स, डोडाचूरा, गांजा, स्मैक और चरस समेत करीब 5,31,00,000 रुपए की संपत्ति जब्त की है। रतलाम में करीब 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति और बड़ी मात्रा में MD ड्रग्स, वहीं छिंदवाड़ा में 320 किलो से ज्यादा गांजा, पिस्टल और कारतूस समेत करीब 1,10,00,000 की संपत्ति जब्त की गई है। वहीं नीमच, उज्जैन, जबलपुर, बालाघाट, नरसिंहपुर और ग्वालियर समेत कई जिलों में भी नशे के खिलाफ कई कार्रवाइयां की गई हैं। अब बात करते हैं क्रिकेट की। श्रीलंका ने फॉलो ऑन खेलने के बाद भी भारत के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ करा लिया है। इसके साथ ही भारत ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-0 से जीत ली। भारत ने गोल में पहला टेस्ट 165 रनों से जीता था। कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका के सोनल दिनुषा ने दोनों पारियों में शतक लगाकर शानदार प्रदर्शन किया और टेस्ट को ड्रॉ करा लिया। उनके शतक की बदौलत श्रीलंका ने दूसरी पारी में 9 विकेट पर 429 रन बनाए। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी हिस्से के 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है, जबकि 29 और 30 अगस्त को राहत मिलने के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ में दुर्घटनाओं और यातायात जाम की समस्या से निपटने के लिए 25 अगस्त से 25 सितंबर तक भारी और भारवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर जिला स्तरीय एक राखी एक संकल्प एक राखी एक रिश्ता कार्यक्रम का आयोजन गुना में किया गया। वहीं रतलाम में रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप को रक्षा सूत्र बांधा। टीकमगढ़ में लगातार बारिश के कारण कलेक्टर ने हीरानगर बावरी पुल सहित जल भराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा के निर्देश दिए और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर में आयोजित संस्कृत सप्ताह का आज समापन हुआ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो 1 साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,767 रुपये राशि जमा करते जाओ, जैसा मेरे को लाभ।

0: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
1: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
4: पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल ना करें। क्या आप जानते हैं कि पॉलीथीन की ये थैलियाँ कभी नष्ट नहीं होती? जमीन में गाड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं, और यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं न केवल वायु को प्रदूषित करता है बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुँचाता है। तो अभी से करें पॉलीथीन बैग्स को टाटा बाय बाय। खरीदारी के लिए कपड़े का थैला लेकर जाएं। पॉलीथीन बैग्स को हटाना है, धरती को बचाना है।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।
2: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैया बहनों को, सभी श्रोताओं को मनोज भैया की दो ही हाथ जोड़े की राम राम पहुँच जाए। और भैया का कैसे हाल चाल है? सावन को महीना चल रहा है, कहीं तेज तो कहीं झमाझम बरसात हो रही है। मनो, खेती को काम कहाँ रुकत है? मौसम कैसो ही होए, हालात कैसे ही होए, किसानी के काम कहाँ रुके हैं? यही मारे तो कहते हैं, बड़ी बज्जुर है छाती किसान की, खबर नहीं रहे जान की। भैया हरो, मनो आजकल सरकार ने इतनी अच्छी सुविधाएं, इतनी

0: अच्छी योजनाएं दे दी हैं कि किसानी अब आसान हो गई है और फायदे की भी हो गई है। भैया हरो, अगर साचो कहें तो किसानी केवल अनाज उत्पादन तक नहीं है, आज बदलते टेम के साथ साथ खेती के नए नए आयाम सामने आ गए हैं। सब्जी, फल, फूल, मसाले, औषधि और सुगंधित पौधा, उद्यानिकी की जिस सबरी फसलें कम क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा पैदावार और आय दे सकत हैं। और हाँ, इतो ही नहीं, इन फसलों से जुड़ी और भी गतिविधियां हैं जो खेती से आगे बढ़ के हमें प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, वितरण और मूल्य संवर्धन तक रोजगार और स्वरोजगार के कई रास्ता खोल देते हैं। तो चलो, आज हम आपको एक ऐसी बातचीत सुनवा रहे हैं जिसको सुन के आप जान पे हो कि उद्यानिकी फसलों से किसानों और शिक्षित बेरोजगारों के लाने स्वरोजगार के अवसर कैसे मिल सकते हैं। जो बतकाव करो है उद्यानिकी विभाग भोपाल के अधिकारियों और लाभार्थियों से अंशु तिलेठे बहन ने सुना थे।
1: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम उद्यानिकी विषय पर और सरकार द्वारा संचालित कौन कौन सी योजनाएं हैं, इस विषय में विस्तृत बातचीत करने के लिए आए हैं उद्यानिकी विभाग भोपाल, जिसमें हमने बात करी है सहायक संचालक उद्यानिकी विभाग श्री राजकुमार सगर जी से। हम जानना चाहेंगे सर, सबसे पहले आपसे कि शिक्षित बेरोजगार और किसानों के लिए सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं।
2: नमस्कार किसान भाइयों, विभाग द्वारा शिक्षित बेरोजगार एवं किसानों के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें मुख्यतः किसानों के लिए जो योजनाएं हैं वो क्षेत्र विस्तार की रहती हैं, जिसमें किसानों को फल बगीचा लगाना, सब्जियों की खेती करना, फूलों की खेती है, मसाले की खेती है, सुगंधित फूलों की खेती है, इस तरह की स्कीमों पर विभाग खेती करने पर अनुदान प्रदान करते हैं, साथ ही बीज, खाद, दवाई एवं तकनीकी ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं। इसके बाद बात आती है संरक्षित खेती की, तो संरक्षित खेती जिसमें पॉली हाउस, सैडनेट हाउस, ड्रिप मल्चिंग आती हैं, इसमें कम जगह में वर्टिकली खेती करके ज़्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। और शिक्षित बेरोजगार किसान के व्यक्ति हो सकता है जिसको जमीन की जरूरत नहीं है, उसमें प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना है, जिसमें ऐसे पढ़े लिखे बेरोजगार हैं जो अपना स्वयं का कोई बिजनेस करना चाहते हैं
1: जी।
2: उसमें लिमिट है 30 लाख रुपए तक का मशीन उसमें लगा सकते हैं और 35% अनुदान, अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। इसमें आवश्यकता यह है कि फूड प्रोसेसिंग का ही काम करना होगा, अनाज से संबंधित हो, मसाले से संबंधित हो, फूलों से संबंधित हो या सब्जियों का हो, सब्जियों का है आपका, फलों का है, जैम, जेली, अचार, मुरब्बा, उसमें शासन इसमें अनुदान, साथ ही बैंक लोन में 3% तक का सब्सिडी भी उपलब्ध करवाती है। और एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको बार बार रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती है, हर साल जिस उसमें आप लॉगिन करके आप देख सकते हैं कि आप किस योजना में पात्र हैं, उस योजना में केवल आपको योजना ही जोड़नी होगी, आपको द्वारा पंजीयन इसमें नहीं करना होगा और आपको ऑनलाइन ही आपको आशय पत्र, ऑनलाइन ही सब्सिडी इसमें उपलब्ध हो जाएगी।
1: इसके लिए सर, जैसा आपने बताया कि क्या हमारे किसान भाई या शिक्षित बेरोजगार स्वयं का अपना व्यवसाय दुकानों के रूप में या किस तरह से संचालित कर सकते हैं।
2: जो मैंने PMFME योजना के बारे में बताया, ये स्कीम बहुत अच्छी है भारत सरकार की, जो पिछले 5 सालों से संचालित है। पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए एक अच्छी सुविधा है कि आपको किसी CA से इसकी रिपोर्ट नहीं बनवानी है, विभाग ने डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन की व्यवस्था करी है जो आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स लेगा, जैसे आपका पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, आपके फोटो हो गए, आपकी डिटेल, जमीन जहाँ पे आप दुकान करना चाहते हैं, आपके सारे कोटेशन वगैरह लेगा और उसकी एक DPR तैयार करके ऑनलाइन ही प्रोसेस करेगा और बैंक के लिए भी आपसे बात करेगा, बैंक में भी आपको सहयोग करेगा और साथ ही मशीन लगाने में भी सहयोग करेगा। और बाद में जो आपको अन्य पंजीयन की जरूरत होती है, जिस तरह से FSSAI का रजिस्ट्रेशन करवाना है, आपको फूड लाइसेंस लेना है, साथ में आपको जो भी इनकम टैक्स वगैरह के लिए जो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने होते हैं वो भी करवाएंगे। और इसके एवज में संबंधित आवेदककर्ता को इसमें कोई राशि नहीं देनी है, शासन उनको उसमें मदद करेगा, पैसा देगा।
1: सर, संरक्षित खेती के विषय में आपने जिक्र किया, तो इसके अंतर्गत मल्चिंग, नेट हाउस और पॉली हाउस, इसका थोड़ा विस्तार से हमारे किसान भाइयों को जानकारी।

0: संरचित खेती आज के समय की मांग है, क्योंकि कम जगह में अधिक उत्पादन और बेमौसम समय अधिक अच्छा उत्पादन के लिए संरचित खेती बहुत अच्छा है। एक सबसे पहले होता है संरचित खेती में ड्रिप और मल्चिंग। मल्चिंग में 20,000 रुपए तक का दान देते हैं इसमें। तो नेट हाउस क्या होता है कि नेट का एक स्ट्रक्चर होता है जो आयरन के जो पाइप होते हैं उनसे बना होता है, जो इसमें क्या होता है प्रति वर्ग मीटर 710 रुपए की इसमें लागत है, जिसका 50% 355 रुपए पर प्रति वर्ग मीटर का अनुदान होता है। इसके बाद आता है पॉली हाउस। पॉली हाउस पूर्णतः कंट्रोल कंडीशन में किया जाता है, खेती करने के लिए लगाया जाता है। इसमें जो हमारा छोटे किसानों के लिए है वो 1,000 रुपए वर्ग मीटर लागत का 50% है, और जो बड़े हैं जो मतलब 4,000 वर्ग मीटर का लगा रहे हैं वो 950 रुपये यानी 475 रुपये पर वर्ग मीटर के हिसाब से इनमें अनुदान रहता है। जो पॉली हाउस हैं उसमें मुख्यतः ऐसी फसलें लगाई जाती हैं जो एक बार लगाने पर 4 से 5 साल तक चलती हैं, जैसे जरबेरा हो गया, गुलाब हो गया, इस तरह की खेती इसमें करते हैं। इसमें स्ट्रक्चर के बाद हम सब्जियां लगाने के लिए और फूल लगाने के लिए भी इसमें अनुदान देते हैं। उसमें 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उसमें 50% अनुदान है, और जो फूलों की खेती करते हैं उसको 450 रुपये प्रति वर्ग मीटर और उसका 50% तक का अनुदान होता है। ये अनुदान मिलाकर लगभग अगर पॉली हाउस में जोड़े तो 4,000 रुपये 20 लाख तक का अनुदान है, और आपका सब फूलों में जोड़े तो इसमें 10 से 12 लाख रुपए तक का अनुदान है।
1: जी सर, अभी हम देखते हैं कि बेमौसम हमें सारी सब्जियां उपलब्ध होती हैं बाजार में, तो निश्चित ही हमें इसका स्टोरेज करना पड़ता है, तो इस विषय में आप हमारे किसान भाइयों को और हमारे श्रोताओं को क्या जानकारी देना चाहेंगे?
0: दो तरीके हैं, एक तो इसमें शासन दो तरीके करता है, एक तो आप जो फसल आप तोड़े
1: जी,
0: तोड़ने के बाद उसको उसकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा बढ़े इसके लिए हम पैक हाउस का निर्माण के लिए शासन अनुदान देता है। इसमें पैक हाउस का उद्देश्य ये है कि ये आप जो फसल किसान तोड़ेगा उसको तत्काल नॉर्मल टेम्परेचर पर लाके उसको रखेगा तो उसको जो उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ेगी वो ज़्यादा देर तक रह पाएगा आपका फ्रेश। और उसके बाद उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हमारे पास रेफ्रिजरेटर वैन है, तो उसमें भी 35% तक का अनुदान है, और उसके बाद कोल्ड स्टोरेज है उसमें 35% तक का अनुदान है। इसके बाद जो आप प्राकृतिक तरीके से उसको पकाने की बात कर रहे थे, तो उसमें एक राइपनिंग चैम्बर करके जिसमें क्या होता है कि इथिलीन गैस का उपयोग करके जो प्राकृतिक रूप से फसलों को फलों को पकाने का काम करते हैं उसमें अनुदान का इसमें दिया जाता है। तो जो व्यापारी भाई हैं जो मंडियों के पास इनके पास ज़मीनें हैं या बाजार में ज़मीन है तो वो कोल्ड स्टोरेज और राइपनिंग चैम्बर का काम इसमें कर सकते हैं और अच्छी आय कमा सकते हैं।
2: अभी हमने सुना सहायक संचालक श्री राजकुमार सगर जी को।
1: उद्यानिकी फसलों से किसानों एवं शिक्षित बेरोजगारों के लिए 100 रोजगार के अवसर, इस विषय पर हमने उद्यान विकास अधिकारी LC भकोरिया जी से बातचीत की, जिसके अंश हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो हमारा आपसे यही है कि हमारे किसान भाई जो पारंपरिक खेती करते हैं उनको उद्यानिकी विभाग क्या सहयोग करता है?
3: पारंपरिक खेती के साथ साथ यदि आप उद्यान की फसलें लगाते हैं तो अपनी आय को 2 गुना नहीं 4 गुना कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये मौसम बरसात का है, आप हमारे विभाग से ऑनलाइन पंजीयन के माध्यम से आपको सबसे पहले उद्यान की विभाग की योजना का लाभ लेना है तो आपको पहले पंजीयन करना होगा MPF STS पर। आप पंजीयन करने के पश्चात उद्यान की विभाग से जो फल क्षेत्र विस्तार योजना है उस योजना से पंजीयन को जोड़ना पड़ेगा। जब आप उसको जोड़ देंगे तो हमारे विभाग से एक आपको आश्रय पत्र जारी होगा। उस आश्रय पत्र जारी होने के पश्चात यदि किसान भाई अमरूद का बगीचा लगाता है और स्वयं के वे पर लगाता है तो किसान भाई 1 हेक्टर में 555 अमरूद के पौधे लगाएंगे, और लगाने के पश्चात विभाग से उनको जो सहायता राशि मिलेगी उसके लिए किसान को 95% पौधे जिंदा रखना होगा। तो विभाग 1,80,000 रुपये 2 वर्षों में हम किसान भाई को उसकी सहायता राशि देंगे। इस प्रकार का बगीचा लगा के अपनी उद्यान की फसलों के अंतर्गत जो जगह खाली होती है उस खाली जगह में अंतर्वसी फसल जैसे सब्जी
1: जी।
3: फूलों की खेती
1: जी।
3: इस प्रकार की खेती लगाकर हमारा किसान डेली पैसा कमाकर आत्मनिर्भर बनेगा।
1: सर जैसे आपने कहा कि बगीचा लगाए हमारे किसान भाई, तो सर एक समस्या किसान भाइयों को देखने को मिलती है कि अपन ने फल का बगीचा लगाया मान लीजिए, तो फिर उसका उपज फल हमको एक दो साल बाद प्राप्त होगा है ना, जो जिसकी सीमा होगी, तो उस बीच हमारा किसान भाई क्या करे?
3: बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मैडम आपने कि हमारा किसान भाई यदि बगीचा लगा लेता है जो बीच की जो जगह बचती है, तो मैंने आपको बताया है कि विभाग की तरफ से योजना है, हमारे यहाँ सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना भी है और पुष्प क्षेत्र विस्तार योजना है। हमारे किसान भाई यदि बगीचा लगाता है खाली जगह में, उसको हम बोलते हैं अंतरवसी फसल। सब्जी क्षेत्र विस्तार में सब्जी लगा सकते हैं, फूलों पे आए तो हमारा किसान भाई गेंदा लगा सकता है। इस प्रकार की फसल लगा के हमारा किसान भाई डेली पैसा कमा के आत्मनिर्भर बनेगा और अपनी आय को दोगुना नहीं चार गुना करेगा। इसके पश्चात दो साल बाद हमारे किसान भाई की जो फसल आएगी उससे वो अच्छी आय प्राप्त कर सकता है। हमारे किसान भाई यदि अमरूद का बगीचा लगा के फसल जो आती है, जब उसको अच्छा पैसा मिले तो मार्केट में हम उसको बेच सकते हैं, और जब अमरूद का रेट कम होगा तो हमारा किसान भाई खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाकर उस पर भी हमारे किसान भाइयों को सहायता राशि है। इस खाद्य प्रसंस्करण यूनिट पर उनको जैसे लोन वगैरह लेता है बैंक से, तो हमारे लिए डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन विभाग से नियुक्त किए गए हैं भाई। उनकी DPR बनाएंगे, कौन कौन सी मशीन उसमें लेंगी वो भी हम उसको प्रोवाइड कराएंगे और उनका एक खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाएंगे। उस पर 35% अनुदान है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से उनको 3% ब्याज दर में छूट भी है। इस प्रकार किसान भाई को इसमें 10% अपनी मार्जिन मनी लगाना होगी और PMAP योजना पर किसान भाइयों को 3% ब्याज दर में छूट भी है। हमारा किसान भाई यदि इस प्रकार का खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाकर, जैसे अमरूद के बारे में बात बताई है मैंने, तो जब अमरूद हमारा सस्ता होता है तो मार्केट से अमरूद को खरीद लेंगे, जो हम 1-2 रुपए किलो बिकता है, 3 रुपए किलो बिकता है, उससे हम क्या करें किसान भाई, जैम है, जूस है, जेली है, इस प्रकार के प्रोडक्ट बना के हम उसकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं और एक समय है उसको रख के मार्केट में उसको बेच के अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इस प्रकार से हमारा किसान भाई उद्यमी बनेगा, इस प्रकार की योजना का लाभ हमारा किसान भाई लेके आत्मनिर्भर हो सके।
1: उद्यान की विभाग द्वारा बरसात के मौसम में पेड़ पौधों को क्या सहायता राशि दी जाती है?
3: हमारे किसान भाई ने जो बगीचा लगाया, बगीचा लगाने के पश्चात यदि विभाग से हमारा किसान भाई पौधे लेगा, तो किसान भाई उस पौधे की अनुरक्षण राशि जो होती है, अनुरक्षण राशि हमारे किसान भाई को DBT के माध्यम से उनके खातों में दी जाएगी। और यदि किसान भाई विभाग से पौधे लेंगे कि अपने खेत में लगाते हैं, यदि हमारा किसान भाई 95% पौधे जीवित रखते हैं, तो उनके लिए जो सहायता राशि है 2 किस्तों में 2 ईयर में उनको दी जाती है 1,80,000 रुपए। तो किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पूरा 1 एकड़ में आप पॉली हाउस लगाइए, आप 1/2 एकड़ में पॉली हाउस लगाइए, इसकी जो इकाई लागत है वो है 1,000 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर। इसका 50% अनुदान हम किसान भाइयों को देते हैं और साथ में प्लांटिंग मटेरियल का भी अनुदान किसान भाइयों को देते हैं। तो किसान भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि अब समय आ गया है खेती का परिवर्तन का, तो हमारे किसान भाइयों को अब हाईटेक संरक्षित खेती पे जाना होगा, अपनी आय को दोगुना नहीं चार गुना करें, आत्मनिर्भर बने और अपने सपनों को पूरा करें। धन्यवाद।
2: अभी हमने विकास खंड अधिकारी भकोरिया जी को सुना।
4: क्या बात है भैया, इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी हमने आज जब बातचीत में सुनी है, और हम सोच रहे हैं कि जो हितग्राही जनों से हमारी अंशु बहन ने बात करी है, वहाँ हम आपको थोड़ी देर बाद सुने हैं। पहले एक गीत सुन लेते हैं, थोड़ा मनोरंजन भी तो हो जाए। भैया बुंदेलखंड में सावन के महीना में ढेर सारे गीत गाए जाते हैं, जैसे कजरी, सेहरा, झूला, इतने सब गीतों के बीच में एक गीत और बुंदेलखंड में गाओ जाते है, वो खास सावन के महीना में गाओ जाते है, बुंदेलखंड की वीर भूमि के वीरों की गाथा आल्हा है ना। आज हम आपके लाने एक आल्हा सुनवा रहे हैं, गाओ है हरचरण सिंह नरवरिया और साथियों ने, आनंद लेते हैं।
5: सुमरन करके रामचंद्र को और ले बजे

0: भैया अबे आपने हरचरण सिंह नरवरिया और साथियों के सुरों में आपने जो आला गीत सुनो, अब हम आपके लाने फिर ले जाते हैं भाई। जहां हम बात कर रहे थे उद्यानिकी फसलों से किसानों एवं शिक्षित बेरोजगारों के लाने स्वरोजगार के अवसर कैसे मिल सकते हैं, उद्यानिकी विभाग की योजनाओं को लाभ लेवे वाले कछु हितग्राहियों से अंशु बहन ने बात करी है, बाबी सुनत है।
1: और हम अब चलते हैं योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों की तरफ। और सबसे पहले हमने बात की पॉली हाउस में पालक का उत्पादन कर रहे श्याम सिंह कुशवाहा जी से। आइए सुनते हैं उनकी सफलता की कहानी।
2: सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं 2015 से उद्यानिकी के साथ मिलकर अपने खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 2.5 एकड़ में अमरूद का बगीचा लगाया, जिससे मुझे अच्छा मुनाफा प्राप्त हुआ। उसके साथ साथ मैंने 2016 में 4000 वर्ग मीटर का पॉली हाउस बनाया, जिसमें लागत 33,76,000 रुपए आई। अनुदान राशि उद्यान विभाग के द्वारा 16,88,000 रुपए हमें प्राप्त हुए। मैंने सबसे पहले शिमला मिर्च लगाई, उसमें भी अच्छा मुनाफा हुआ। लेकिन मैंने बाजार की मांग को देखते हुए हमने पालक जो अच्छा मुनाफा प्राप्त हुआ। उसके साथ साथ मैंने 2016 में 4000 वर्ग मीटर का पॉली हाउस बनाया, जिसमें लागत 33,76,000 रुपए आई। अनुदान राशि उद्यान विभाग के द्वारा 16,88,000 रुपए हमें प्राप्त हुए। मैंने सबसे पहले शिमला मिर्च लगाई, उसमें भी अच्छा मुनाफा हुआ। लेकिन मैंने बाजार की मांग को देखते हुए हमने पालक लगाना शुरू किया, जो कि बहुत लाभदायक फसल एवं बिना मौसम में अच्छे रेट में कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने वाली फसल है पालक। मैं करीबन 8 से 9 साल से पालक की खेती कर रहा हूँ पॉली हाउस के अंदर, जिसमें कि बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त होता है। और मैं इसी के साथ सभी

0: दसपत्ती काढ़ा और बर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर उसका उपयोग हम खेती में करते हैं, जिससे कि लागत कम हो जाती है और आमदनी बढ़ जाती है। जो हमारे युवा किसान गांव छोड़कर शहरों में रोजगार के लिए जाते हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि खेती को एक बिजनेस मॉडल की तरह काम करें, प्लानिंग के साथ काम करें और खेती से अच्छा मुनाफा प्राप्त करें। सभी किसान भाइयों को नमस्कार, जय श्री राम।
1: अभी हमने श्याम सिंह कुशवाहा जी को सुना और उनकी सफलता की कहानी जानी। हम एक और हितग्राही किसान भाई से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से उद्यानिकी विभाग की योजनाओं का लाभ लेकर खुद को स्थापित किया। हमारे साथ हैं हेमंत कुशवाहा जी।
2: नमस्कार, मैं उद्यानिकी विभाग की योजना के तहत सब्सिडी का लाभ लेकर हमने जे नर्सरी प्लांट की शुरुआत की। हमारा उद्देश्य किसानों को अच्छी गुणवत्ता के सब्जी के पौधे उपलब्ध कराने के साथ साथ पॉलीहाउस की खेती के लिए मार्गदर्शन करते हैं। हमने 20x20 के एरिया में 5000 पौधों की शुरुआत की। इसके बाद हमने 30x90 का स्ट्रक्चर तैयार किया, जिसमें लगभग 1,00,000 पौधे तैयार किए। किसानों की मांग लगातार बढ़ती गई तो हमने पॉलीहाउस की ओर कदम बढ़ाया। उद्यानिकी विभाग की योजना के माध्यम से हमें सब्सिडी का लाभ मिला और धीरे धीरे हमने अपनी नर्सरी का विस्तार लगभग 2 एकड़ तक कर लिया। धन्यवाद
1: किसान भाइयों। ये थी हमारी आज की स्थल रिकॉर्डिंग, जिसका विषय था उद्यानिकी फसलों से किसानों एवं शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार के अवसर। धन्यवाद।
3: क्या बात है भैया, मजा आ गयो। जिस सब किसान भैया जो है ना, इन सब ने उद्यानिकी विभाग की योजनाओं को अपनाओ और आज लाभान्वित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम को उद्देश्य भी जो ही है कि हम आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाएं जिन्हें अपना के आप बन सकते हैं एक सफल कृषक। भैया, कार्यक्रम में हम अब आपके लाने जानकारी लेके आए हैं मंडी के भाव की। जे भाव हम आपका बता रहे हैं 25 अगस्त 2026 के, माने कल छुट्टी है थी, उससे पहले जब मंडी बंद भई तो बे भाव हम आपको लेके आए हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख मंडी इंदौर में गेहूं को अधिकतम भाव थो 3,140 रुपया प्रति क्विंटल, देसी चना को भाव थो 6,195 रुपया प्रति क्विंटल, डालर चना को भाव थो अधिकतम 9,000 रुपया प्रति क्विंटल, मक्का को अधिकतम भाव दर्ज भाव 2,572 रुपया प्रति क्विंटल, पीलो सोयाबीन को इंदौर मंडी में 6,130 रुपया प्रति क्विंटल अधिकतम भाव। वहीं उड़द की बात करें तो इंदौर मंडी में उड़द को अधिकतम भाव रहो 9,000 रुपया प्रति क्विंटल, मूंग बिकी 6,800 रुपया प्रति क्विंटल अधिकतम भाव से और मसूर को अधिकतम भाव 6,050 रुपया प्रति क्विंटल दर्ज करोगा। भैया, मक्का उत्पादक किसानों के लाने एक अच्छी खबर है, एक अच्छा संकेत है कि मक्का को मध्य प्रदेश में पिछले 7 दिनों में जो औसत भाव रहो है वो सर्वाधिक 2,132 रुपया प्रति क्विंटल मध्य प्रदेश को राज्य स्तर को भाव है, जिसमें न्यूनतम भाव 1,240 रुपया, अधिकतम 2,572 रुपया प्रति क्विंटल दर्ज भाव। जहाँ में खासियत बात जा है कि पिछले 7 दिनों में 11.11% यानी 213 रुपया ऊपर बढ़ के जो भाव दर्ज भाव है, यानी आवे वाले दिनों में मक्का के भाव में बढ़ोतरी की संभावना है। भैया, अब बात मौसम की कर लेवे। विभिन्न क्षेत्रों में मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी करो गए है कि कहीं तेज तो कहीं मध्यम वर्षा हो सकत है। ऐसे में सबरे किसान भैया ध्यान दें, खेतों में जल भराव की स्थिति को रोकें, मतलब खेतों में जल निकास की नालियां जरूर बना दें। हाँ, सोयाबीन उत्पादक किसान भाइयों को हम बता दें, सोयाबीन में पीला मोजेक की समस्या बहुत ज्यादा होत है, जा बीमारी फैलत है सफेद मक्खी से। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर के अनुसार सलाह दी गई है कि सोयाबीन में पीला मोजेक अगर दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में पीले रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ के खेत से बाहर कहीं मिट्टी में गड़ा देवें के फिर जला देवें और रासायनिक नियंत्रण के लाने थायोमेथोक्सिम 25WG दवा प्रति 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पे छिड़काव करें तो आप येलो मोजेक से अपनी फसल को बचा सकते हैं। भैया, खेती किसानी काम ही ऐसा है कि जामे आपके लाने पूरी जुगत तो लगानी पड़ते, सही टाइम पे सही काम भी करने पड़ते। अगर सही टाइम पे हम खेती को काम करें तो हमें मुनाफा निश्चित मिलने हैं और बम्पर पैदावार भी मिलने हैं। यही लाजे तो कहते हैं, खेती उत्तम काज है, ई सम और ना होए, खाबे खा सबको मिले, खेती की जो सोए। जय उम्मीद के साथ आपसे ले रहे हैं विदा। स्वीकार करो मनोज भैया की दो ही हाथ जोड़े की राम राम।
4: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहे।

0: फसल से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे अब पहली वाली बात कहाँ,
1: पर हम तो सब यही डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच
0: है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम किसान वाणी।
1: किसान साथियों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण अभी किया जा रहा था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 8 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम संवाद भारत की खेल क्षमता के प्रोत्साहन पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे हैं खेल विश्लेषक मलय नीरव। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अर्जुन जे चौधरी।
3: मलय नीरव जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।
4: धन्यवाद
3: मलय जी। हमारे जो आकाशवाणी में जो चर्चा सुनते हैं वो जानना चाहते हैं कि खेलो इंडिया प्रोग्राम क्या है, ये इनिशिएटिव क्या है और आज के युवा के साथ इसका क्या लिंकेज है।
4: देखिए, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया कार्यक्रम की घोषणा की तब से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट थी कि उनका जो विजन था, उन्होंने देश के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए, देश में खेलों के विकास के लिए जो सपना देखा और दिखाया, वो उसकी एक रचनात्मक भूमिका थी इस देश के निर्माण में, एक विकसित भारत के निर्माण में। क्योंकि इस देश में खेल संस्कृति का अभाव था। खेल संस्कृति के अभाव में ये देश खेलों में उस तरह का विकास नहीं कर पा रहा था जिस तरह का विकास हमने अन्य देशों में देखा जो कुछ दिनों पहले तक विकासशील देश थे और कुछ आज भी हैं, मगर खेलों में वो विकसित देशों के बराबरी पे आ गए हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा कार्यक्रम शुरू किया जाए जिसमें हर गांव, हर कस्बे, हर शहर, हर जिले, हर राज्य के बच्चों का हम उनकी प्रतिभाओं को पहचान कर, उनकी प्रतिभाओं को तराश कर और फिर ये देखें कि उनमें से पदक प्राप्त करने वाला और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे पहुंचने वाला बच्चा कौन सा हो सकता है। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने की बात ही उन्होंने नहीं सोची, उन्होंने ये भी सोचा कि जो बच्चा खेलों में अपना ध्यान लगाता है, जो युवा खेलों को अपने जीवन यापन के लिए अपनाना चाहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ दिनों बाद उसे भूखमरी की डर खेलों के मैदान से दूर ले जाए। तो इस तरह से उन्होंने खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू किया और आपको जानकर, हमारे पूरे देश को जानकर ये प्रसन्नता होती रही है कि खेलो इंडिया से निकले खिलाड़ी, मनुभाकर जैसे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतते रहे और खेलो इंडिया का जो और भी उसके जो विभिन्न अंश और कह लीजिए कि एक नए आयाम के साथ खेलो इंडिया के विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए, जो समुद्र के किनारे होने वाले खेल थे या जो बर्फीली पहाड़ियों पर होने वाले खेल थे, जो विंटर खेलो इंडिया था उनको, बीच खेलो इंडिया, उन खेलों को जिस तरह का प्रोत्साहन

0: मिला प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से, तो ऐसी जगहों पे जहां खेलों में रुचि लेने वालों को कोई पहचानता भी नहीं था, वहां से युवा शक्ति जो निकली, जो उदीयमान सितारे जगमगाए, उन जगमगाते सितारों को देखकर प्रधानमंत्री को ये लगा कि ये जुगनुओं की चमक नहीं है, ये तो चांदनी है, और इस चांदनी को जैसे जैसे तराशा जाएगा ये और निखरेगी, जुगनुओं की तरह बिल्कुल झिलमिलाकर बुझ जाने वाली चीज नहीं है। उन्होंने इस बात को समझा, देखा, जाना और फिर ये भी जानने की कोशिश की कि किन को किस तरह से यहाँ खेलों के मैदान में लाकर बनाए रखा जाए। ऐसा ना हो कि आज खेलें, कल खेलें और परसों उसके बाद वो अपने दाल रोटी की चिंता और फिक्र में, अपने परिवार को पालने की फिक्र में खेल के मैदान को छोड़कर चले जाएं। तो उन्हें एक तरह का आश्वासन मिला कि अगर आप खेल रहे हैं तो जो पुरानी कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, वो कहावत चरितार्थ अब नहीं हो सकती। अब वो गलत साबित हो चुकी है, क्योंकि आप अगर खेलोगे कूदोगे तो आपको हर तरह की सुविधा राज्य की ओर से, राष्ट्र की ओर से आपको प्रदान की जाएगी, और ये हमारे प्रधानमंत्री का सपना था।
1: आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने खेलो इंडिया संबोधन में भारत में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के बारे में क्या कहा।
2: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: पैरा एथलीट्स ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है एशियन गेम्स में, ओलंपिक गेम्स में, और जो एबल्ड एथलीट्स हैं उन्होंने भी अभी अपना जो है प्रदर्शन दिखाया, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर हम वेट लिफ्टर्स की बात करें। ये जो स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स हैं, एक्सेलेंस हैं एथलीट्स की, इसके साथ अर्थशास्त्र भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि खेलो इंडिया को लॉन्च करने के लिए, उसको होस्ट करने के लिए भी कई जो राज्य हैं वो चाहते हैं कि उनके यहाँ पे वेन्यू चुना जाए, उनको फंडिंग मिले सेंटर से, और एक तरीके से स्पोर्ट्स का विकास उनके राज्य तक पहुंचे।
0: जब एक खेल का आयोजन होता है तो अर्थव्यवस्था को एक नया बूस्ट मिलता है, उसको एक नई गति मिलती है, पर्यटन का विकास होता है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है, सड़कों का विकास होता है, हवाई अड्डों का विकास होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, रोजगार के नए अवसर आते हैं। तो खेलों के साथ साथ इन सब के विकास से जो भारत की युवा शक्ति है, जो अभी आप देखें जनसंख्या के आधार पर तो भारत में युवाओं का जो बाहुल है, उसको रोजगार के अवसर दिलाने में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और इस भूमिका की बात आज डायलॉग में भी प्रधानमंत्री ने की है। उन्होंने कहा है कि भारत की युवा शक्ति को विकसित भारत का एक अभिन्न अंग बनाने के लिए 2027 तक खेलों के माध्यम से उनको वहां पहुंचाया जाए जहां भारत विकास के चरम पर पहुंचे, विकास की पराकाष्ठा पर पहुंचे। तो ये पूरा कार्यक्रम जो है और जो उनका राष्ट्र के साथ आज संवाद हुआ है, डायलॉग जो हुआ है, जिसमें 1500 करीब शिक्षण संस्थानों ने और उनके छात्रों ने हिस्सा लिया, हर जिले के कम से कम 2 संस्थान ऐसे थे जिन्होंने हिस्सा लिया, तो उसमें भी उन्होंने यही संवाद दिया है। उन्होंने संवाद दिया है कि प्रतियोगिता पदक जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्वस्थ प्रतियोगिता, हेल्दी कॉम्पिटिशन, क्योंकि इससे आपको तरह तरह प्रेरणाएं मिलती हैं, शिक्षा मिलती है। जब आप गिरते हैं तो आप उठना सीखते हैं, जब आप उठते हैं तो गिरने का भय आपके मन से निकलता है। इसी धरती पर बहुत, मैं कहता हूं दावे के साथ, कि 6-7 वर्ष पहले तक कोई नहीं कह सकता था कि एथलेटिक्स में, वो भी भाला फेंक में, जैवलिन थ्रो में, भारत को स्वर्ण पदक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ओलंपिक्स और विश्व स्तर पर मिलेगा, ये कोई नहीं कह सकता था। इसी तरह से मीराबाई चानू का एक ऐसा केस है जिसको प्रधानमंत्री ने पहचाना, जाना, उनकी टैलेंट को देखा और उनको स्वास्थ्य लाभ की जरूरत थी तो उन्होंने उनको सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं प्रदान की और प्रदान करने के साथ साथ अच्छे प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की। तो खिलाड़ियों के न्यूट्रिशन, उनके मनस्थिति जो उनकी होती है, उनको मनोवैज्ञानिक रूप से प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना, बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना, ये जो काम होते हैं, और भी हर तरह की चीजें, हर तरह की सुविधाएं जो उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो खेल में पदक लाकर कहें कि हम पदक विजेता हूं, वो इसलिए कि युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत वो बने और युवाओं के लिए उनके लिए एक नया मार्ग प्रशस्त हो, उनको लगे कि ये भी एक चीज है जो करके हम अपने पोटेंशियल को, जो हमारी अभिप्सा है, जो हमारी चाहत है, उसको हम और विकसित कर सकते हैं, उसको हम एक अंजाम दे सकते हैं।
1: मलय जी, युवा की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले ही की थी खेलो इंडिया के माध्यम से। आपके जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, एक तरीके से युवा को ही टारगेट किया जा रहा है और आज उससे जुड़ा हुआ यूथ लीडरशिप की बात की जा रही है और नशा मुक्त युवा मूवमेंट जैसी बातें भी की जा रही है ताकि उनके साथ जो भी समस्याएं हो उसका एक हल निकाल सके। तो युवा हमेशा एक सेंट्रिक थीम रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी भी कार्यक्रम में।
0: युवाओं के सशक्तिकरण में खेलों की भूमिका और खेलों से जुड़े जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, उन नैतिक मूल्यों की भूमिका को आज उन्होंने रेखांकित किया अपने संवाद में। वो इस तरह से कि जो आपने नशा मुक्ति की बात की, जब युवा को कोई ऐसा प्रयोजन उसके सामने रहेगा जिसमें उसका ध्यान लगातार लगा रहेगा और उसको अपने आगे के भविष्य की चिंता कम होगी, तो वो नशे जैसी चीजों से दूर रहेगा क्योंकि उसको एक रचनात्मक भूमिका दी जा रही है देश के विकास में। तो इस रचनात्मक भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं के लिए एक संदेश भी उन्होंने दिया कि अगर आपको विफलता मिलती है, असफलता मिलती है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके लिए जो आगे का मार्ग है वो बंद हो गया हो। इसका अर्थ ये है कि अगर आप गिरे हैं तो आप उठेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और प्रतियोगिता की जो क्षमता है और प्रतियोगिता की जो आवश्यकता है देश के विकास में, युवाओं के विकास में, उस पर भी उन्होंने बल दिया। तो इस तरह से आज का संवाद सिर्फ खेलों या खेलो इंडिया से जुड़ा नहीं था। आज का संवाद देश में युवाओं के सशक्तिकरण, युवाओं की रचनात्मक भूमिका, युवाओं की जो ऊर्जा है उसको सही दिशा में लगाने के लिए सही कदम कैसे उठाए जाएं, इन सब को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आज का संबोधन किया है। और उन्होंने अपने साथ साथ ऐसे खिलाड़ियों को वहां रखा, मैरी कॉम जैसे खिलाड़ियों को, जिन्होंने छोटी जगह से निकलकर और स्वर्ण पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में विश्व चैंपियन बनकर दुनिया के सामने ये दिखाया कि आप चाहे कहीं से भी हों, छोटी से छोटी जगह से भी हों, अगर आप में प्रतिभा है और आपकी प्रतिभा को ठीक तरह से तराशा जाता है तो कोई भी पदक का मंच आपसे दूर नहीं रह सकता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों के क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने और उनकी प्रतिभा को निखारने की बात कही। आइए सुनते हैं कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा।
2: जब हम 2036 ओलंपिक्स की तैयारी की बात करते हैं तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमें आज से ही वो खिलाड़ी तैयार करने हैं जो 2036 में अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए क्वालिफाई और कम्पीट करेंगे। और इसलिए लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया। और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है। हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी।
1: खेलो इंडिया के संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की थी मेजर ध्यानचंद को सम्मान देके और उन्होंने उदाहरण ये भी दिया कि अभी नेशनल स्पोर्ट्स डे आने वाला है 29 अगस्त में, एक भेंट दिया। नेशनल स्पोर्ट्स डे का महत्व क्या है?
0: हमारे यहाँ खेलों की जो परंपरा रही है, जिस परंपरा में जीत हॉकी जैसे खेलों में हमें बहुत आसानी से मिलती रही है, उस परंपरा में जो बीच में एक थोड़े दिनों के लिए एक कमी आ गई थी, वो परंपरा फल फूल नहीं पा रही थी, उसको पुनर्जीवित करने के लिए और हॉकी के साथ साथ अन्य खेलों की भी बात प्रधानमंत्री ने की है। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा है कि आज 13 खेलों में हमने हिस्सा लिया राष्ट्रमंडल खेलों में, और ऐसे कई खेल हैं जिसमें हमारे खिलाड़ी न खेलते हैं न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं। तो वैसे में हम परंपरागत खेलों के अलावा जो आधुनिक खेल हैं उनमें भी अगर हम हिस्सा लें तो मेजर ध्यानचंद जैसा हॉकी का खिलाड़ी हमने जब दिया, नीरज चोपड़ा जैसा एथलीट जब हमने दिया, तो अभी हमारे पास और भी ऐसे टैलेंट हैं जिनको हम उन खेलों में नेटबॉल, हैंडबॉल, रोइंग और स्कीइंग इन जैसे खेलों

0: में भी हम अच्छा कर सकते हैं। तो मेजर ध्यानचंद का एक प्रतीकात्मक महत्व है कि एक छोटी जगह से निकला हुआ एक आदमी जिसके पास ढंग के जूते, ढंग के कपड़े भी ना हो, हॉकी खेलने के लिए जो जरूरत की चीजें हैं वो भी ना हो, और वो आज भी आप देखेंगे छोटा नागपुर चले जाइए जहां से बच्चे निकलते हैं हॉकी खेलने वाले, और एक पेड़ की छोटी सी डाली को तोड़कर हॉकी स्टिक बनाकर जो ड्रिबलिंग करते हैं, तो देखकर ऐसा लगता है कि कितनी प्रतिभाएं हमारे यहाँ छिपी हुई हैं, और उन्हीं प्रतिभाओं को 5 वर्ष से 15 वर्ष की उम्र वाले प्रतिभाओं को पहचान कर सामने लाने की बात प्रधानमंत्री ने की है। तो मेजर ध्यानचंद जैसे लोग प्रेरणा के स्रोत ही नहीं है, एक प्रतीकात्मक उनका अपना मूल्य है, एक उनकी अपनी जगह है लोगों के दिमाग में उसको बिठाने के लिए, जो लोग भूल चुके हैं आखिर क्यों उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, आखिर क्या कहा था हिटलर ने उनसे। इन सब बातों की ओर जब हम ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि भारतीय खेल इतिहास के जो स्वर्णिम पन्ने थे उन पन्नों में कुछ और नए पन्ने जोड़ने की जरूरत है, और बीच में जो खाली रह गए अध्याय उन अध्यायों को भूलकर अब आगे के अध्याय में जितने स्वर्णिम पन्ने हम और जोड़ पाएंगे भारत में खेलों का विकास उतना ही होगा। और यही प्रधानमंत्री का संदेश है जो हर युवा को एक नई शक्ति प्रदान करता है।
1: मलय नीरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खेल और खेल के विकास को लेकर विस्तार में चर्चा की, धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे खेलो इंडिया संवाद, भारत की खेल क्षमता के प्रोत्साहन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे खेल विश्लेषक मलय नीरव। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अर्जुन जे चौधरी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले सुनते हैं बप्पी लहरी की आवाज में फिल्म डिस्को डांसर का ये गीत। अनजान के लिखे बोल हैं और संगीत है बप्पी लहरी का।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून क्या है आपने और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज़ में। इस गीत को शब्द दिए हैं अनजान ने, संगीत है बप्पी लहरी का, फिल्म का नाम है नमक हलाल।

फिल्म शराबी का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ में। अनजान के लिखे इस गीत को संगीत दिया था बप्पी लहरी ने। श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म हिम्मत वाला से। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ें हैं। बप्पी लहरी का संगीत और शब्द रचना है इंदीवर की।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में फिल्म पुकार का ये गीत। आरडी बर्मन का संगीत है और शब्द रचना है गुलशन बावरा की।

0: श्रोताओं, फिल्म पुकार के इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण होगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भोले बिसरे पल, हर पल

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय, मृतकों की संख्या 359 हुई। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी। इसे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू की। और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ, भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीती। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: 2 जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह, इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से 9-1-1-1-2-3-0-8-8-7-1-8 और 9-1-1-1-2-3-0-8-8-7-1-9 पर संपर्क किया जा सकता है। व्हाट्सएप कॉल और संदेश के लिए 9-1-9-9-6-8-2-9-1-9-8-8 नंबर जारी किया गया है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए 9-7-7-9-8-5-1-3-1-6-8-0-7-9-7-7

0: 9709107500 और 9779801031 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में कलाई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों की 1300 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। नेपाल में छोछेन खोला और पुरेपू स्वांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार झील में अगले 3 दिन में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का सर्वेक्षण किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की।
1: बिहार जल संसाधन विभाग के अनुसार गंडक बैराज पर जलस्तर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। हालांकि नेपाल के देवघाट क्षेत्र में बारिश के कारण नदी के जलस्तर में मामूली बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि
2: नेपाल में एक तरह से आपदा आया, ये चिंता का विषय है, सबको चिंता भी करनी पड़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री जी लगातार बिहार की स्थिति को भी देख रहे हैं। अब धीरे धीरे चीजें समान हो रही है।
1: किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बिहार में NDRF की 9 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि अतिरिक्त बचाव दल की 4 टीमें तैयार रखी गई हैं। इधर पड़ोसी देश में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने समस्तीपुर रेल मंडल में अलर्ट जारी किया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। नेपाल के सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरुआती सहायता दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
4: Discussions are expected.
5: दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। इस पे व्यापार और निवेश, महत्वपूर्ण खनिज, स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क शामिल है। ये बातचीत भारत और उज्बेकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करेगी।
0: ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत विनिर्माण, नवाचार और निर्यात के लिए वैश्विक मंच के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कनाडा के निवेशकों से भारत की बढ़ती क्षमता का लाभ उठाकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की जरूरतें पूरी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सुधारों के जरिए हो रहे बदलाव और मजबूत आर्थिक वृद्धि से भारत कनाडा के बीच अधिक मजबूत और निवेश आधारित आर्थिक साझेदारी के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार का वर्ष 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य है।
6: आज का यह प्रोजेक्ट आप

आत्मनिर्भरता की एक मजबूत कड़ी है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया के लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स हब में अपनी मजबूत पहचान बनाए और इस नेशनल मिशन में जबलपुर जैसी फैसिलिटी इम्पोर्टेंट

0: में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा, बहुविषयक अध्ययन और कौशल आधारित विकास को प्राथमिकता दी गई है, जो महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप हैं।
1: पूज्य बापू का विचार था कि स्वाधीनता तब तक अधूरी रहेगी जब तक हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा श्रम और हमारा उद्देश्य राष्ट्रीय न हो, अपना न हो। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति से हम बंधे हुए नहीं है तो स्वतंत्रता का कोई मतलब ही नहीं। और मन में स्वराज की परिकल्पना को अनेक प्रयोगों से जमीन पर उतारने का काम किया।
0: श्री शाह ने वर्ष 2047 तक सभी क्षेत्रों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर बल दिया। अहमदाबाद में फार्मा इनोवा अवार्ड्स 2026 में श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
2: रजनी भाई ने शुरुआत की और आज ये परंपरा ढेर सारे लोगों में रिसर्च के फील्ड में काम करने के लिए न केवल अनुकूलता बनी, आर्थिक मदद भी हुई। एक प्रकार से ये अवार्ड उनको एक्नोलेज करता है सोसाइटी में और इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश होने में। ये बहुत बड़ी बात है जो रजनी भाई ने उस जमाने में सोची।
0: गृह मंत्री ने अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल और ओलंपिक खेलों पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने के लिए खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है।
4: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
0: केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने खेलों को विकसित भारत का हिस्सा बनाने के लिए सभी से सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। खेल दिवस के अवसर पर आज IFLU विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने की पहल से देश अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अधिक पदक जीत रहा है। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। श्रीमती निधि खरे ने कहा कि सरकार हर वर्ष ये सुनिश्चित करती है कि कीमतों में बढ़ोतरी होने पर रियायती दर पर प्याज उपलब्ध हो।
5: हर वर्ष हम लोग कोशिश करते हैं कि प्याज में अगर कोई कीमतों की बढ़ोतरी होती है तो उसमें रिटेल इंटरवेंशन के माध्यम से सब्सिडाइज दर पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। प्याज की जो प्रोडक्शन है या अवेलेबिलिटी है उसमें किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। एक्सपोर्ट को भी देखें तो वो पिछले वर्ष के मुकाबले भी सामान्य है।
0: मौसम विभाग ने कल उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। श्रीलंका ने आज मैच के अंतिम दिन फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में खेल समाप्ति तक 9 विकेट पर 429 रन बनाए। इससे पहले श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने 5वां स्थान हासिल कर लिया है। आज खेले गए मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। नीदरलैंड्स के एम्स्टरफेन में

0: agreed to call off the match. Despite the draw, the Shubman Gill-led side clinched the two-match series 1-0. Batting first in the second test, India had declared at 503 for 9 before bowling Sri Lanka out for 290 to secure a 213-run first innings lead. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India steps up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to flash flood tragedy. 290 Indians among nearly 1,300 missing people. Death toll rises to 359. Heavy rain likely over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and northeastern states till Saturday. Prime Minister Narendra Modi to embark on a four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan from Saturday. Defence Minister Rajnath Singh lays foundation stone for T-Series tank overhauling project at Jabalpur in Madhya Pradesh, terms it another milestone in nation's journey towards self-reliance. Government begins targeted release of onions from buffer stock to ensure adequate availability and moderate seasonal price pressures in coming months. And in men's cricket, second test between India and host Sri Lanka ends in a draw. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। भारत ने नेपाल में सैलाब के अलमनाक हादसे के सबब वहां फंसे भारतीय बाशिंदों का पता लगाने और उन्हें महफूज मकाम तक पहुंचाने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। तकरीबन 1,300 लापता अफराद में 290 भारतीय हैं। मरने वालों की तादाद बढ़कर 359 हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने मोदी हफ्ते के रोज से उज़्बेकिस्तान और जम्हूरिया किर्गिज के चार रोज़ा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में टी सीरीज के टैंक ओवर हॉलिंग प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। उन्होंने इसे खुद किफालत की जानिब मुल्क के सफर में एक और संग मील करार दिया। हुकूमत ने प्याज के वाफिर जखीरे से निशानजद जखीरा जारी करना शुरू कर दिया है ताकि आने वाले महीनों में इसकी खातिरखा दस्तियाबी और त्योहारों के दौरान कीमत के दबाव को मुतदिल रखने को यकीनी बनाया जा सके। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और शिमाल मशरकी रियासतों में हफ्ते के रोज तक तेज बारिश की पेशगोई की गई है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और मेजबान श्रीलंका के दरमियान दूसरा टेस्ट ड्रॉ पर खत्म हुआ। मेहमान भारत ने 1-0 से सीरीज जीत ली। अब खबरें तफसील से। भारत ने नेपाल में अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब के बाइस फंसे हुए भारतीय शहरियों की तलाश और बचाव के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। कल नेपाल में अचानक आने वाले शदीद सैलाब से हलाकतों की मजमू तादाद 359 हो गई है, जबकि हुक्काम 1,300 से ज्यादा लापता अफराद को तलाश करने के लिए हमा वक्त जिद्दोजहद कर रहे हैं, जिनमें 290 भारतीय शहरी भी शामिल हैं। आज नई दिल्ली में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि जब नेपाल में सैलाब का ये सानहा पेश आया तब वहाँ 290 भारतीय शहरी मौजूद थे। इन भारतीय शहरियों से अभी तक राबता कायम नहीं हो सका है। इनमें वो 63 भारतीय शहरी भी शामिल हैं जो त्रिशूली वन पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। जनाब जायसवाल ने कहा कि काठमांडू में वाकई भारतीय सफारतखाना प्रोजेक्ट के हुक्काम से मालूमात हासिल करने के लिए राबते में हैं, क्योंकि मुतासरा इलाकों में मुवासलाती रबते मुनक़ा हो गए हैं। वजारत खारजा ने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गए तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखने वाले 21 भारतीय शहरियों को नेपाल में बचा लिया गया है। जनाब जायसवाल ने कहा कि भारतीय हुक्काम नेपाली हुक्काम के साथ मिलकर फंसे हुए भारतीय शहरियों से रबता कायम करने और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत ने नेपाल में जारी बचाव और इमदादी कार्रवाइयों के लिए 47 टन से ज्यादा हंगामी इमदादी सामान भेजा है।
2: जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: जनाब जायसवाल ने कहा कि वजारत खारजा में 24 घंटे काम करने वाला एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है। उन्होंने बताया कि काठमांडू और बेजिंग में वाकई भारतीय सफारतखानों ने भी 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइंस कायम की हैं। चीन के इलाके में फंसे भारतीय शहरियों के बारे में उन्होंने कहा कि बेजिंग में भारतीय سفارت خانہ ان کے محفوظ انخلا کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ تقریباً 200 بھارتی شہریوں نے انخلا کے لیے مدد طلب کی ہے۔ وزارت خارجہ نے لوگوں کو تعاون مہیا کرنے کی غرض سے نئی دلی میں 24 گھنٹے چلنے والا ایک کنٹرول روم قائم کیا ہے۔ اس کنٹرول روم سے ان نمبروں پر رابطہ کیا جا سکتا ہے، +9111238-8718 +9111238-8719۔ واٹس اپ کال اور میسیجز کے لیے اس نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے، +9199682918۔ اس آئی ڈی پر ای میل بھی کیا جا سکتا ہے، situation@meea.gov.in۔ کاٹھمنڈو میں بھارتی سفارت خانے کے ایمرجنسی رابطہ نمبر ہیں +9779851316807، +9779701075000 اور 9779810326117۔ بہار کے وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے آج والمیکی نگر گنڈک بیراج کا فضائی سروے کیا اور نیپال میں آئے زبردست سیلاب کے تناظر میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ پیش ایک رپورٹ۔
3: بہار میں کسی قسم کی ایمرجنسی حالات سے نمٹنے کے لیے این ڈی آر ایف کی 9 ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں، جبکہ 4 اضافی بچاؤ ٹیموں کو تیار رہنے کو کہا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے کہا کہ ریاست میں صورتحال بتدریج معمول پر لوٹ رہی ہے۔ جناب چودھری نے بگھا، والمیکی نگر، بیتیا اور متیہاری سمیت سرحدی علاقوں میں آج ایمرجنسی تیاریوں کا جائزہ بھی لیا۔
4: نیپال میں ایک طرح سے آپدا آیا، یہ چنتا کا وشے ہے، سب کو چنتا بھی کرنی پڑے گی۔ آدرنیہ پردھان منتری جی، آدرنیہ گرہ منتری جی لگاتار بہار کی استھتی کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب دھیرے دھیرے چیزیں سامان ہو رہی ہیں، بارش ہوا ہے، اس کا کچھ پانی ادھک آ رہا ہے، لگ بھگ 1,00,000 کیوسک کے آس پاس آج پانی ڈسچارج ہو رہا ہے۔ اب دھیرے دھیرے یہاں سے لے کر پٹنہ تک کی استھتی سامان ہے۔
3: پڑوسی ملک میں سیلاب کی صورتحال کے تناظر میں مشرقی وسطی ریلوے نے سمستی پور ریلوے ڈویژن میں الرٹ بھی جاری کیا ہے۔ پٹنہ سے سویتا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمران۔
1: نیپال میں سیلاب اور قدرتی آفت کے تناظر میں اتر پردیش حکومت نے راحت اور بچاؤ ٹیموں کو ضروری وسائل کے ساتھ سرگرم کر دیا ہے، تاکہ وہ نیپال میں پھنسے اتر پردیش کے باشندوں کو بحفاظت وہاں سے نکال سکیں اور انہیں فوری تعاون فراہم کر سکیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
5: اتر پردیش میں ریلیف کمشنر کے دفتر کا کنٹرول روم نیپال کی سرحد پر واقع ضلعوں میں صورتحال پر مستقل نظر رکھے ہوئے ہے۔ ریاستی حکومت نے نیپال میں راحت اور بچاؤ کارروائی کے لیے ایس ڈی آر ایف کی ایک پلاٹون تعینات کر دی ہے۔ یہ پلاٹون 32 اہلکاروں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ پی اے سی کی 26ویں بٹالین کے 22 اہلکاروں کو بھی نیپال بھیجا گیا ہے۔ حکومت نے ضرورت کے مطابق اضافی فورسز اور وسائل مہیا کرانے کی غرض سے تیاریاں کر لی ہیں، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ متاثرہ افراد کو راحت فراہم کرنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ نیپال میں پھنسے اتر پردیش کے باشندوں کے اہل خانہ معلومات یا کسی قسم کے تعاون کے لیے ہیلپ لائن نمبر 1070 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ لکھنؤ سے اوم اوستھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبدالحفیظ۔
1: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم نے مودی ہفتے کے روز سے جمہوریہ ازبکستان اور کرگستان کے 4 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی وی جارج نے کہا کہ وزیراعظم اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں ازبکستان کے صدر شوکت مرزیویف کی دعوت پر تاشقند کے 2 روزہ سرکاری دورے پر جائیں گے۔ جناب مودی بھارت اور ازبکستان کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے لیے صدر مرزیویف کے ساتھ وفد سطح کی بات چیت کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں رہنما تجارت و سرمایہ کاری، دفاع، ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی، توانائی، تعلیم اور عوام سے عوام کے رابطے کے شعبوں میں باہمی تعاون کا بھی جائزہ لیں گے اور آگے کی راہ طے کریں گے۔ وزیراعظم مودی تاشقند سے کرگستان کے شہر بشکیک جائیں گے، جہاں وہ جمہوریہ کرگستان کے صدر کی دعوت پر اس ماہ کی 31 تاریخ کو شنگھائی تعاون تنظیم کی 26ویں سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم نے مودی نے کہا ہے کہ حکومت 21ویں صدی میں بھارت کے لیے کھیلوں کے ایک جدید نظام کی تشکیل کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھیلوں کی یونیورسٹیوں سے لے کر جدید ترین تربیتی مراکز تک ملک بھر میں ایک ایسا نظام تیار کیا جا رہا ہے جہاں باصلاحیت افراد کو ہر مرحلے پر تعاون ملے گا۔ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से आज खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि खेल सिर्फ तमगे जीतने तक महदूद नहीं है बल्कि ये तरक्की याफ्ता भारत की तामीर में भारत के खेलों से मुतालिक हौसलों और नौजवानों की तवानाई को यकजा करना है।
6: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
1: उन्होंने कहा कि हर जिले में ये सलाहियत पाई जाती है कि वो खेलों के आलमी मंजरनामे पर अपनी छाप छोड़ सके। वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने लाल किले की फसील से बासलाहियत अफराद की तलाश के लिए एक बड़ी मुहिम का ऐलान किया था ताकि 5 से 15 साल तक की उम्र के बच्चों की खेलों के ताल्लुक से निशानदेही की जा सके। वजीर आजम ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि आज खेल भारत में एक बेहतरीन करियर और पेशे के तौर पर उभरे हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने कहा कि वजीर आजम ने मोदी की क्यादत में खेल एक कौमी तरजीह के तौर पर और नौजवानों को बाख्तियार बनाने के एक अहम आले के तौर पर उभरे हैं। वजीर आजम ने मोदी इतवार को दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्याल का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 137वां नशिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, AIR न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे AIR न्यूज़, DD न्यूज़, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तला नशियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरे के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। उमूर दाखला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने आज जोर देकर कहा कि महात्मा गांधी का फलसफा वक्त की गर्ज से बेनियाज मानवीयत का हामिल और इंसानी बहबूद के लिए वक्फ रहेगा। अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की 72वीं तकरीब तकसीम असनाद में तलबा से खिताब करते हुए जनाब शाह ने नौजवानों से जोर देकर कहा कि वो 2047 तक कौमी तामीर नौ में सरगर्म हिस्सा लें।
7: पूज्य बापू का विचार था कि स्वाधीनता तब तक अधूरी रहेगी जब तक हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा श्रम और हमारा उद्देश्य राष्ट्रीय न हो, अपना न हो। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति से हम बंधे हुए नहीं हैं तो स्वतंत्रता का कोई मतलब ही नहीं। और मन में स्वराज की ये परिकल्पना को अनेक प्रयोगों से जमीन पर उतारने का काम किया।
1: इस इदारे की तारीखी अहमियत को उजागर करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि गुजरात विद्यापीठ भारतीय निज़ाम इल्म की एक बेहतरीन मिसाल की हैसियत रखता है। कौमी तालीमी पॉलिसी की बुनियादी अकदार का जिक्र करते हुए जनाब शाह ने कहा कि NEP ने महात्मा गांधी के तस्वूर के मुताबिक मादरी जबान में तालीम कसीर शोबाजाती आमोजिश और महारतों पर मबनी नशोनुमा को तरजीह दी गई है। तकरीब में ग्रेजुएशन करने वाले 900 तलबा को डिग्रियों से नवाजा गया जबकि 11 गैर मामूली तलबा को सोने के तमगे दिए गए। गुजरात के गवर्नर और गुजरात विद्यापीठ के चांसलर आचार्य देवव्रत, असातिज़ा और मंदूबीन ने इस तकरीब में शिरकत की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि मुल्क दिफा के शोबे में खुद किफालत की जानिब तेजी से गामजन है। पिछली एक दहाई के दौरान दिफाई साजो सामान की पैदावार तकरीबन 4 गुना बढ़कर 1.8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इसी तरह दिफाई बरामदाद बढ़कर तकरीबन 39 लाख करोड़ रुपए मालियत की हो गई। जनाब सिंह ने यह बात मध्य प्रदेश के जबलपुर में वाक़ 57 साल पुराने व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर VFJ में टी सीरीज़ के जंगी टैंकों की मरम्मत और जदीद कार्य के लिए 472 करोड़ रुपए के सहूलती मरकज़ का संग बुनियाद रखने के बाद कही। वजीर दिफा ने कहा कि हुकूमत ने माली बरस 2028-29 तक दिफाई साजो सामान की बरामदाद को 15,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का हदफ मुकर्रर किया है। उन्होंने कहा कि भारत न सिर्फ मुल्क के अंदर ही हथियार तैयार कर रहा है बल्कि असलहे की देखभाल, मरम्मत और जदीद कारी को भी तरक्की दे रहा है। उन्होंने टैंकों की मरम्मत के प्रोजेक्ट को भारत के खुदकफील सनअती निज़ाम के लिए एक अहम संग मील करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि इस प्रोजेक्ट से मकामी लोगों के लिए रोजगार के मौके भी फराहम होंगे।
8: आज का यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता की एक मजबूत कड़ी है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब में अपनी मजबूत पहचान बनाए और इस नेशनल मिशन में जबलपुर जैसी फैसिलिटीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी एफिशिएंसी के साथ और सिंसियरिटी के साथ निर्वाह करेंगे।
1: हुकूमत ने आइंदा महीनों में प्याज की वाफिर दस्तियाबी और मौसम के लिहाज से कीमत को काबू में रखने की कोशिशों को यकीनी बनाने के लिए बफर स्टॉक से प्याज निकालने की कोशिशें तेज कर दी हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने हफ्ते के रोज तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और शिमाल मशरक़ी रियासतों में तेज बारिश की पेशगोई की है। मर्दों के क्रिकेट में कोलंबो में भारत और श्रीलंका के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच पांचवें और आखिरी दिन बराबरी पर खत्म हुआ। इसके साथ ही शुभमन गिल की क्यादत में भारत ने दो मैचों की यह सीरीज 1-0 से जीत ली। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने नेपाल में सैलाब के अलमनाक हादसे के सबब वहां फंसे भारतीय बाशिंदों का पता लगाने और उन्हें महफूज मकाम तक पहुंचाने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। तकरीबन 1,300 लापता अफराद में 290 भारतीय हैं। मरने वालों की तादाद बढ़कर 359 हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी हफ्ते के रोज से उज्बेकिस्तान और जमहूरिया किर्गिज के 4 रोजा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में टी सीरीज के टैंक ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा। हुकूमत ने प्याज के वाफिर जखीरे से निशानदर जखीरा जारी करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
9: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत में आइए पहले सुनते हैं फिल्म हमरास का ये गीत। साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा है, रवि ने संगीतबद्ध किया और इस गीत में आवाज़ आप सुनेंगे महेंद्र कपूर की।

मजरू का लिखा गीत सुनिए फिल्म ज्वेल थीफ से। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं। संगीतबद्ध किया है SD बर्मन ने।

पड़ोसन, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ में। राजेंद्र कृष्ण के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था आरडी बर्मन ने। श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। SH बिहारी की शब्द रचना है, धुन तैयार की है OP नैयर ने। फिल्म का नाम है एक मुसाफिर एक हसीना।

लता मंगेशकर की आवाज़ में सुना आपने हसरत जयपुरी का लिखा एक गीत। फिल्म का नाम था जंगली। इस गीत को संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने। श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं नूर देवासी का लिखा गीत, ओपी नैयर का संगीत है, फिल्म का नाम है किस्मत। इस गीत को गाया है आशा भोसले ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनिए फिल्म शागिर्द का ये गीत, मजरू के लिखे बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

श्रोताओं, फिल्म शागिर्द के इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हूं मैं, आपका रेडियो साथी ऋषभ आहूजा। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आप हमें लिख भेजते हैं आपकी फरमाइशी खत और हम शामिल करते हैं वो गीत इस कार्यक्रम में। तो आज का एक पहला खत हमें प्राप्त हुआ है दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार का। साथ ही इसी गीत के लिए हमें अगली फरमाइश प्राप्त हुई है आदर्श नगर मल्लुट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, शाइनी शर्मा और निवान शर्मा का। तो आइए आपकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत फिल्म चाइना गेट से। आवाज़ें हैं अलका याग्निक, शंकर महादेवन और विनोद राठौड़ की। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है अन्नू मलिक ने। आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। श्रोताओं, हम अपने सभी सुनने वालों का दिल से धन्यवाद करते हैं हमें इतने प्यारे प्यारे खत भेजने के लिए। आपसे उम्मीद है कि आप इसी तरह हमें आगे भी खत लिखते रहिए। फिलहाल आइए चलिए हम अगला खत अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करते हैं, जो हमें प्राप्त हुआ है धामणी मानोरा से। तुलसीराम डेरे, मायावती, संदेश, आदेश, किरण, प्रज्वल और अनुत डेरे का। साथ ही अगले गीत के लिए हमें खत प्राप्त हुआ है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा का। कालका से ये खत हमें प्राप्त हुआ है शुभ चंद्र बजाज और बिट्टा बजाज, साथ ही साहिल का। तो आइए आपकी फरमाइश पर सुनते हैं हम ये गीत, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने। शंकर जयकिशन का संगीत है, लता मंगेशकर की आवाज़ और फिल्म का नाम है झुक गया आसमान।

आपकी फरमाइश में, आपके रेडियो साथी ऋषभ आहूजा के साथ। श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म आनंद से। मुकेश के गाए इस गीत को संगीत दिया था सलील चौधरी ने और बोल लिखे गुलजार ने। श्रोताओं, इस गीत के लिए हमें फरमाइश प्राप्त हुई थी ग्राम पंचायत बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा की। साथ ही सारा गांव से हमें एक खत प्राप्त हुआ है सुजान वर्मा, सौहाद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा का। साथ ही इसी गीत के लिए अगला खत हमें प्राप्त हुआ था यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से, दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता और मुस्कान मालाकार का, साथ ही जितेंद्र धर्मेंद्र मालाकार का। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म आसपास से। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। श्रोताओं, इस गीत के लिए हमें फरमाइश प्राप्त हुई है गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले की। साथ ही इसी गीत के लिए अगला खत हमें प्राप्त हुआ है कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली का। तो आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं फिल्म आसपास का ये गीत।

श्रोताओं, फिर कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। अगला खत हमें प्राप्त हुआ है नेपाल पैलेस सागर से, तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन का। साथ ही हमें अगला खत प्राप्त हुआ है गोला बाजार बक्सर से, श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित का। साथ ही राजा बाजार चौक बेहिया आरा से पूनम देवी केशरी, संगीता देवी केशरी, बीना केशरी और प्रतिज्ञा केशरी का। तो आइए आपकी फरमाइश पर सुनते हैं वक्त फिल्म का ये गीत, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में। साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत है और रवि का संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म बड़ी बहन से। लता मंगेशकर और प्रेमलता की आवाज़ें हैं, राजेंद्र कृष्ण के बोल और हंसलाल भगत राम का संगीत। इस गीत के लिए हमें फरमाइश प्राप्त हुई है लेवा खेल मोहल्ला चांदूर बिस्वा से, नारायण भाऊ विठल राव खर्चे, ललिता रानी खर्चे, परी संजना, गणेश कार्तिक, ब्रोनो ऊषा सोरना, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी का। साथ ही अगला खत हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुआ है घंटाघर चौक खंडवा से, संजय पंचोलिया, प्रियंका गुनगुन, संप्रीत हेमंद्र और सनमति पंचोलिया का। तो आइए आपकी फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म बड़ी बहन का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म दो खिलाड़ी से। गौहर खानपुरी के लिखे बोल और उषा खन्ना का संगीत है। इस गीत के लिए हमें फरमाइश प्राप्त हुई है पालदा नाका इंदौर से, हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी की। साथ ही हमें अगला खत इसी गीत के लिए प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ से, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लछनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू का। तो आइए आपकी फरमाइश पर आनंद लेते हैं इस गीत का।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश समाप्त करने की इजाज़त दीजिए आपके रेडियो साथी ऋषभ आहूजा को। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम राग रजनी। इस शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपको सुनवाने जा रहे हैं विदुषी गंगूबाई हंगल का ख्याल गायन। राग है शुद्ध कल्याण।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से +9111-23088718 और +9111-23088719 पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए +9779851316807 और +9779801-32-6117 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों के 1300 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का सर्वेक्षण किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। नेपाल की सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरुआती सहायता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं विराम लेती है। कल प्रातः 5:51 पर जय।